मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 23 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 314.47।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम

0: सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की वंदना के साथ। कहा जाता है कि जहां गणपति बप्पा का स्मरण होता है वहां सुख शांति और शुभता स्वयं चली आती है। तो आइए अपने मन के सभी विकारों को दूर कर श्रद्धा और भक्ति के रंग में रख जाएं।

श्रोताओं, भक्ति और प्रेम का जब भी संगम होता है, वहाँ श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन अपने आप सुनाई देने लगती है। कान्हा की वही मोहक मुरली जिसने गोकुल की गलियों को प्रेम से भर दिया, जिसने राधा के मन को छू लिया और जिसने हर भक्त के हृदय में भक्ति का दीप जलाया। अब प्रस्तुत है एक बेहद मधुर और मन को भाव विभोर कर देने वाला भजन। इस भजन की हर पंक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का सुंदर एहसास कराती है। तो आइए अपने मन को वृंदावन की पावन गलियों में ले चलते हैं और सुनते हैं ये सुरीली प्रस्तुति।

भगवान श्री कृष्ण का ये भजन सुनने के बाद आइए अब रुक करें शब्द का। श्रोताओं, गुरबानी के शब्द केवल सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि जीवन को सही राह दिखाने वाले प्रकाश बन जाते हैं। जब मन भटकने लगे, जब दुनिया की भीड़ में इंसान स्वयं को अकेला महसूस करे, तब गुरु की वाणी हमें यह एहसास कराती है कि प्रभु से बड़ा सहारा कोई नहीं। कार्यक्रम में जो शब्द हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये शब्द हमें प्रभु की महिमा, उनकी दया और उनके असीम प्रेम का अनुभव कराता है। तो आइए मन को शांत करें और गुरुवाणी के इस अमृत रस में डूब जाएं।

श्रोताओं, सूफियाना कलाम और नात की दुनिया में एक अलग ही रूहानी सुकून छुपा होता है। जब दिल अपने पीर, अपने बुजुर्गों की याद में तड़पता है, तब ऐसी नात सीधे रूह को छू जाती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत और करम आज भी लाखों अकीदतमंदों के दिलों में जिंदा हैं। तो आइए मोहब्बत और इबादत के इस खूबसूरत सफ़र में शामिल होते हैं।

श्रोताओं, श्री कृष्ण की भक्ति का स्मरण जब भी होता है, मन अपने आप आनंद और श्रद्धा से भर जाता है। बांके बिहारी जी की छवि इतनी मनमोहक है कि उनका नाम लेते ही भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। कार्यक्रम में अब जो आरती हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये आरती श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप, उनकी मधुर लीलाओं और भक्तों पर बरसने वाली उनकी कृपा का सुंदर वर्णन करती है।

भगवान श्री कृष्ण की इसी आरती के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह। संगीत सतीश भाटिया का है।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया। अनु ने विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है,

रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए, अब सुनते हैं चिंतन।
1: सहिष्णुता का अर्थ है सहन करना। हर वो अधिकार जिसे आप अपने लिए पाना चाहते हैं वो दूसरों को भी मिलना चाहिए। वास्तव में सहिष्णुता मनुष्य के अच्छे विचारों और व्यवहार का प्रतीक है। इस गुण के कारण एक मनुष्य सभी पक्षों के तर्क वितर्क सुनकर सही न्याय कर सकता है। लोकतांत्रिक देशों में सहिष्णुता एक मुख्य और आवश्यक गुण माना जाता है। सहिष्णुता मानव को मानव से जोड़ती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, सहिष्णुता का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों से वाद विवाद करके अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाया जाए, बल्कि इसका असली अर्थ है सबका पक्ष सुनकर सबके प्रति आदर का भाव रखकर सही न्याय करना। सहिष्णुता एक भावनात्मक शक्ति है। भाव इंद्रिय चेतना और मन से परे होता है। मन भाव से संचालित होता है और इंद्रियां भी भाव से ही संचालित होती हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि मानव के जीवन में भाव सबसे ऊपर है। सहिष्णुता हमारे हाथ की पांचों उंगलियों को मिलाकर एक प्रतीक का काम करती है। कनिष्ठा जल तत्व का, अनामिका पृथ्वी तत्व का, मध्यमा आकाश तत्व का, तर्जनी वायु तत्व का और

0: कुष्ठ यानी अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। इनके योग से असहिष्णुता को कम किया जा सकता है। कहते हैं, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। सभी लोग जानते हैं कि सहिष्णुता आवश्यक है और चाहते भी हैं कि इसका विकास हो, पर विचार इस बात पर करना है कि अवरोध कहाँ है। जैसे लोग कहते हैं कि दिमाग गर्म हो गया, ठंडा नहीं रहा, तो यहां स्पष्ट है कि अग्नि तत्व बढ़ गया है। दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र, इन चारों मुख्य केंद्रों पर ध्यान करके नकारात्मकता को कम किया जा सकता है और सहिष्णुता में वृद्धि की जा सकती है। वैसे तो ये एक व्यक्तिगत गुण है, परंतु अगर ये एक सामाजिक सद्गुण बन जाए तो इससे बेहतर संस्कृति के लिए कोई दूसरा संदर्भ नहीं हो सकता है। वर्तमान समय में सामाजिक सौहार्दता और समरसता में कमी देखी जा रही है। लोग भाईचारा भूलकर लड़ने भिड़ने पर आमादा हैं, तो ऐसे समय में सहिष्णुता में वृद्धि बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि सहिष्णु व्यक्ति ही समाज में विभिन्न धर्म, जाति, विचार और प्रथाओं को मानने वालों के साथ समानता से रह सकता है। सहिष्णुता दर्द रहित जीवन का आवश्यक गुण है। शिक्षा समाज में सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। सहिष्णुता विविधता में एकता को बढ़ावा देती है। वास्तव में ये जियो और जीने दो के सिद्धांत की परिचायक है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:45 होने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री मुकेश कुमार का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: कुछ मुक्तक पेश करता हूं।

और इसी कड़ी में अगला है, अगर भटका है राहों से उसे कुछ ज्ञान दे देना, अगर भटका है राहों से उसे

वतन पर आंच आए तो वतन पर जान दे देना, वतन पर आंच आए तो वतन पर जान दे देना। एक और मुक्तक, अज

और कुछ बेटियों के लिए कहता हूं, आपकी लाडली बेटी हूं बताओ पापा। जो भ्रूण हत्या का समस्या है कि आप

तिरंगा हाथ में लेकर कफन उसका बनाती हूँ। बेटियों के लिए एक गजल लेके आऊं, दो तीन शेर देखेगा।

0: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री मुकेश कुमार का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज रात 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीय दिनांके राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरण विषये वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रिय परीक्षण संस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति, पुनः परीक्षायै अतिरिक्त शुल्कं न भविष्यति इति। भारतं श्वः आरभ्य ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। अद्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः करिष्यति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ ब्रिक्स सदस्य देशानां विदेशमन्त्रिणः पारस्परिकहितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यन्ति इति। लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला वर्यस्य नेतृत्वे एकं उच्चस्तरीयं भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलं भारत भूटान संबंधान सुदृढीकरणोद्देश्येन सह अद्य भूटानस्य यात्रां करिष्यति। 51 सदस्याः भूटान भारत संबंधानां विभिन्नेषु विषयेषु उभययोः प्रतिवेशी देशयोः मध्ये सहयोगं संवर्धयितुं च चर्चां करिष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पार्नी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नई सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी।

0: में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में कुछ स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय है गर्मी और लू से बचाव।
3: गर्मी का मौसम चरम पर है। सूर्यदेव शरीर को तपाने लगे हैं, वहीं गर्म हवाओं ने लू का विकराल रूप धारण कर लिया है। ये वातावरण जीवाणुओं और विषाणुओं के लिए काफी अनुकूल है। इस मौसम में ये तेजी से पनपते हैं। ऐसी तेज गर्म माहौल में जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता गर्मी से सुस्त पड़ रही होती है, तभी ये जीवाणु और विषाणु कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले शरीर पर अपना निशाना साधते हैं। गर्मियों की गर्म हवाओं के साथ लू लग जाना आम बात है। इस रोग की चपेट में वे लोग आसानी से आ जाते हैं जो खाली पेट, थके और दुर्बल होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें कब्ज की शिकायत होती है आसानी से इस रोग की चपेट में आ सकते हैं। सिर खुला रखने से गर्मी तथा धूप का प्रभाव मस्तिष्क पर शीघ्र होता है और तत्काल ही पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। गर्मी के दिनों में पसीने द्वारा निकाले गए जल की पूर्ति निरंतर होती रहनी चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू की चपेट में आने पर शरीर ठंडा रहता है तथा त्वचा चिपचिपी हो जाती है। रोगी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, शरीर का ताप बढ़ जाता है, त्वचा रूखी सूखी दिखाई देती है। यदि किसी को लू लग जाए तो चिकित्सक के आने के पहले तात्कालिक उपचार करना चाहिए। रोगी को ठंडे, हवादार और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए तथा वस्त्रों को ढीला कर दें। बेहोशी दूर करने वाले उपचार करने के साथ ही शरीर का तापक्रम कम करने का प्रयास करना चाहिए। सिर, हाथ तथा पेट आदि को बार बार ठंडे पानी से धोते रहें। मोटे तौलिए को बर्फ के पानी में भिगोकर शरीर को पोंछते रहें। ये काम तब तक करते रहना चाहिए जब तक शरीर का तापक्रम सामान्य अवस्था में न आ जाए। वमन, दस्त, प्यास

0: आदि की स्थिति में पुदीने का रस थोड़ी थोड़ी देर पर चम्मच से देते रहना चाहिए। कच्चे आम को पानी में उबालकर उसका पना बना लें। इसमें सेंधा नमक, भुना जीरा, पुदीना तथा मिश्री आदि मिलाकर पिलाएं। गर्मी के मौसम में स्वस्थ व्यक्तियों को भी इसका सेवन करना चाहिए। ये लू की प्रसिद्ध औषधि भी है। कुदरत ने कई ऐसी चीजें इस मौसम में उपलब्ध कराई हैं, जिनको खाने पीने या लगाने से भी गर्मी में ठंडा एहसास बना रहता है। खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सब्जियों में लौकी, तरोई, टिंडा तथा परवल का सेवन लाभदायक है। इन्हें कम मिर्च मसाले में बनाएं। फलों में तरबूज, फालसा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, शहतूत, बेल आदि का सेवन करें। मट्ठे का सेवन भी पेट को ठीक रखता है। दालों में मूंग तथा मसूर ही इस मौसम में मुफीद कहे जा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भी लाभ पहुंचाता है। नींबू की शिकंजी और दही की लस्सी भी फायदा पहुंचाती है। यही नहीं, प्याज खाने और इसके रस के सेवन से लू से बचाव होता है। अनारदाना, पुदीना और अंबिया की चटनी भी इस मौसम में लाभदायक होती है। जाहिर है, अगर कुदरत की इन नियामतों का सही इस्तेमाल किया जाए तो गर्मियों में भी व्यक्ति निरोग और प्रसन्नचित रह सकता है।
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानकारी गर्मी और लू से बचाव विषय पर। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों, राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका विषय है उड़द, मूंग और लोबिया की फसल में इस समय किए जाने वाले सामी कार्य। किसान भाइयों, ये खरीफ का मौसम चल रहा है और खरीफ की जो प्रमुख दलहनी फसलें होती हैं उनमें उड़द, मूंग और लोबिया आते हैं। इस समय बहुत सारे काम हमें इन फसलों के लिए करने की जरूरत होती है। यदि किसान भाई समय पर सही कृषि कार्य अपनाते हैं तो इन फसलों से अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत के चयन और उसकी तैयारी की। तो उड़द, मूंग और लोबिया की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस समय में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए ताकि मिट्टी में छिपे कीट और रोग नष्ट हो सकें। इसके बाद 2 से 3 बार देशी हल या कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को भुरभुरा बना लें। खेत समतल होना बहुत जरूरी है ताकि वर्षा का पानी एक स्थान पर जमा ना हो सके। किसान भाइयों, अगर हमें उड़द, मूंग और लोबिया की खेती करनी है तो उसके लिए हमें इन फसलों की उन्नत किस्मों का चयन करने की भी जरूरत होती है। इसके लिए हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि हमेशा प्रमाणित और उन्नत बीज का ही उपयोग हमें करना चाहिए। अगर आप उड़द की फसल बोना चाह रहे हैं तो इसके लिए PU31 T9 और पंत U35 जैसी किस्में बहुत अच्छी मानी जाती हैं। मूंग की किस्मों में SML 668, PDM 139 और सम्राट किस्में बहुत अच्छी हैं। वहीं लोबिया के लिए पूसा कोमल और काशी कंचन जैसी किस्में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, बीज को उपचारित करने के बाद ही हमें उसको बोना चाहिए। बुआई से पहले बीज को फफूंद नाशी दवा कार्बेंडाजिम या थायरम से उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद राइजोबियम और PSB कल्चर से बीज का उपचार करने से पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बढ़ता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। ये एक कम लागत और अधिक लाभ देने वाली तकनीक है जिसको हमें जरूर अपनाना चाहिए। और किसान भाइयों, जहां तक इन फसलों की बुआई के समय की बात है तो मई के अंतिम सप्ताह से जून के अंत तक इन फसलों की बुआई की जा सकती है। समय पर बुआई करने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना अच्छा माना जाता है। इन सभी फसलों के लिए उर्वरक प्रबंधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। हालांकि दलहनी फसलें स्वयं नत्रजन का स्थिरीकरण करती हैं, फिर भी प्रारंभिक वृद्धि

0: के लिए 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना लाभकारी होता है। गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। किसान भाइयों, इन सभी उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में अपने खेतों में हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जहां तक इन फसलों की सिंचाई की बात है तो मई और जून में वर्षा समय पर नहीं होती तो बुआई के बाद में हल्की सिंचाई जरूर कर दें। खेत में जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जड़ सड़न और अन्य रोग बढ़ जाते हैं। अधिक वर्षा होने पर खेत से पानी निकालने की भी उचित व्यवस्था अवश्य करें। खरपतवार नियंत्रण पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद में पहली निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। इससे खरपतवार नष्ट होते हैं और पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु मिलती है। आवश्यकता पड़ने पर पेंडीमेथिलीन जैसे खरपतवार नाशी का प्रयोग भी किया जा सकता है। किसान भाइयों, इन फसलों में बहुत सारे कीट और रोग भी लग सकते हैं तो इनका प्रबंधन भी बहुत जरूरी होता है। मई जून के मौसम में सफेद मक्खी, माहू और फली छेदक कीट का प्रकोप देखा जाता है। इन कीटों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। पीले चिपचिपे ट्रैप लगाने से सफेद मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है। अधिक प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित कीटनाशक का प्रयोग हम अपनी फसलों में करेंगे तो इनसे बचा जा सकता है। जहां तक रोगों की बात है तो रोगों में पीला मोजेक वायरस सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके बचाव के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करें और खेत में रोगग्रस्त पौधों को तुरंत निकाल दें। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7:15 होने को हैं। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05। कार्यक्रम के अंतर्गत आज चर्चा का विषय होगा मधुमक्खी पालन। जिले की हलचल कार्यक्रम पेश किया जाएगा 9:15 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मेरठ और बाराबंकी जिले की हलचल। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com सुनिएगा आज दोपहर 2:30 पर। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज क्रम रहेगा थारा स्वास्थ्य। इस क्रम में आज डॉक्टर निधि अरोड़ा से बातचीत करेंगी तनप्रीत कौर। विषय रहेगा महिलाओं और युवाओं में माइग्रेन की बढ़ती समस्या। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा लोकप्रिय कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। इस कार्यक्रम में आज श्री सुरेंद्र कुमार की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें प्रसारित की जाएंगी। प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है सुनिएगा आज 9:25 पर। इस कार्यक्रम में आज कलाकार रजनी टोंक के गाए रुहेल खंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे का समय रहेगा 10:30। शास्त्रीय संगीत में आज सुनिएगा कलाकार पंडित ब्रिज नारायण का सरोद वादन। ये कार्यक्रम 12:05 पर प्रसारित होगा। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा में आज सुनिएगा कलाकार भुंगर खान और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत। समय रहेगा 12:45। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद

केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:18 होने को हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। CBI ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला, देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट UG परीक्षा रद्द, अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई, आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्स

0: प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: इस बीच एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी ITI संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
4: बदायूं जिले में जमकर बारिश।

0: हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: आगरा जिले के कमला नगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सुप्रभात श्रोताओं, नई सुबह के इस उजाले में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपका अपना साथी नमित राज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत आज हम एक सवाल के साथ कर रहे हैं। वो सवाल है, क्या हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर एक जिम्मेदार नागरिक होता कौन है। देखिए, जिम्मेदार नागरिक वही है जो देश हित को सर्वोपरि रखे और एक भारतवासी होने के नाते जो उसके कर्तव्य हैं उनको पूरा करें। साथियों, हमारा छोटा सा योगदान भी देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए अपने देश को आर्थिक रूप से सशक्त

आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। श्रोताओं, ऐसे में हर देशवासी का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने स्तर से प्रयास करके देश के साथ खड़ा हो। वो कहते हैं ना, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बड़े बदलाव लाते हैं, और मिलकर कदम बढ़ाने वाले ही देश को आगे ले जाते हैं। तो इस समय हमें हर आर्थिक निर्णय लेते समय ये सोचना चाहिए कि उससे देश को क्या लाभ होगा। याद रहे श्रोताओं, मजबूत नागरिक ही मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, और मजबूत अर्थव्यवस्था ही मजबूत राष्ट्र की पहचान होती है। तो हमें अपने देश को आर्थिक संप्रभु बनाना है, ताकि मुश्किल की घड़ी में हमारा देश किसी और पर निर्भर ना हो।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: इस ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ी पूंजी है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब दुनिया किसी नए वायरस का नाम सुनती है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ के अगले सेगमेंट सुर्खियों में इसमें हम जानेंगे हंता वायरस के बारे में। हंता वायरस एक ऐसा वायरस है जो मुख्य रूप से चूहों और गिलहरी, छछुंदर, बीवर इस तरह के जीवों से फैलता है। जब संक्रमित चूहों की लार, पेशाब अथवा मल सूखकर हवा में मिल जाते हैं और इंसान सांस के जरिए उसे अंदर ले लेता है, तब ये संक्रमण फैलता है। अब सवाल आता है कि ये वायरस आखिर सुर्खियों में क्यों है। दरअसल हाल के दिनों में कई देशों में इसके मामलों की चर्चा हुई है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 10 से 11 व्यक्ति इससे संक्रमित भी हुए हैं। कुछ लोगों ने इसे कोरोना जैसे बड़े खतरे से जोड़कर देखना शुरू किया, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये वायरस इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता, तो इसीलिए सावधानी जरूर अपनानी है लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हंता वायरस के लक्षणों को देखें तो इससे संक्रमित व्यक्ति को शुरुआत में तेज बुखार, बदन दर्द, थकान और सिर दर्द हो सकता है। कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ बढ़ सकती है और यदि समय पर इलाज ना मिले तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है श्रोताओं कि हम यदि सावधानी रखेंगे तो इससे बच सकते हैं। अब बात यह है कि हमें सावधानी क्या बरतनी है। सबसे अहम तो यह है कि घर के आसपास सफाई ज़रूर रखें। चूहों को घर में बिल्कुल भी ना पनपने दें क्योंकि चूहों से बीमारी सबसे ज़्यादा फैल रही है। बंद पड़े कमरों या गोदामों की सफाई करते समय मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही सफाई के करने के दौरान यदि ऐसी स्थिति बनती है कि चूहों के द्वारा फैलाई गंदगी को आपको साफ करना पड़ रहा हो तो उसे सीधे हाथ से ना छुएं, या तो ग्लव्स पहने अन्यथा किसी और तरीके से उसे साफ करें, हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं। और हमें ये भी सावधानी श्रोताओं अपनानी है कि खाना हमेशा ढककर रखना है क्योंकि इससे चूहे उस खाने को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। श्रोताओं, आज के समय में जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है और सही जानकारी होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया पर कहीं कोई इस वायरस को कोरोना बताए तो उन अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। हंता वायरस को लेकर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सतर्कता अपनाने की ज़रूरत है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमेशा डॉक्टर या विश्वसनीय सूत्रों से ही लें। इस सेगमेंट को यहीं पर विराम देते हैं और सुनते हैं ये मधुर सा गीत। एंजॉय कीजिए, जल्द वापस आते हैं सेगमेंट तिथि विशेष के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में अब रुक करते हैं सेगमेंट तिथि विशेष का। इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि आज की तारीख यानी 13 मई को इतिहास में क्यों याद किया जाता है। कुछ चुनिंदा घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही समाचार पत्रों की सुर्खियां भी होंगी। तो चलिए शुरू करें सेगमेंट तिथि विशेष। 13 मई को साल 1648 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण पूरा हुआ था। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाए गए इस किले के निर्माण में कुल मिलाकर 10 साल लगे थे। साल 2007 में इस इमारत को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये किला तकरीबन 250 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है और वर्तमान में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। साल 1952 में 13 मई को ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद का पहला सत्र शुरू हुआ था। देश के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ और 13 मई को लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक हुई। लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था श्री जीवी मावलंकर को। इस ऐतिहासिक सत्र के साथ ही भारत में संसदीय लोकतंत्र की औपचारिक शुरुआत भी हुई थी। 13 मई सन 1962 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो 1952 से लेकर 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। उनके जन्मदिवस 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 13 मई सन 2000 को भारत की लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। ये प्रतियोगिता साइप्रस के निकोसिया शहर में आयोजित हुई थी। इस खिताब को जीतकर लारा दत्ता ने भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया था। इसके बाद लारा दत्ता हिंदी फिल्मों में आईं और इंडस्ट्री की कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनका विवाह मशहूर टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से हुआ। साल 1913 में 13 मई को ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से दुनिया के पहले 4 इंजन वाले विमान रूस की विट्याज S-21 ने उड़ान भरी थी। इसे इंजीनियर इगोर सिकोरस्की ने डिजाइन किया था। इसने भविष्य के भारी विमानों और आधुनिक एयरलाइनरों का मार्ग प्रशस्त किया। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की तरफ। तेल बचत के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काफिला आधा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक में दिए निर्देश। वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था भी लागू करने की अपील। कहा, कॉन्फ्रेंस, सरकारी बैठकें और सेमिनार भी वर्चुअल तरीके से करें। नीट यूजी रद्द, दोबारा होगी परीक्षा। केंद्र ने प्रश्न पत्र लीक होने की जाँच सीबीआई को सौंपी। अमेरिका ईरान शांति वार्ता विफल रहने एवं पीएम मोदी की अपील का रुपए और बाजार पर दूसरे दिन भी असर। रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर, अब शतक लगाने की बारी। शेयर बाजार भी 2% टूटा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कहा, शिक्षा उस भाषा में दें जिसे बच्चा समझे। कोर्ट का राजस्थान को स्कूली शिक्षा में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का निर्देश। और आईपीएल में गुजरात ने हैदराबाद को 82 रनों से हराया। गुजरात के 168 रनों के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 86 रनों पर सिमटी। जेसन होल्डर और रबाडा ने झटके 3-3 विकेट। तो श्रोताओं, ये थी कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियां और आज के तिथि विशेष सेगमेंट में बस इतना ही। आइए अब आपको एक बार फिर से संगीत की दुनिया में ले चलते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का ये अंक अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने साथी नमित राज को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनवाए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
3: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
2: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट

0: यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर है। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर-17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की कयादत वाली नौमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ टीवीके के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब टीवीके को एआईएडीएमके के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। टीवीके को अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के एक एमएलए एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में टीवीके के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीसामी की क्यादत वाली एआईएडीएमके ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद एमजीआर ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह 5वीं मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी अहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत

0: बहुत से फौरी इकदामात के बारे में कहा गया है। इस हिदायतनामे में 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद तशद्दुद से मुतालिक सभी केसों का नए सिरे से जायजा लेने का हुक्म दिया गया है, जिनमें वो केस भी शामिल हैं जिनमें कतई रिपोर्ट्स भी दाखिल कर दी गई है। इस हिदायतनामे में सरहद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की किफायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़रा-ए-आला ने वजीरों, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर-ए-आला, वजीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने PNG, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, DGP और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वज़ीर-ए-आला, वज़रा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर जरूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वज़ीर-ए-आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने PNB मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर खास तौर से जोर दिया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि वज़रा, MP, MLAs और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकामात जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वजीरों की काउंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियां मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी वजीरों, अरकान असेंबली अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बुहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट UG 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था, जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने CBI से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाक़े में नीट UG 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के SP ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। SP अमूल तांबे ने सब डिविजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं।

0: इससे पहले राजस्थान पुलिस के खुसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले ये तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मुशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क्यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लियामानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के जिला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ातरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के इख्तिताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इंकलाब ने वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलाह, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बनल अक्वामी खबरें इस तरह है, मुजाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा जेर गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है।

0: ईरान का बयान।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नव मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शियारी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म धर्मात्मा से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और साथियों की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और शब्द रचना है इंदीवर की।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म अमर प्रेम से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है RD बर्मन ने।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अमर प्रेम का ये सुरीला गीत। आर डी बर्मन का संगीत था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की।

0: अपना कार्ड दे। पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धोखेबाज से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, संगीत और शब्द रचना रविंद्र जैन की है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म धोखेबाज का ये गीत। संगीत और शब्द रचना दोनों ही रविंद्र जैन की थी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिले नादान से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत खय्याम का है और गीत के बोल लिखे हैं नक्श लायलपुरी ने।

श्रोताओं क्षमा कीजिए, ये गीत हम किसी कारणवश आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में, फिल्म अमर अकबर एंथनी से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। आई श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म जूली से किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

जूली फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में जिले की हलचल पेश की जाएंगी।

0: की हलचल। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
1: IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मेधावियों को मेडल प्रदान किए। डिग्री प्राप्त करना शैक्षिक जीवन का समापन नहीं बल्कि यह शुरुआत है। भारत के विकास में सहयोगी बनने की IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मंच से 4 विश्वविद्यालयों टॉपर और 13 विभिन्न कॉलेजों के टॉपर सहित 17 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन द्वारा निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर हरि सिंह रावत को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए छात्रों को संस्कारों का महत्व समझाया। उपराष्ट्रपति ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएं और नवाचार स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगन जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने नए स्नातकों से कहा कि वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब तक हम सबको मिलकर भारत को विकसित बनाना है। देश को ग्लोबल लीडर के रूप में सामने लाने के लिए ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण और सेवा भाव से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA द्वारा तैयार यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को भी नई रफ्तार देगा। मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर मेरठ के बिजौली गाँव में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पशुधन कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा,
2: मेरठ से प्रयागराज तक जो 600 किलोमीटर की दूरी है, जो 12 घंटे में पूरी होती थी वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, और 120 किलोमीटर की स्पीड से जिसमें निर्वाध गति से ये यात्रा पूरी होगी। तब लोग हवाई यात्रा की ओर कम मुखातिब होंगे, एक्सप्रेस वे से ज्यादा लाभ उठाएंगे।
1: मेरठ में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। इसमें नागरिक अपना ब्यौरा खुद दर्ज करा सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें बहुत कम समय लगता है। जनगणना की वेबसाइट पर जाकर निर्देशों का पालन करते हुए इसे आसानी से भरा जा सकता है। नागरिक 7 से 21 मई के बीच अपने मोबाइल या लैपटॉप पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया,

0: आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कपल कितने रहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, रूम्स कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या सुविधा है, कुकिंग गैस आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, नेट की फैसिलिटी है कि नहीं। व्हाट्सएप पर एक ओटीपी आती है, ओटीपी को आपको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक इम्यूनेशन आईडी जो है जनरेट हो जाती है। उस आईडी को आपको सुरक्षित रखना है ताकि जब 22 तारीख से जब हाउस टू हाउस हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है इन्वेंटरी के द्वारा किया जाएगा प्रेगनेंट के द्वारा, तो आईडी मांगने पर आपको देना है।
1: तकनीकी सहयोग जोहत शो इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मेरठ मंडल के प्रथम नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा मॉडल टीकाकरण केंद्र एवं HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन 14 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में 10,000 से लगभग वैक्सीन आ चुकी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि यह वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, के कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि अपनी बेटियों को यह वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अनंता का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति के सम्मान, प्रतिभा के उत्कृष्ट और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, खिलाड़ियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
2: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज सिद्दीकी का।
3: बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विभागों और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं और संबद्ध अधिकारियों को कमी पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें जन जन तक पहुँचाने को कहा है। असानी रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण समापन के उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था द्वारा सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रशिक्षु आरक्षियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की गई तथा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों की सेवा करने, ईमानदारी और पेशेवर पुलिसिंग के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान, जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत परेड में कुल 12 टोलियों के 293 प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं खास सुरक्षा अधिकारियों की गठित टीम द्वारा गत दिनों जनपद के समस्त तहसीलों एवं नगर पालिका क्षेत्र में मीट के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस बल के साथ संपूर्ण जनपद में गहन छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान अस्वस्थकर एवं अस्वच्छ कर स्थिति में खाद कारोबार करने वाले खाद कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी की गई व बिना लाइसेंस पंजीकरण के व्यवसाय संचालन करने वाले 9 खाद कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान को मौके पर ही बंद करा दिया गया। बैसाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कटुआ धाम समर्थ साहेब जगजीवन दास बड़े बाबा में आयोजित मेले के दौरान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जन कल्याण एवं जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। 7 मई को राजस्व प्रशासन दिवस के रूप में सौगणना अभियान की शुरुआत की गई। जिला जनगणना अधिकारी अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के अनुसार इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अधिकतम से जन सहभागिता सुनिश्चित कर जनपद बाराबंकी को सौगणना में अग्रणी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने विगत दिनों जनपद का दौरा किया। उन्होंने सर्वप्रथम जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर ओपीडी कक्ष, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। के दौरान मंत्री ने मरीजों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी

0: प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कक्ष सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अस्पताल के रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। मंत्री श्री राही द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज में कल्याण मंडल के समीप पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्यों का स्थलीय अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यों को तीव्र गति एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए। मंत्री ने इसी क्रम में जिला कारागार का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया और हिस्ट्री शीटर मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गी ने बताया कि मिसबाहुर रहमान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त विगत 25 वर्षों से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थों की निगरानी हेतु थाना जैतपुर में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है, साथ ही उसे जनपद स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार रजनी टॉक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार रजनी टोंक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन साद अहमद का है।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं साद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का हम सबके पसंदीदा कार्यक्रम बात आसपास की में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप सभी को हमारे आसपास हो रही सभी घटनाओं से अवगत करा पाए। श्रोताओं, इसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। सड़क जो हमारी मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन यही सड़क छोटी सी लापरवाही के कारण कई जिंदगियों को अधूरा भी कर देती है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इन्हीं हादसों को कम करने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 7 मई से 13 मई तक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित जीवन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सड़क सुरक्षा क्यों जरूरी है, प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है और आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी है। तेज रफ्तार, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी, ये कुछ ऐसी लापरवाहियां हैं जो सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोग ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करें तो बड़ी संख्या में हादसों को रोका जा सकता है। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में हमने बात की सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी ARTO बिजनौर से।
1: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। और जैसा आपने बताया कि अभी UN रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, मई 8 से मई 14 तक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जा रहा है। तो जैसा हम जानते हैं कि UN के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए गए थे, उसमें ये भी था एक पॉइंट, एक गोल ये भी था कि सड़क दुर्घटनाओं में जो लोगों की लाइफ जा रही है, जो डेथ हो रही है, उसको 50% से रिड्यूस करना था वो सभी नेशंस को। तो हमारे लिए भी ये टारगेट था SDG के अंतर्गत कि जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको बाय 50% हम उसको रिड्यूस करें 2030 तक। तो इस वजह से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, UP गवर्नमेंट द्वारा एवं UN द्वारा भी समय समय पर रोड सेफ्टी मंथ, वीक एवं फोर्टनाइट भी मनाया जाता है। इसमें हम लोगों को जागरूक भी करते हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करते हैं और सड़क सुरक्षा से संबंधित अभियोग में हम चालान भी करते हैं। जैसे अभी हमने रोड सेफ्टी मंथ मनाया था जनवरी माह में, फिर जनवरी माह के बाद उसे स्टेट गवर्नमेंट ने एक माह के लिए मौत के द्वारा से एक्सटेंड करके फरवरी माह के लिए भी कर दिया था। तो इन दो माह में हमने एक्शन प्लान बनाया था जिसमें हमने बहुत सारे स्कूल्स को कवर किया, कॉलेजेस को कवर किया, रोड साइड पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करा के रोड सेफ्टी के संबंध में अवगत कराया लोगों को। हमारी प्रचार वाहन थी जो सड़क पे और तहसीलों में जा जा करके, मुख्य जगहों पे जा करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया सड़क सुरक्षा के संबंधित। इसके अलावा जो रोडवेज के चालक परिचालक हैं, इनको इनका हेल्थ चेकअप, आई चेकअप और ड्रंक एंड ड्राइविंग के संबंध में भी लगातार चेकिंग की गई। इससे दो प्रकार की चीज़ें हुई। एक तो हमने जागरूक किया लोगों को, जिसमें जागरूकता बढ़ाया कि कैसे सही तरीके से वाहन का संचालन किया जाए। सिर्फ आपके ही सही होने से जरूरी नहीं है कि दुर्घटना ना हो, हो सकता है किसी दूसरे के वजह से भी आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में भी अवगत कराया। हेलमेट किस प्रकार का होना चाहिए,

0: कार्यक्रम ज़्यादातर देखते हैं हमारे जनपद का ही अगर देखा जाए
1: जी
0: तो जो 50% दुर्घटनाएं हैं वो बाइकर्स की हैं, उसमें बाइकर्स इन्वॉल्व हैं बाइक पे। और डेथ में भी अगर हम देखें तो 50% डेथ जो मोटरसाइकिल पे हैं उनकी डेथ हो रही है। तो अगर हम देखते हैं इस इनकी तो अगर ये इनमें ज़्यादातर केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें हेलमेट का प्रयोग ही नहीं किया गया। अगर हेलमेट का प्रयोग किया गया होता तो ये 50% डेथ घट गया होता और कम हुआ होता। तो एक तो हेलमेट का यूज़ वो बढ़े, दूसरा हेलमेट सही प्रकार का हेलमेट हो, जो ISM मानक युक्त हेलमेट हो। किस कोई ऐसा हेलमेट ना यूज़ करें जो आपको पता चला आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड पर पैरामीटर पर फिट नहीं बैठ रहा है और वो आपके लिए चाहे हेलमेट हो या ना हो एक जैसा हो रहा है। तो इन सब के बारे में अवगत कराया लोगों को, साथ ही चालान की भी कार्रवाई की गई ताकि लोगों में थोड़ा जागरूकता बढ़े।
2: स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। विशेष रूप से युवाओं में तेज रफ्तार और मोबाइल इस्तेमाल की बढ़ती आदत चिंता का विषय बनती जा रही है। लेकिन केवल प्रशासनिक कार्यवाही ही काफी नहीं है, समाज और नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। पिछले कई वर्षों से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक संगठनों का भी मानना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। इसी विषय में हमने बात की सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक NGO में 5 वर्षों से कार्य कर रही विशेषज्ञ गायत्री मेहता से।
3: UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, सुरक्षित सड़क व्यवहार को बढ़ावा देना और सरकारों, युवाओं, संस्थाओं तथा समुदायों को सड़क सुरक्षा के लिए एकजुट करना है। यह अभियान WHO के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। इस साल एक पूरा सप्ताह 8 मई से 14 मई के बीच में तय किया गया कि ये UN रोड सेफ्टी वीक रहेगा। इसका उद्देश्य मोटिव है युवाओं और नागरिकों को सुरक्षित सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक करना, हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा का पालन का बढ़ावा करना, शराब पीकर वाहन ना चलाना, मोबाइल फोन का यूज़ करते हुए वाहन ना चलाना, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए संवेदनशील होना, उनके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुरक्षित स्कूल जोन बनवाना, सरकारों और नीति निर्माताओं को साक्ष्य आधारित सड़क सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए प्रेरित करना, समुदाय, स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं को सड़क सुरक्षा अभियानों के लिए जोड़ना। सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित भारत, सुरक्षित जीवन, यह संदेश जन जन में पहुंचाना UN रोड सेफ्टी वीक का उद्देश्य है और हम सब लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि हम एक सुरक्षित भारत, विकसित भारत का निर्माण कर सकें। और ये बहुत बड़े कदम नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे कदमों से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क सुरक्षा की शुरुआत घर से होती है। जब माता पिता स्वयं ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तभी बच्चे भी जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हेलमेट और सीट बेल्ट केवल चालान से बचने का तरीका नहीं बल्कि जीवन बचाने वाला सुरक्षा कवच भी है। सड़क पर चलते समय एक छोटी सी सावधानी किसी परिवार की खुशियां बचा सकती है। सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिक की सोच और व्यवहार भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। आइए सुनते हैं कि आम नागरिक सड़क सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं।
4: मेरा नाम मुदस्सर आलम है। जहाँ तक के बात है, मुख्य कारण जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स के हैं वो ज़्यादातर उनमें आप देखेंगे जैसे कि जो यूथ हैं वो बहुत तेज़ बाइक, बहुत स्पीड से बाइक चलाते हैं, एक रीज़न ये है उसके पीछे, और हेलमेट का ना होना और कभी कभी ड्राइविंग के टाइम पर फ़ोन का इस्तेमाल करना, इस तरह के जो कारण हैं ये मुख्य कारण हैं एक्सीडेंट होने के। अगर हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस पर तो इन बात को हमें प्रायोरिटी पर लेना चाहिए कि वाइल्ड ड्राइविंग वी शुड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन, और सीट बेल्ट हमेशा लगानी चाहिए, और उसके अलावा स्पीड को हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत लिमिट जो जहां पर जिस तरह की लिमिटेशन है उसको ध्यान रखते हुए वो चीज़ें करनी चाहिए।
5: अच्छा, एक चीज़ और आती है कि आजकल आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे लेकर निकल जाते हैं स्कूल के या स्कूल में भी फैशन समझ लिया, इन पर आप क्या कहना चाहोगे?
4: हाँ, मुझे लगता है इसके लिए एक पूरा एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली है भी कि जो माइनर हैं उनको बाइक का घर वालों की तरफ से नहीं दी जानी चाहिए ताकि वो उसका रेस्ट्रिक्शन हो सके।
2: विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि हर व्यक्ति कुछ सामान्य नियमों का पालन करे जैसे हेलमेट पहनना, सीट

बेल्ट लगाना, गति सीमा का पालन करना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना तो कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सप्ताह केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन बचाने की एक पहल है। सड़क पर सुरक्षित रहना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर पर कोई हमारा इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, सुरक्षित ड्राइविंग केवल आपका नहीं दूसरों का जीवन भी सुरक्षित बनाता है। तो आइए हम सभी मिलकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प लें और सड़क सुरक्षा के इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। इसी संदेश के साथ मैं साद अहमद आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

बात आसपास की। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे, वाचन स्वर एवं संकलन था साद अहमद का। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुहाना सफ़र में। और आज के इस कार्यक्रम में आपके हम सफ़र हैं, मैं राजवीर सिंह
1: और श्रोताओं राजवीर के साथ मैं हूं नमित राज। हम दोनों का आपको प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: श्रोताओं आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुहाना सफ़र में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे साल 2018 के रेडियो सफ़र की।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज आपसे बातें होंगी आकाशवाणी के उस सफ़र की जो उसने तय किया साल 2018 में, साथ ही उन विशेष गतिविधियों और घटनाओं पर भी बात करेंगे जो 2018 में आकाशवाणी के प्रसारणों का हिस्सा रही हैं।
1: जी बिल्कुल राजवीर, साल 2018 वो साल था जिसने हमें कभी हंसाया, कभी रुलाया, तो कभी गर्व से हमारा सिर भी ऊंचा कर दिया।
0: जी हाँ नमित, मुझे भी याद है साल 2018 जब पूरे देश की नज़रें रूस पर टिकी थी, फुटबॉल वर्ल्ड कप का वो रोमांच जब फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया था।
1: और राजवीर उसी साल खेल के मैदान से एक और बड़ी खबर आई थी जब भारत ने एशियन गेम्स में 70 पदक जीतकर इतिहास रचा था।
0: जी हाँ,
1: इस गौरवशाली खबर को आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक पहुंचाकर अपना दायित्व भी निभाया था।
0: और नमित, बात अगर सिनेमा की करें तो साल 2018 में हमें फिल्म बधाई होने खूब गुदगुदाया था और उसी साल आई ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म अंधाधुन जो अपने अप्रत्याशित ट्विस्ट और बेहतरीन सस्पेंस के लिए जानी जाती है।
1: ये तो है। और राजवीर उसी साल फिल्मी गलियारों में शहनाइयां भी खूब गूंजी थी।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी से लेकर इटली के लेक कोमो में दीपिका और रणवीर का वो रब ने बना दी जोड़ी वाला पल, पूरा बॉलीवुड जैसे जश्न में डूब गया था।
0: जी हाँ बिल्कुल नमित, इस बात में तो कोई शक नहीं है, पूरा बॉलीवुड उस वक्त जश्न में डूबा था। और अब हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी कुछ देर के लिए इंजॉय करें और जश्न मनाएं इस खूबसूरत से गीत के साथ जो कि हमने लिया है फिल्म सुई धागा से।

0: तो नमित,
1: जी
0: अभी हमारे श्रोताओं ने सुना साल 2018 की फिल्म सुई धागा का ये गीत, और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर।
1: जी हाँ राजवीर, साल 2018 की बातें हो रही हैं और इस साल में जहाँ कुछ अच्छी खबरें आई थी तो वहीं कुछ ऐसी दुखद खबरें भी आकाशवाणी ने हमें सुनाई जिनकी भरपाई कभी शायद नहीं हो सकती। साल 2018 में हमने कई अनमोल रत्नों को खोया। सिनेमा जगत की चांदनी श्रीदेवी की अचानक मौत ने फिल्म जगत के साथ साथ पूरे देश को सन्न कर दिया था।
0: जी हाँ नमित, सिर्फ एक बाथ टब में डूबकर उनकी मौत हो गई थी, और उस समय ये काफ़ी चर्चा का विषय भी थी। और इसके साथ ही साल 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी देहांत हुआ था, जो कि एक राजनीति के एक युग का अंत माना जाता है।
1: बिल्कुल, और श्रोताओं उसी साल तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन का भी समाचार देशवासियों ने आकाशवाणी के माध्यम से सुना था।
0: हाँ, और नमित, भारत की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ और पहचान बना चुकी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का देहांत भी साल 2018 में ही हुआ था, जो अपनी सक्रिय विदेश नीति के लिए जानी जाती थी।
1: बिल्कुल, तो बहुत बड़े बड़े नाम थे राजवीर जी।
0: जी हाँ,
1: और साल 2018 में जहां बड़े बड़े राजनीति के दिग्गज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो वहीं राजनीतिक गलियारों से

0: भी हलचल बहुत तेज थी। याद है आपको वो अविश्वास प्रस्ताव जो आया था?
1: जी नमित, मुझे याद है, और मुझे वो भी याद है जब संसद में बहस के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को गले लगाकर सबको हैरान कर दिया
0: बिल्कुल
1: था, है
0: हैरान
1: ना।
0: तो कर दिया था,
1: और
0: बिल्कुल
1: नमित, उसे एक झप्पी की चर्चा महीनों तक रही थी।
0: जी। और श्रोताओं, साल 2018 के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिन्होंने राजनीति की बिसात को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के 3 प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करके सबको चौंकाया था।
1: जी बिल्कुल नमित, और ये बड़ी ही आश्चर्य का उस वक्त विषय था कि
0: जी
1: इतनी
0: जी जी
1: जबरदस्त जीत उस समय कांग्रेस को मिली थी। तो
0: बिल्कुल
1: चलिए ठीक है, अब समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और यहाँ पर सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को साल 2018 में आई फिल्म लैला मजनू का गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफ़र। और आज इस सफ़र में बात हो रही है साल 2018 के आकाशवाणी के सफ़र की।
1: तो राजवीर, क्यों ना अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए भारत की उन वैज्ञानिक उपलब्धियों पर भी जो साल 2018 में भारत ने प्राप्त की थी और आकाशवाणी ने उन गतिविधियों को अपने श्रोताओं तक पहुंचाया था।
0: जी बिल्कुल नमित, क्यों नहीं। अगर हम सरहदें पार करके नमित आसमान की तरफ देखें तो विज्ञान की दुनिया ने 2018 में हमें गौरव के पल दिए। इसरो ने GS-AT-29 और GS-AT-11 जैसे भारी भरकम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर दुनिया को भारत की वैज्ञानिक ताकत का एहसास
1: कराया था। हाँ, ये तो है राजवीर। लेकिन उसी साल एक खबर देखिए ऐसी भी आई थी जिसने विज्ञान प्रेमियों और देश प्रेमियों की आंखें नम कर दी थी।
0: जी हाँ अमित,
1: महान ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने इसी साल दुनिया को अलविदा कहा था और उन्होंने जाते जाते हमें ये भी सिखाया कि सितारे सिर्फ आसमान में नहीं होते बल्कि जमीन पर इंसान के हौसलों में भी होते हैं।
0: जी हाँ अमित, ये तो है। अगर इंसान के हौसले बुलंद हों और वो ठान ले कि मुझे कुछ कर दिखाना है तो फिर उसे कोई रोक ही नहीं सकता।
1: नहीं रोक सकता, बिल्कुल।
0: नमी साल 2018 में हमारे प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत भी की थी, जानते हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल राजवीर जी, जानता हूँ। आप आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहे हैं जिसमें आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार को साल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है और ये योजना उन परिवारों के लिए एक वरदान की तरह है जो महंगा इलाज कराने में असमर्थ है।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने नमित। और इसी साल भारत ने निपाह और जीका वायरस के प्रकोप का भी सामना किया था और अपनी स्वास्थ्य प्रणाली की जो है मुस्तैदी दिखाई थी।
1: जी बिल्कुल राजवीर जी, वाकई एक चैलेंज था हमारे सामने और स्वास्थ्य विभाग के लिए। चलिए यहाँ पर अब एक म्यूजिकल ब्रेक ले लिया जाए।
0: जी बिल्कुल, गीत हम अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे और सुनवाएंगे साल 2018 की ही किसी एक फिल्म का। चलिए यहाँ पर सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को साल 2018 में आई फिल्म धड़क का ये गीत।

0: फिल्म धड़क से अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत अजय गोगावले की आवाज़ में। और गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफ़र आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: जी हाँ नमित, साल 2018 का सफ़र अधूरा रहेगा अगर हम उन तिजोरियों की बात ना करें जिनसे देश की धड़कन चलती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और क्योंकि इस साल कुछ ऐसी खबरें आई थी, कुछ संकट की घड़ियां आई थी जिनके बारे में चर्चा बनती है।
1: जी हाँ नमित, क्या था कि साल 2018 वो साल था जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त पड़ रही थी, लेकिन हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा था।
0: जी हाँ बिल्कुल राजवीर, PIB की रिपोर्ट कहती है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी GDP विकास दर करीब 6.8% से 7.2% के बीच झूलती रही।
1: जी हाँ
0: और IMF ने भी माना था कि सुधारों के दम पर भारत लंबी रेस का घोड़ा है।
1: हाँ नमित, लेकिन भारत के लिए ये राह इतनी आसान नहीं थी। याद है आपको, उसी साल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने हमारी जेब पर थोड़ा बोझ जरूर डाला था और
0: बिल्कुल
1: शेयर बाजार भी थोड़ा नीचे आ गया था,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि PNB घोटाला और IL&FS जैसे संकटों ने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी थी। IL&FS जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है जो भारत की एक प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और इसका काम है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनियां हैं उनको लोन देना और निवेश का प्रबंधन करना। आपको मालूम है नमित, 2018 में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का भारी कर्ज ना चुका पाने के कारण ये जो कंपनी है ये संकट में आ गई थी और इसका पूरा जो असर है वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ा था और जिसके कारण जो निवेशक हैं वो शेयर मार्केट में निवेश करने से भी कतरा रहे थे और जो हमारा शेयर मार्केट है वो भी डाउन हो गया था
0: जी
1: उस वक्त।
0: बिल्कुल, पूरा बाजार जो है वो
1: हाँ
0: औंधे मुंह गिर गया था। और मगर कहते हैं ना राजवीर जी, जब देखिए इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद मिल
1: मिल
0: जाते
1: जाते
0: हैं।
1: हैं।
0: उसी साल GST लागू होने का 1 साल पूरा हुआ था और टैक्स भरने वालों की तादाद में भारी इजाफा हुआ था
1: जी
0: जिससे
1: बिल्कुल
0: भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती मिली थी।
1: जी हाँ नमित, अब जो घड़ियों की सुइयां हैं वो भी अब कह रही हैं कि अब समय हमारे

0: बात बहुत ज़्यादा नहीं है, एक गीत भी
1: जी
0: यहाँ पर अपने श्रोताओं को सुनाना है।
1: जी बिल्कुल
0: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे साल 2019 के आकाशवाणी के सफर के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए, लेकिन चलते चलते आनंद लीजिए आप इस खूबसूरत से गीत का।

0: श्रोताओं, यासिर देसाई के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गोल्ड का ये खूबसूरत सा गीत।
1: और ये खूबसूरत सी फिल्म गोल्ड रिलीज हुई थी साल 2018 में।
0: बिल्कुल,
1: तो 2018 का जो कार्यक्रम का जो सफ़र है हमारा, वो आज यहीं पर संपन्न होता है। और नमित, कल सुहाना सफ़र कार्यक्रम में फिर रुख करेंगे एक नए सफ़र की ओर।
0: साल बातें होंगी 2019 की।
1: और अपने श्रोताओं को बताएंगे साल 2019 में आकाशवाणी का सफ़र कैसा रहा, ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई साल 2019 में जो हमारे आकाशवाणी के रेडियो प्रसारण का हिस्सा रहीं। उन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी कल के कार्यक्रम सुहाना सफ़र में। और आज का ये कार्यक्रम सुहाना सफ़र हमें यहीं पर संपन्न करने की दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफ़र। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नमित राज
1: और राजवीर की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो आप हमें अपनी फरमाइश, अपना नाम और पता लिख करके हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9457078288। तो फिर देर मत कीजिएगा, उठाइएगा अपना फ़ोन और भेज दीजिएगा अपनी फरमाइश हमारे इस नंबर पर। और अभी जो फरमाइश हमारे पास आई है वो आई है फिल्म, जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म ज़मीर से। आवाज़ है किशोर कुमार की और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नसीर, साजिया शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से फरमाइश कर रहे हैं जुनेद मुजावर, साहिबा मुजावर और मिखाइल जैनब मुजावर। और ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आया है दत्तरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की ओर से। ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी की ओर से। गीत सुनना चाहा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद का, पाकुड़ झारखंड से। और इन्हीं के साथ हैं बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये मैसेज है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा का। मैसेज किया है ज़िला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से, नियमित श्रोता है हमारे मुकेश वर्मा और गौरव गरिमा शर्मा। ये मैसेज हमारे पास आया है ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप की ओर से।
0: ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से अगला मैसेज हमें मिला है, फरमाइश करता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सकलैनी और गुलशन साहिबा। ओल्ड लिसनर्स क्लब मगनपुर झारखंड से आप हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और इनके घर के सभी सदस्य। गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करनपुर राजस्थान से आप हैं राजू टूटेजा, खुशदिल, उर्मिला टूटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव सेठी करनपुरी और इस्माइल टूटेजा। ज़िला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से ये फरमाइश हमें भेजी है शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। एक अन्य मैसेज हमें प्राप्त हुआ है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, फरमाइश करता है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव का। ज़मीर फिल्म के इसी गीत को सुनना चाहा है परी महल कासगंज से, फरमाइश करता है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, मोहम्मद असलम सैफी, इल्मा खान और मास्टर जाहिद अली। गांव फ्रांसी ज़िला हिसार से आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी सुनने वालों को सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का गीत फिल्म ज़मीर से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर।
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na.
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म आई मिलन की बेला से, और इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी ने। ये अगला मैसेज हमें मिला है मोहल्ला नादे हिंद नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, गीता रानी वर्मा, अनिता वर्मा, अमित वर्मा, मेघा वर्मा, नैना वर्मा, वीरेंद्र सिंह वर्मा और सुरेंद्र सिंह वर्मा का। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जनपद बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। फरमाइश कर रहे हैं श्री गणेश आविका आर्ट श्री रामपुर से डॉक्टर अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार। ये मैसेज हमें मिला है शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल की ओर से। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और साथ में

आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। अगले गीत की फरमाइश से पहले आपको सुनवाते हैं ये संदेश।

0: आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो हमारे जो भी श्रोता साथी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, अपनी पसंद के गीत इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना, तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 9457078288 पर। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म आया तूफान से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, असद भोपाली का गीत है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा है वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पुरुष ने। यह पत्र हमें मिला है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर की ओर से। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। ये फरमाइश हमारे पास आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर की ओर से। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। गांधी चौक रोपड़ से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। ये मैसेज हमें मिला है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान की ओर से। सिंधौली मीरगंज बरेली से फरमाइश की है जिशान वारसी ने। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन ने। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की ओर से। ये फरमाइश है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशबद सिंह राहुल की ओर से। फरमाइश की है इसी गीत के लिए जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और बेटी अलशिफा परवीन ने।
1: जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से भी हमें व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है। फरमाइश करता है रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से आप हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी। एक अन्य फरमाइश गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद की। ग्राम जुजहला थाना शिवाला कला बिजनौर से फरमाइश करता है राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महवेश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है गांव और पोस्ट राहुल।

पिपली जनपद बिजनौर से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत और करिश्का चौहान की ओर से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शाही मार्केट सिहारा जनपद बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी। और ये मैसेज हमें मिला है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह का ये मैसेज है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से। और ये फरमाइश हमारे पास आई है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश चौहरी की। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। और इस गीत को सुनना चाहा है चंद्रनगर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग ने। ये मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का। जवाहर नगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से फरमाइश की है भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज़ा मुस्कान और अशरफ अली ने। साथ में है नगमा नाज मंसूरी। यह मैसेज है रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा भी इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। और ये शमशुल कमर राही, शाहिना, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान,

0: उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी हैं गंज डुंडवारा से फरमाइश की है। और ये अगली फरमाइश हमें मिली है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा की। अनारकली बाजार जगराओं से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। ये मैसेज हमें मिला है ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्टि पटवा की ओर से। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है
1: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज़ अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी का। साथी कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैज़ी, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा।
0: संगीता डागेज शाहगंज से फरमाइश की है महफूज उर्फ पटेल अंसारी, फिरदौस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमैरा अंसारी, हिफ़ज़ा अंसारी, ज़िक्रा अंसारी, हबीबा अंसारी, हलीमा अंसारी और हसन चिट्टू ने। यह अगला मैसेज हमें मिला है गांधी रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद आशिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, मोहम्मद जावेद शेख, फातिमा गाजी शेख और मुन्ने सलवानी की ओर से। साथ में हैं कलीम शेख। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म पाकीज़ा का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न होता है। मुझे यानी अपने साथी नमित राज को दीजिएगा अनुमति, कार्यक्रम में आपके साथ बने रहेंगे राजवीर सिंह। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। पूर्वाहन के 11 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

धड़कन। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे कुमार सानू को। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया नदीम शर्मा ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का यह अगला गीत श्रेया घोषाल के स्वर में, फिल्म जिस्म से। नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को तैयार धुन दी है MM करीम ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए पेश है श्रेय घोषाल, कविता सुब्रमण्यम, श्रेय घोषाल और के की आवाजों में फिल्म देवदास का ये गीत। नुसरत बद्र का गीत है और संगीत है इस्माइल दरबार का।

फिल्म देवदास में भी आपने सुना कविता सुब्रमण्यम, श्रेया घोषाल और के को। नुसरत बद्र के इस गीत को संगीतबद्ध किया इस्माइल दरबार ने। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब पेश है आमिर जमाल की आवाज़ में फिल्म मर्डर का ये गीत, जो लिखा सईद कादरी ने और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने।

आमिर जमाल को भी आप सुन रहे थे फिल्म मर्डर में। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म अक्सर से। आवाज़ हिमेश रेशमिया की है, समीर का गीत है और संगीत भी हिमेश रेशमिया का ही है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। पूर्वाहन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी,
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार

0: आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए,
0: जी
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं

0: audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, खड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, खड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
4: चलो,
5: पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, बहुत ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: ओह, अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
2: शुरू हो जाती है।

0: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
1: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
2: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
2: अरे ये क्या गिरा?
1: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
2: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
1: मेरे ही मौसम का एक फल है।
2: दिखाओ ना।
1: अम्मा दे दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
2: इसका नाम
1: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
2: स्वाद है,
0: पसंद है,
2: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
2: कौन सा फल
1: नहीं समझी?
2: नहीं।
1: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ, आ, आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: हाँ बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
0: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
1: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, लो। घर भी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा

0: सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
2: You heard right behind you were the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
3: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
0: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुको, रुको। जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतने

0: पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
1: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: साहब मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
2: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
3: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
2: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
2: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
3: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
2: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
3: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
4: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
4: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
4: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
1: जी,
6: यस सर।
4: ये मेज के चारों ओर।
1: जी सर। उधर से।
4: हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
1: जी सर।
4: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
1: जी सर।
4: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
1: जी सर।
4: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
1: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस

0: तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
2: यस सर,
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर।
1: कोई शक?
3: नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
4: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
5: धीमे बोलो, धीमे।
4: जी,
5: उन्हें पता ना चल जाए।
4: जी सर।
5: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
4: जी।
5: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
4: ठीक है सर।
5: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
4: जी सर।
5: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
4: जी सर।
5: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। धीरे, बहुत धीरे,
4: धीरे।
5: तबे बहुत। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
4: रेंगेंगे। जी सर।
5: कोई भी उठ कर नहीं जाएगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपने पोजीशन ले ले।
4: हाँ सर।
5: एवरीबॉडी रेडी?
4: यस सर।
5: यस सर। अब हथगोला फेंको।
1: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

चर्चा का विषय है। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। रात 10:30 पर सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सुरेंद्र कुमार की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें। प्रस्तुति सहयोग यशोधर डबराल का होगा और प्रस्तुति शोभित शर्मा की। सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे कुलवंत सिंह की गाई शबद। कानून की बात हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे शाम 7:32 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे शाम 6:55 पर। गीत संध्या रात 8 बजे और रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

विविधाक्रम में शाम 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा की वार्ता, जिसका विषय रहेगा खड़ी बोली, उद्भव, विकास और वैशिष्ट्य। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यशपाल सिंह से जितेंद्र कुमार की भेंटवार्ता का विषय होगा औद्यानिक फसलों से फसल अवशेष प्रबंधन, जिसे हमारे किसान भाई सुनेंगे शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत। युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना और दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में।

संदेश.com। ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे दिन में 2:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत अपराह्न 1:45 पर सुनिएगा भुंगर खान और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत। दिन में 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में आयुर्वेदिक डॉक्टर निधि अरोड़ा से तनप्रीत कौर की बातचीत का विषय रहेगा महिलाओं और युवाओं में माइग्रेन की बढ़ती समस्या। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित बृजनारायण का सरोद पर राग मोल्तानी और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी पेश किया जाएगा 12:30 पर। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। दोपहर के 12:05 हो रहे हैं। शास्त्र संगीत के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए पंडित बृजनारायण का सरोद वादन। आप पेश कर रहे हैं राग मोल्तानी। विलंबित और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं सुखविंदर सिंह नामधारी।

शास्त्र संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित ब्रिज नारायण का सरोद वादन। आप पेश कर रहे थे राग मुल्तानी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म द ट्रेन से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। उन्हें शौक था अपनी

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। जवानी की हवाओं में एक अलग ही सुरूर होता है, जब धड़कता है दिल तो हर फैसला मंजूर होता है। जी हाँ श्रोताओं, जवानी का दौर ही ऐसा होता है जहाँ ना कोई फिक्र होती है ना कोई बंदिश, बस दिल में ढेर सारी उमंग होती है और लबों पर शरारत। जब इस अल्हड़ जवानी को आर डी बर्मन साहब के म्यूजिक और किशोर दा का जादुई आवाज़ का साथ मिला, तो बन गया एक ऐसा तराना जो आज भी हर युवा को थिरकने

किशोर कुमार को भी आपने सुना फिल्म जवानी दीवानी में, आनंद बख्शी का गीत और संगीत आर डी बर्मन का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अनजाना का गीत। ये जवानी ये हुस्न ये महफिलें सब ढल जाएंगी, ये जवानी ये हुस्न ये महफिलें सब ढल जाएंगी, रह जाएंगी तो सिर्फ वो यादें जो कभी हमने साथ निभाई थी। जहाँ श्रोताओं, कहते हैं कि रूप और जवानी तो वक्त की अमानत है, आज हैं और कल नहीं, लेकिन जो चीज़ वक्त की सीमाओं को लांघ कर अमर हो जाती है वो है सच्ची मोहब्बत। जब राजेंद्र कुमार के अभिनय को मोहम्मद रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ और आनंद बख्शी साहब के गहरे शब्दों का साथ मिला तो वो इतिहास में दर्ज हो गया और बनाए खूबसूरत नगमा। आइए सुनते हैं फिल्म अनजाना से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर सजाइए अमर गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना फिल्म अनजाना का ये बेहद रोमांटिक गीत गीतानंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब पेश है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म तलाश का गीत। दोस्तों कहते हैं कि जुबां जो बात छुपा जाती है, आँखें वो राज खोल देती है, ख़ासकर तब जब मोहब्बत नई नई हो और पलकों के पीछे हया का पहरा हो। तो आइए आंखों की इसी गुस्ताखी को महसूस करते हैं और सुनते हैं फिल्म तलाश का ये बेहद सुरीला सा गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म तलाश का ये गीत। श्रोताओं, जिगर मुरादाबादी का एक क्लासिक शेर है, ये इश्क नहीं आसां, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ श्रोताओं, मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये वो रास्ता है जहाँ कदम कदम पर इम्तहान होते हैं, तन्हाई होती है और कभी कभी ज़माने भर की बदनामी भी। लेकिन एक सच्चा आशिक इन सब बंधनों से परे होता है। तो आइए सुनते हैं दिल के टूटे तारों को झंगरत करता ये बेहद खूबसूरत सा गीत फिल्म कटी पतंग से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government, led by C. Joseph Vijay, won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK major opposition party walked out of the Assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Adlekar, to prove his majority in the floor of the House after his party was able to secure only 108 seats in the recently concluded Assembly election. The Minister of Youth Affairs and Sports, in collaboration with the Minister of Home Affairs, has launched the national-level quiz for the Viksit Vibrant Villages Programme 2026 on the My Bharat platform. The Ministry said that the quiz marks the first stage of selection for youth participation in the Immersive Border Village Engagement Programme scheduled to be held next month. All India NR Congress leader N. Rangaswamy was sworn in as the Chief Minister Puducherry today for the record fifth term. At a ceremony held at the Lok Nivas Puducherry, Lieutenant Governor K. Kailashanathan administered the oath of office and secrecy. Maladi Krishna Rao of the All India NR Congress and A. Namasivayam of the BJP were also sworn in as ministers at the ceremony. Among those present were BJP National President Nitin Nobin, BJP National General Secretary Organization B.L. Santosh, State BJP President V.P. Ramalingam, officials and party leaders. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocols. According to sources, the reduction in the number of vehicles in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visits to Gujarat and Assam. The move comes in line with the Prime Minister's 7 appeals to citizens to contribute towards economic resilience by reducing dependence on imported fuel and adopting environmentally sustainable alternatives amidst West Asia crisis. Sources further added that while the convoy size was reduced, all critical security components continued to remain in place. Union Home Minister Amit Shah downsized his convoy, reducing

0: मौत की वजह अभी वाजह नहीं हुई है। प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा बिष्ट यादव इस वक्त रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर अपर्णा यादव के शौहर प्रतीक यादव का अचानक इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत कल से शुरू होने वाले दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास की मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद शिरकत करेंगे। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों को जदीद बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी के कयाम का ऐलान किया है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मख्तस करने को कहा गया है। कमेटी 31 अगस्त तक वजीर आजम की इक्तसादी मशावरती काउंसिल के रुकन संजीव सान्याल को अपने तफसीली नतायज और मतलूबा फंडिंग की तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदादी ड्यूटी बढ़ा दी है, जो आज से लागू हो गई है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर दरामदादी ड्यूटी 5% और प्लेटिनम पर 5.4% होगी। मजीद बरां तामील के उसूलों के तहत कीमती धातुओं में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट पर बरामदादी ड्यूटी 4.35% होगी। रियासत के काउंसिल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में आज से इंडियन लैंग्वेज समर कैंप 2026 शुरू हो रहा है। ये खसूसी कैंप वजारत तालीम हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से 19 मई 2026 तक जारी रहेगा। कैंप का अफ्तताह मरकजी वजीर तालीम करेंगे। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर संदीप सिंह ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों को भारतीय जबानों, लोक रवायात और सकाफती इकदार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कैंप के जरिए तलबा को अपनी मादरी जबान और भारतीय जबानों को भरपूर विरसे को समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को राम राम। मैं नीतू, अपनी सभी बहनों का थारे पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में खूब स्वागत करूं। भाई पहले तो मुझे ये बता दो, कैसी है मेरी बहनें? घर में सब बढ़िया? राजी खुशी? बड़े बुजुर्ग बच्चे बहन सब बढ़िया? भाई मैं तो प्रभु से ना यो ही प्रार्थना करूं, मेरी बहनों को, उनके घर परिवार में सबको, आस पड़ोस सबको खूब खुश रखे, स्वस्थ रखे सबको। भाई बहनों इस समय बड़ी गर्मी हो रही, देख ही रही हो, ऐसे में अपने घर में ना

और आजकल तो बहनों सभी को रहवे कि भैया कुछ भी है फटाफट अपने थोड़े से काम निपटा के चाहे 10 मिनट ही निकाल लो, टहलना भी जरूरी हो वे। सुबह की ताजी हवा, हरियाली, पक्षियों की चहचहाट, ये शरीर और दिमाग में ना ताजगी भर दे बहनों। पर बहनों ये जो हरियाली हो, ताजगी, ये सुंदरता, ये सब यूं ही थोड़ी मिला है। हमारी बहनें इसमें भैया बड़ी मेहनत करें, और खासकर हमारी ग्रामीण महिलाएं, तब जाके कहीं हरा भरा गांव होवे, खुशहाली आवे। वे मेहनत तो करनी पड़े बहनों। तो बहनों आज हम ना थारे से ढेर सारी बातें करेंगे, और आज का क्रम थारा स्वास्थ्य वो भी सुनवावेंगे। उसमें महिलाओं और युवाओं में बढ़ती माइग्रेन की समस्या, इस पे आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर निधि अरोड़ा से तनप्रीत कौर की बातचीत, ये सब हम आपको सुनवावेंगे। कार्यक्रम में बहनों आखिर तक जुड़े रहना। पर पहले सुने यो जरूरी संदेश।

0: सुगंध क्या हो रहा है?
1: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
2: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेश के बाद वापस मैं अपनी बहनों का कार्यक्रम घर संसार में स्वागत करूं। बहनों, हरा भरा गांव, मतलब एक ऐसा गांव जहां चारों तरफ हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, स्वच्छ वातावरण और हरित गतिविधियां जैसे वृक्षारोपण, बागवानी, पानी का संरक्षण, ये सब नियमित रूप से हो। बहनों, गांव का प्राकृतिक संतुलन बना रहे, वहां प्रदूषण कम हो, ऐसा गांव हो हरा भरा, गांव में स्वस्थ और सुंदर जीवन शैली को बढ़ावा मिले। बहनों, ऐसा हरा भरा वातावरण जहां हो, जहां हम रह रहे, भला ऐसा कौन ना चाहे कि हमें ऐसा वातावरण मिले, ऐसा हो हमारे घर के आसपास, सब जगह हरा भरा सुंदर, मन को मोहले। सब चाहे बहनों, हम भी चाहे, हमारी बहनें भी चाहे, सारे ही यो ही चाहे बहनों। और बहनों, वैसे भी देखो हमारा जो देश है ना, ये गांव का देश हो, गांव में तो जीवन खिल के आवे, और गांव की धड़कन कौन हो, हमारी ग्रामीण महिलाएं, जिनकी मेहनत, सपने और संकल्प ने इन जगहों को जीवन दे रखा। हमारी बहनें घर भी संभालें और खेत भी देखें। सच में बहनों, ये जो ग्रामीण महिलाएं हो, हमारी बहनें हो, ये बदलाव की ताकत हो गए। बहनों, सरकार की अलग अलग योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, पेड़ लगाओ, इनका लाभ उठाकर महिलाएं अपने गांव को स्वच्छ, हरा भरा और मजबूत बनाने में पूरा योगदान देवें। महिलाएं बागबानी या वृक्षारोपण करके पर्यावरण में योगदान देने के साथ ही जल संरक्षण और सोलर एनर्जी जैसे कदम भी उठावें। और खुद से हमारी बहनें छोटे छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार करके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने में पूरा सहयोग देवें। भी कितने काम करें हमारी बहनें, सोचो तो है, कुछ ना हो भाई तो ट्यूशन पढ़ा लेंगी, अचार, मुरब्बे, चिप्स, पापड़, ये काम करेंगी ताकि गांव जो है हरा भरा के साथ साथ खुशहाल हो, तरक्की करें, सब लोग आगे भी बढ़ें। बहनों की जागरूकता और इन योजनाओं का सही इस्तेमाल गांव को आत्मनिर्भर, हरा भरा और खुशहाल बनाने में पूरी तरह से सक्षम होवे। बहनों, महिलाओं की सहभागिता के कारण आज कितने ही गांव हरे भरे हो रहे, तरक्की कर रहे। प्लास्टिक का प्रयोग बंद करके अधिक से अधिक पेड़ लगाने में हमारी बहनें सबसे आगे हो गए। हमारी बहनें अब इतनी समझदार हैं, वो अच्छे से जाने भाई, ये जो प्लास्टिक हो गए ना, ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरे का निशानी है, नुकसानदायक है, और पर्यावरण के लिए क्या, ये तो हमारी सेहत के लिए भी सही ना हो गए। तो हमारी बहनें अब प्लास्टिक से दूरी बना रही, और हमारी बहनें पेड़ पौधे खूब लगा रही। पेड़ पौधे लगाने से वर्षा

0: जो होवे बारिश होवे वो अच्छी होवे, और पक्षी जो होवे वो भी पेड़ों पे घोंसले बनावे, खेती भी अच्छी होवे, और इस सबसे गांव की तरक्की हो, गांव हरा भरा और सुंदर नजर आवे। अच्छा, पेड़ पौधे ज्यादा लगाने से ना बहुत सी खाने पीने की वस्तु भी घर में ही मिल जावे। कितनी सब्जियां होवे, कितनी चीजें ऐसी होवे जो हमारी बहने घर के ही आंगनों में क्यारियों में लगा लेवे, जो घर में आंगन में कच्ची जगह हो, घर के आसपास हो, उस सब में लगा लें, तो उससे जो होती है उन्हें खाने पीने की एकदम शुद्ध चीजें भी मिल जावे और साथ में वो हरियाली हो, बहुत सुंदर लगे। और पेड़ पौधे ज्यादा होने से ऑक्सीजन भी मिले, ताजी हवा मिले, जो शरीर को स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट भी बनावे। लेकिन इस सब के बावजूद भी बहनों, एक बात तो सच है कि यो जो जीवन हो वह इसमें उतार चढ़ाव, हारी बीमारी, यो सब लगे रहे। और ऐसी एक बीमारी हो वह माइग्रेन। बहनों, माइग्रेन में मस्तिष्क में भयंकर दर्द हो वह, इतना दर्द हो कि इंसान बेचैन हो जावे। जिस समय भी यो दर्द उठाए ना, आदमी को कुछ ना है सूझता। और आजकल देखो यो बढ़ता ही जा रहा, यो माइग्रेन की समस्या बढ़ती जा रही, और महिलाओं और युवाओं में तो खास कर यो समस्या ज्यादा हो रही। बहनों, आखिर क्यों हो वह यो समस्या, क्या इलाज हो वह इसका, और क्या इससे बचा जा सके, ऐसे कितने सवाल हमारी बहनों के हो गए है कि ना है? तो बहनों, आज का जो हमारा क्रम हो गया ना, थारा स्वास्थ्य, इसमें आज हम यो ही सुनवावेंगे, महिलाओं और युवाओं में बढ़ती माइग्रेन की समस्या। और हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर निधि अरोड़ा, और उनसे बातचीत कर रही हैं तनप्रीत कौर। तो बहनों, सुने हैं थारा स्वास्थ्य।
1: बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसे आजकल बहुत सी महिलाएं और युवा जो हैं वो परेशान हैं, माइग्रेन यानी कि आधे सिर का तेज दर्द। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं जानी मानी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर निधि अरोड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहिबा।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि माइग्रेन आखिर है क्या?
2: माइग्रेन एक तेज सिरदर्द को कहते हैं जो ज्यादातर एक साइड होता है, बहुत रेयर केसेस में ये दोनों साइड होता है, नहीं तो एक साइड तेज सिर में दर्द होता है जिसमें आवाज से और रोशनी से परेशानी होती है पेशेंट को, उल्टी और जी मचलाना जैसी समस्याएं होती हैं, कभी कभी गर्दन में जकड़ाहट भी हो जाती है, इसमें आंखों के सामने धारियां आना, ये सब समस्याएं सिरदर्द के साथ हो जाती हैं
1: माइग्रेन में।
2: हाँ जी,
1: लेकिन ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि दोनों तरफ ही सिर दर्द होता है, और लेकिन इसे बोलते हैं कि माइग्रेन जैसे आधे सिर में।
2: देखिए 90% या 95% केसेस में ये एक साइड ही होता है, बहुत रेयर केसेस जो बहुत पुराने हो चुके हैं उन केसेस में दोनों साइड पूरे सिर में ही दर्द माना जाता है। फिर
1: डॉक्टर साहिबा, माइग्रेन जैसे आपने बताया कि ये दोनों तरफ हो सकता है, सीधे साइड भी हो सकता है और मतलब उल्टी साइड, दोनों तरफ ही ये सिरदर्द हो सकता है, तो लेकिन ये नॉर्मल सिरदर्द से कैसे अलग है?
2: ये नॉर्मल सिरदर्द से इस तरीके से अलग है क्योंकि नॉर्मल सिरदर्द जो होता है वो तनाव के कारण, थकान के कारण, नींद की कमी के कारण, गैस की कमी के कारण होता है, जो कि ज्यादातर आराम करने से, बाम लगाने से, गैस की दवाई खाने से ठीक हो जाता है, पर माइग्रेन का सिरदर्द इतना तेज होता है कि ये नॉर्मली ठीक नहीं होता है, जब तक कि पेशेंट दवाई ना ले तब तक ये ठीक नहीं होता है।
1: जी, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है।
2: हाँ जी, अक्सर इसमें
1: असहनीय होता है।
2: हाँ जी, ये असहनीय होता है, ये ज्यादातर पेशेंट की पूरी लाइफस्टाइल को, पूरा डेली एक्टिविटीज को ही डिस्टर्ब कर देता है, तो इसमें अक्सर पेशेंट को ऑरा भी होता है जो कि एक नॉर्मल सिरदर्द में नहीं होता है।
1: जी जी जी, लेकिन आखिरकार डॉक्टर साहिबा ये माइग्रेन होता क्यों है, इसके क्या कारण है?
2: माइग्रेन के कई कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है जीवन शैली ठीक ना होना, जैसे कि उसमें अनियमित नींद होना और तनाव रहना, ठीक है, ज्यादा सोना कम सोना दोनों ही इसके कारण है, भूखा रहना, ठीक है, इसके अलावा तेज रोशनी, तेज खुशबू और तेज धूप से भी ये बढ़ता है, स्क्रीन टाइम का ज्यादा यूज करना, टीवी, फोन, मोबाइल्स, इन सब का ज्यादा यूज करना, मौसम में बदलाव, इन सब से भी ये होता है, गलत खान पान जैसे कि जंक फूड का ज्यादा खाना, तेज मिर्च मसालेदार खाने ज्यादा खाना, खट्टा ज्यादा खाना, चॉकलेट्स, पनीर, इन सब का ज्यादा सेवन, ये भी इसको बढ़ाता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जो कि अक्सर फीमेल्स में कारण बनता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के दौरान महिला

0: इससे अक्सर ग्रसित रहती हैं।
1: ग्रसित रहती है।
0: और इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चों को अपने माँ बाप से मिलते हैं। जो माँ बाप को अगर ये दिक्कत होगी तो अक्सर बच्चों को भी ये
1: अच्छा,
0: दिक्कत हो
1: माइग्रेन
0: जाती
1: भी
0: है।
1: एक जेनेटिक बीमारी है।
0: जी जी
1: जी, तो काफी चीजें हैं ऐसी जो हमें ध्यान में रखनी है, कि जैसे आपने बताया कि जंक फूड है, अनिद्रा भी एक कारण हो सकता है माइग्रेन का, और ज्यादा सोना, कम सोना, ये सब चीजें भी हैं कि जिसको हमें ध्यान रखना है
0: जी जी
1: कि हमें
0: बिल्कुल
1: माइग्रेन ना हो, और इन सब चीजों का हमें ध्यान रख के हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऑरा की बात की आपने जैसे अभी
0: हाँ
1: डॉक्टर
0: जी।
1: साहिबा, तो ऑरा क्या है ये?
0: ऑरा माइग्रेन से पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को कि उसको ये फील हो जाता है कि अब माइग्रेन का अटैक आने वाला है। ये कभी कभी कुछ घंटे पहले और कभी कभी एक दिन पहले होता है। जैसे
1: मतलब
0: कि
1: पेशेंट को पहले ही पता चल जाता है
0: कहे
1: कि
0: कि
1: मुझे माइग्रेन होने वाला है, मुझे सिर दर्द होने वाला
0: जी
1: है।
0: जी
1: जी
0: जैसे इसके सिम्टम्स में ये होता है कि आंखों के आगे काले धब्बे आते हैं, रंग बिरंगी रेखाएं आती हैं,
1: जी
0: उसको झुंझुनाहट सी होती है, कभी
1: जी
0: कभी गर्दन में जकड़ाहट होती है। तो इन सब कारणों से उसको लग जाता है कि माइग्रेन का अटैक आने वाला है।
1: आने वाला है, मतलब
0: जी
1: पेशेंट को पहले से ही पता चल जाता है।
0: जी जी
1: तो बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा की जैसे आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक में माइग्रेन का जो है उसे हम कैसे समझते हैं, उसमें इसका इलाज संभव है?
0: जी बिल्कुल। आयुर्वेद में अर्धावेदक नाम से इस बीमारी का वर्णन आया है। आयुर्वेद में 11 सिरदर्द का वर्णन किया गया है, उसमें से एक अर्धावेदक है जिसको हम माइग्रेन के सिम्टम्स से रिलेट कर सकते हैं। उसके सिम्टम्स बिल्कुल माइग्रेन जैसे हैं।
1: जी
0: तो इसमें वैसे तो तीनों ही दोषों की इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, लेकिन खास करके वात और पित्त इम्बैलेंस से ये बीमारी होती
1: बीमारी।
0: है।
1: जी
0: इसके उपचार में हम ज्यादातर पित्त शामक दवाइयों का यूज करते हैं।
1: अच्छा, तो क्या उपचार है आयुर्वेदिक में इसका? क्या दवाएं हम दे सकते हैं पेशेंट को जिससे माइग्रेन में आराम आ जाए, तुरंत आराम आ जाए, या फिर थोड़ा समय लगे लेकिन पेशेंट को आराम आ जाए? कौन कौन सी हम ऐसी दवाइयां जो हैं हम पेशेंट को दे सकते हैं?
0: जी, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद इसकी जड़ पर काम करता है।
1: जी
0: आयुर्वेद इसमें बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए दवाइयां देते हैं, हम इसमें मानसिक तनाव को कम करने के लिए देते हैं, जीवन शैली को सुधारते हैं, पित्त शामक दवाइयां देते हैं, पित्त को कम करने की दवाइयां देते हैं, योगा और मेडिटेशन को भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा,
1: जी
0: अन्य इसके कुछ अलग पंचकर्मा के उपचार भी हैं, जैसे कि
1: जी
0: इसमें हम नस्से देते हैं। नस्से होता है कि नाक में तेल का
1: तेल
0: डालना,
1: का डालना।
0: ठीक है। उसके अलावा शिरोधारा होती है, जिसमें कि
1: जी
0: धीरे धीरे धारा के थ्रू हम तेल को पेशेंट के ऊपर गिराते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है।
1: सिर पे गिराते हैं
0: जी
1: शायद,
0: जी जी
1: कि उसको लिटाकर पेशेंट को उसके सिर पे, जैसे वो शिरोधारा,
0: शिरोधारा, हाँ जी, इसको शिरोधारा कहा जाता
1: इससे
0: है।
1: भी फर्क पड़ता
0: इससे भी
1: है।
0: बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। इसके
1: जी
0: अलावा अभ्यंग है, सिर की मालिश है,
1: जी
0: और इसके अलावा हम पित्त शामक दवाइयों का और कुछ दिमाग के अच्छे जो टॉनिक बताए गए हैं हमारे यहाँ, तो उनको हम यूज कराते हैं, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
1: मतलब इसमें पित्तनाशक जो दवाइयां हैं वो दी जाती हैं ये हमारे पेशेंट को, जिससे कि आराम आए और उसका सिर दर्द में, मतलब काफी लंबा, मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक में काफी लंबा इसका इलाज चलता है।
0: ऐसा नहीं है, अगर पेशेंट रेगुलरली पूरी अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेगा और प्रॉपर दवाइयां करेगा तो हमें 1-2 महीने में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। पेशेंट की
1: जी
0: धीरे धीरे धीरे धीरे अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
1: लेकिन हमें अगर जैसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है किसी पेशेंट को, किसी को, तो उसमें क्या करना चाहिए फिर?
0: अगर उसको पेशेंट को माइग्रेन का अटैक आ ही गया है तो उस समय उसको एक शांत अंधेरे कमरे में लेट जाना चाहिए,
1: जी
0: पानी पीते रहना चाहिए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि अनुलोम विलोम ये सब करना चाहिए।
1: जी
0: स्क्रीन टाइम को बिल्कुल कम कर देना चाहिए, मोबाइल का
1: जी
0: बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो नाक में ही घर में बादाम रोगन या देसी घी को 2-2 बूंद डाल ले तो उससे भी इसमें आराम मिल जाता है। बाकी
1: जी
0: कुछ मात्रा में, कुछ हद तक अजवाइन का सेवन, ये भी इसमें आराम दिलाता है।
1: जो कि पित्तनाशक है।
0: जी,
1: और डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए कि जिससे माइग्रेन ना हो?
0: खाने में हल्का सुपाच्य आहार ले, जिस समय माइग्रेन का अटैक आया हो खासकर उस समय हल्का सुपाच्य आहार लेना चाहिए। खिचड़ी, दलिया, इन सब का, नारियल पानी, ताजे फल, इन सब का यूज करें। और जिस समय अटैक नहीं है, अपने रेगुलर फूड हैबिट्स में भी पेशेंट जो है जंक फूड को अवॉइड करें, तेज मिर्च मसालेदार खाने को अवॉइड करें, और इसके अलावा चॉकलेट्स को अवॉइड करें, इसके अलावा वो पनीर, सोयाबीन, मशरूम्स, इन सबको अगर अपनी जीवन शैली से कुछ कम करके रखे, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स को, तो ये इससे बचा जा सकता है।
1: मतलब मान लीजिए कि हमें घर का और हल्का सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें। वैसे भी आजकल जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं वो भी जंक फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, सारे सब यही खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो नुकसानदेह हैं, कहीं ना कहीं हमारी सेहत को खराब करती हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तभी आजकल युवाओं में भी ये माइग्रेन जो है वो बहुत ही देखा जा रहा है।
0: जी जी।
1: तो उसका भी क्या कारण है? यही कारण है कि डॉक्टर साहब की गलत खान पान।
0: जी, गलत खान पान, गलत जीवन शैली। बच्चे अक्सर आजकल ज्यादातर लेट उठते हैं, देर तक जगते हैं, मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई की हैबिट्स को भी रात को देर तक जगने वाला बना लिया है। उसके अलावा वही खाने पीने में तो जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स का, आइसक्रीम्स का अत्यधिक सेवन कर ही लिया है। तो यही सब फैक्टर्स है कि ये माइग्रेन आजकल बढ़ता ही जा रहा है।
1: लेकिन हम इसको रोक कैसे सकते हैं कि ना हो?
0: इसको रोकने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा, योगा को, मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा, बाकी अपने खाने पीने को भी एक रेगुलर टाइम पर, क्योंकि ज्यादा टाइम भूखा रहने से भी ये बढ़ता है, ईटिंग हैबिट्स को रेगुलर रखना होगा, अपने स्लीपिंग टाइम को फिक्स करना होगा, अपना चार्ट बनाना होगा कि कौन से खाने हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं। पर्सन टू पर्सन जैसे अलग अलग हो जाता है कई बार, तो कभी उनको उन्होंने देखा कि हाँ ये खाने से इनका दर्द बढ़ा है, तो वो सब उनको ध्यान में रखकर एक चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए और इस तरीके से वो इस अटैक को आने से रोक सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहिबा, लेकिन ये आम देखने में आता है कि महिलाओं में ही ज्यादा माइग्रेन होता है, क्यों?
0: हाँ जी, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम से कम ये 3 times ज्यादा होता है। तो महिलाओं में एक्चुअली क्या है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनके पीरियड्स के आसपास जैसे एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है, तो इससे उनके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हार्मोन्स भी इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसके अलावा दिन भर महिला जो है घर में काम करती रहती है और घर में काम की उसके ऊपर टेंशन रहती है, तो तनाव से भी ग्रसित रहती है। उसके अलावा कई बार वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से भी ये बढ़ता है। अच्छा। कई बार वो लेती है, इस वजह से नींद पूरी नहीं करती, अक्सर वो घर में जल्दी उठ जाती है, चाहे उसकी नींद पूरी होना
1: बड़ा कारण यही होता है कि नींद पूरी नहीं होती। अक्सर महिलाओं की नींद पूरी नहीं होती क्योंकि सारा दिन वो वैसे ही बच्चों में अपने घर में व्यस्त रहती है। और मेरी गांव की जो बहनें हैं, ग्रामीण हमारी जो बहनें हैं, उनको भी कुछ बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि वो कैसे अपने जीवन शैली को बदलें और जो ये माइग्रेन है भी उनमें कम हो, वो भी इस चीज से बच सके, तो कुछ बताइएगा हमारी ग्रामीण बहनों के लिए।
0: मैं अपनी ग्रामीण बहनों से बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि उनको तो गाँव में खेतों में काम करना होता है, उनको धूप में भी निकलना होता है, तो जितना हो सके धूप वाले टाइम से निकलने से बचे, क्योंकि तेज धूप भी इसको बहुत बढ़ाता है। तो अपना काम तेज धूप वाले टाइम से पहले कर ले या उसके बाद कर ले, और अगर निकलना ही पड़े तो अपने साथ हमेशा पानी रखे, सिर पे उसको अच्छे से अपने सिर को कवर करे, जिससे कि धूप का इफेक्ट ढककर रखे, जिससे कि धूप का इफेक्ट उनके ऊपर कम से कम हो,
1: और साथ में
0: और पानी, हाँ जी पानी उसको साथ में रखना है। इसके अलावा अपने बिजी शेड्यूल में से चाहे 15 minutes वो एक्सरसाइज के लिए भी निकालें, कि थोड़ी सी अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस तरीके की
1: सभी को जरूरत है व्यायाम की, तो अपने लिए जरूर 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए कि थोड़ा बहुत व्यायाम करें, योगा करें।

लेना चाहिए, और किसी प्रकार के भी जो है ना, जो आजकल जो फास्ट फूड का बड़ा फैशन चल रही हो, देख ही रहे हैं बच्चे घर का खाना ना खाना चाहते, और कितनी बार बहन ने भी तो आलस कर जावे हैं कि चलो आज बाहर का ही खाना आ जाएगा, तो बहनों ये चीजें तो सही ना आए हैं, घर का ही ताजा खाना खाओ। डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है मिर्च मसाले वाला जो खाना है, इस सब से दूर रहना चाहिए, फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, अच्छा और जो है स्वस्थ भोजन करना चाहिए जिससे सब स्वस्थ रहें, तो और थोड़ा सा वक्त जो है अपना व्यायाम के लिए भी निकालना चाहिए। तो बहुत अच्छी जानकारी हमारी डॉक्टर साहिबा ने दी है, और हमारी बहनों को जरूर इससे लाभ होगा। और बहनों अब एक जरूरी सूचना, बहनों 15 मई दिन शुक्रवार घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगी लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम थारी पसंद। इस कार्यक्रम के लिए हमें फोन करें और सुने अपनी पसंद के लोकगीत, और बहनों चूंकि ये कार्यक्रम हमारी बहनों के लिए है तो वो ही हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 9457078288। फोन नंबर एक बार फिर से 9457078288। और बहनों हमारा दूसरा नंबर भी है 01312300105। एक बार फिर से बहनों हमारा दूसरा फोन नंबर 01312300105। और समय तो हमारी बहनों को पता ही है 1:15 से 1:45 के मध्य है। सूचना समाप्त हुई। और भाई बहनों बहुत सारी बातें हमारी बहनों से हो गई, जानकारी भी हमने बहनों को दी, क्रम भी सुनवाया, और जो जरूरी सूचना थी वो भी पढ़ी, और अब हमारी बहनें चाह रही हैं एक लोकगीत हो जाए बढ़िया सा, तो सुने हैं बहनों ये लोकगीत।

तो बहनों, अभी थारे ने सुना ये इतना अच्छा प्यारा सा लोकगीत, और अब हम अपनी बहनों को फिर से एक बार जो हमारा कार्यक्रम थारी पसंद आएगा 15 मई दिन शुक्रवार को घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत, उसके लिए हमारे फोन नंबर जो है एक बार फिर से नोट कर लो। हमारे फोन नंबर है 9457078288, और हमारा दूसरा नंबर है 01341230105। और समय आपको पता ही है बहनों, 1:15 से 1:45 के मध्य है। और भाई बहनों, मेरा तो मन ना कर रहा कि मैं अपनी बहनों को छोड़ के जाऊं, बस मन कर रहा बातें करे जाऊं, पर का करूं, अब समय तो इजाजत ना दे रहा। तो बहनों, हमें चिट्ठी पत्री लिख के बताना कार्यक्रम कैसा लगा। कार्यक्रम है, कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, पिन 246763। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। और बहनों, हमारी ईमेल आईडी है akashvani.najibabad@gmail.com। इसी के साथ बहनों, अपनी बहन नीतू को दो अनुमति। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 1:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भुंगर खान और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत। तो लीजिए, ये है कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं भूंगर खान और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में

0: जेके सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली

0: दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी

0: आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अधिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए पेश है हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम संदेश.com में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीत और उसी गीत पर आधारित आपसे एक सवाल पूछते हैं। जो श्रोता हमें सही जवाब देते हैं उनके मैसेज को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो मैसेज भेजने के लिए आप नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो नंबर एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं 9457078288। तो फिर उठाइए अपना मोबाइल और बिल्कुल हमें भेज दीजिए अपना जवाब। और हमारा सवाल ये है कि जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये गीत किस फिल्म का है। आपको बताना है कि जो गीत आप अब सुन रहे हैं ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है।

तो अभी आपने सुना लता मंगेशकर और चितलकर के युगल स्वर में राजेंद्र कृष्ण का लिखा यह गीत, जिसको संगीतबद्ध किया सी रामचंद्र ने। और हमने आपसे पूछा था कि ये गीत किस फिल्म का है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आ गए हैं। तो आइए जान लेते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें इसका सही जवाब लिख करके भेजा है। तो ये मैसेज हमें मिला है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार का। इन्होंने लिखा है बारिश 1957। तो बिल्कुल सही जवाब है, ये गीत 1957 में आई फिल्म बारिश का गीत है। और सही जवाब देने वाले हमारे और भी श्रोता हैं। कांट से मोहम्मद फुरकान, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय ने हमें मैसेज लिख करके भेजा है। इन्होंने भी बिल्कुल सही, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपने हमें लिख करके भेजा है फिल्म वारिस, जबकि फिल्म बारिश का ये गीत है। एक और मैसेज हमें मिला है, और ये मैसेज हमारे पास आया ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अब्रार हुसैन अंसारी ने भी हमें बिल्कुल सही जवाब लिख करके भेजा है। और सही जवाब देने वाले हमारे अन्य श्रोता हैं गांव फ्रांसी ज़िला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। और सही जवाब देने वाले हमारे अगले श्रोता हैं मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनाना बेनारा। और एक और मैसेज हमें मिला है, आपने भी बिल्कुल सही जवाब हमें लिख करके भेजा है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशदिल, संजीव कंचन, सुनीता जिंदल, हंसमुख लाल जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। और अन्य हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें सही जवाब लिख करके भेजा है, ये हैं ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना महविश, मोहम्मद अफवान और अदीना नूर। शाही मार्केट स्योहारा से भी लिख करके मैसेज हमें भेजा है आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदी।

0: ग्राम दोजराजपुर डाखाना बढ़ापुर से जनपद बिजनौर से हमें लिख करके ये मैसेज आया है मदन सिंह, हेमलता कुमारी और यशपाल का। आपने भी बिल्कुल सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। और नूरपुर से भेजा है मास्टर पदम सिंह ने सही जवाब। सेंधीखाल से हैं, सेंधीखाल उत्तराखंड से प्रकाश चंद, मंजू देवी, उज्जवल और कनुप्रिया, आपने भी बिल्कुल सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। अगला सवाल और अगले गीत से पहले यहाँ पर ले लेते हैं छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश.com और लीजिए पेश अब कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत में आपको बताना है कि इस गीत के गीतकार कौन हैं। एक बार सवाल फिर से सुन लीजिए, इस गीत के गीतकार कौन हैं, यानी कि शब्द रचना किसकी है, ये आपको बताना है।

0: अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म संगीत का ये गीत। गीतकार संतोष आनंद और संगीतकार आनंद मिलंद। सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं। सवाल हमने आपसे किया था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो हमारे बहुत सारे श्रोता साथियों के जवाब हमारे पास आ चुके हैं। गांव और पोस्ट राहुल नंगली जनपद बिजनौर से हमें सही जवाब लिख करके भेजा है आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत और कनिष्का चौहान ने। और ये मैसेज हमारे पास आया है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। आपने भी हमें सही जवाब लिख करके भेजा है और इसी सवाल का सही जवाब लिख करके हमें भेजा है शाही मार्केट सिहारा से आसिफ चौधरी ने। सही जवाब देने वाले हमारे और श्रोता हैं चकला बाज़ार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राजा खुशदिल और संगीता रानी जिंदल। आपने भी बिल्कुल सही जवाब संतोष आनंद लिख करके हमें भेजा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अबरार हुसैन अंसारी का भी जवाब हमें मिला है। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख करके भेजा है। और गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डोडी और प्रमोद कुमार डोडी का मैसेज हमारे पास आया है। और हम आपको बता दें कि आपका जो जवाब है वो गलत जवाब आपने हमें लिख करके भेजा है। आपने लिख करके भेजा है नीलेश मिश्रा, लेकिन जबकि सही जवाब है संतोष आनंद। और भी हमारे नए श्रोता हैं जिन्होंने हमें सही जवाब लिख करके भेजा है। ये मैसेज हमारे पास आया है मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा की ओर से। आपने भी लिख करके भेजा है हमें सही जवाब और सही जवाब लिख करके हमें भेजा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पमार ने। इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास ये आया है कांठ से मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी का। आपने भी बिल्कुल सही जवाब हमें लिख करके भेजा है और सही जवाब लिख करके हमें भेजा है मोहल्ला फतेह नगर शेरकोट से मोंटी भाई भट्टे वाले, हिमांशी प्रजापति, रम्या प्रजापति, आनंद। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका भी हमें आया है। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दूसरे श्रोता हैं ग्राम सेंधी पोस्ट ऑफिस सेंधीखाल जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से प्रकाश चंद्र, मंजू देवी, उज्जवल कुमार और कनुप्रिया। तो जिन लोगों ने, जिन हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिख करके हमें भेजे हैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। और अगले गीत और अगले सवाल से पहले एक और कॉमर्शियल ब्रेक।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। तो हमारे जो भी श्रोता अभी नए नए कार्यक्रम से जुड़े हैं हम उनको एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर फिर से बता दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। और अब आपको बताना है जो गीत अब आप सुनने वाले हैं, आपको बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं।

सुरेश वाडेकर के स्वर में भी आप सुन रहे थे फिल्म अबोध का ये गीत। गीत और संगीत दोनों ही रविंद्र जैन के हैं। और मैसेजेस की लाइन को देख करके लग रहा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार रेडियो से अपना कान लगाए बैठे हैं और पूरी जानकारी सर्च करके हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल सही जवाब लिख करके इसका भेजा है। तो ग्राम नजीमपुर नजीबाबाद जनपद बिजनौर से मैसेजेस सही जवाब हमें लिख करके भेजा है योगेश कुमार, उमेश कुमारी और सुमित्रा देवी ने। इसका सही जवाब है रविंद्र जैन। और एक और मैसेज हमारे पास आया है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, हसमुख लाल जिंदल, पप्पू आरजू खुशी और पूरा ही खुशदिल परिवार। आपने भी बिल्कुल सही जवाब रविंद्र जैन लिख करके हमें भेजा है। और ये एक और मैसेज हमारे पास आया है ग्राम टिकोला कला उत्तराखंड से। सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र नामदेव, संजय कुमार नामदेव, डॉक्टर राजन कुमार नामदेव, ज्योति नामदेव और अंशिका और निकुंज। आपने भी बिल्कुल सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। और सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी, जैबू निशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा का। सही जवाब लिखने वाले हमारे और भी श्रोता हैं, ये हैं शाही मार्केट सोहरा जनपद बिजनौर से आसिफ चौधरी। और सही जवाब लिखने वाले हमारे अन्य श्रोता हैं कांट से मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी। और ये मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद वक्कार फरीदी का, मोहल्ला हलवायान कस्बा शेरकोट से। आपने भी सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। साथ में आपके साथी हैं इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। और सही जवाब लिखने वाले हमारे अन्य श्रोता हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार।

इसके अलावा जिन श्रोताओं ने हमें सही जवाब भेजे हैं वो इस प्रकार हैं, ये हैं शाहलीपुर कोटरा से हैं जिगर जाटव। इनके अलावा ये मैसेज हमारे पास आया है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का आपने भी सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। और सही जवाब लिख करके भेजने वाले हमारे अन्य श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अबरार हुसैन अंसारी। इसके अलावा परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा और असलम सैफी ने भी हमें सही जवाब लिख करके भेजा है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर ब्रक और जैतेक ब्रक ने सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने भी हमारे सवाल का सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी श्रोताओं को। और अब कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश है और लीजिए आपके सामने, और आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको बताना है कि जो गीत अब आप सुनने वाले हैं इस गीत को हमने किस फिल्म से लिया है, फिल्म का नाम आपको बताना है।

को संगीतबद्ध किया खयाम ने। फिल्म का नाम है शंकर हुसैन। तो हमारा आपसे सवाल यही था कि जो गीत आप सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, ये किस फिल्म का गीत है। तो हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जिन्होंने सही जवाब लिख करके हमारे पास भेजा है। उनमें से हैं नजीमपुर नजीबाबाद जनपद बिजनौर से योगेश कुमार, उमेश कुमारी और सुमित्रा देवी। नूरपुर से मास्टर पदम सिंह ने हमें सही जवाब लिख करके भेजा है। और सेंधीखाल से प्रकाश चंद्र, मंजू देवी, उज्जवल और कनुप्रिया का सही जवाब हमें मिला है। और सही जवाब देने वाले हमारे अन्य श्रोता हैं ग्राम दोजराजपुर बढ़ापुर जनपद बिजनौर से मदन सिंह, हेमलता कुमारी और यशपाल। सही जवाब देने वाले हमारे अन्य श्रोता हैं गांव और पोस्ट राहुल नंगली जनपद बिजनौर से हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत और कनिष्का चौहान ने भी हमें सही जवाब इसका लिख करके भेजा है। और सही जवाब देने वाले हमारे अन्य श्रोता हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पमार, गांव फ्रांसी जिला हिसार से ये सही जवाब हमें लिख करके भेजा है राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी ने। ये मैसेज हमारे पास आया है विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमीला भावसार का। आपको भी बधाई, आपने भी बिल्कुल सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। और सही जवाब लिख करके भेजा है मुंबई से अनु बारजात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा ने। हमारे सवाल का सही जवाब लिख करके भेजा है आशाराम जाटव और हरिष्का जाटवानी ने। सिहालीपुर कोटरा से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला जवाब हमारे पास आया है शाही मार्केट स्योहरा जनपद बिजनौर से आसिफ चौधरी, कादिर चौधरी और बेगम रिहाना की ओर से। चकला बाज़ार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल ने भी बिल्कुल सही जवाब लिख करके हमें भेजा है। और सही जवाब लिख करके हमें भेजा है कांठ से मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी ने। तो श्रोताओं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया, धन्यवाद कि आप इतनी देर तक कार्यक्रम से जुड़े रहे, हमारे कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता के साथ में सुना और बिल्कुल सही जवाब आपने हमारे पास तक पहुँचाया। और अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न करने की मुझे यानी राजवीर को दीजिएगा अनुमति। मीडियम वेव 314 अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश.com। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। अगली प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेट 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज रहे हैं। हमारी सायकालीन प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और दुकानदारों व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की। श्रोताओं, हमें अपने जीवन को जीने के लिए सभी को पैसों की आवश्यकता होती है ना, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। अगर कोई व्यक्ति समृद्ध है, उसके पास ऐसे बहुत सारे साधन हैं या कोई ऐसा साधन है जो बुढ़ापे में उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके, तब तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा आय का साधन नहीं है तो बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ सकता है। श्रोताओं, जब तक कोई भी व्यक्ति जवान रहता है तो वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर लेता है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा होती है, उस समय ताकत होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति की कार्यक्षमता कम होने लगती है, शरीर में बीमारियां लगने लगती हैं और उम्र के इस मोड़ पर व्यक्ति को अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए, कहीं से थोड़ा धन मिल जाए या आय का साधन मिल जाए, तो वो अपने खर्चे उठा सकता है, अपने लिए दवाइयां ला सकता है। बहुत सारे खर्चे होते हैं हर व्यक्ति के, और फिर उसे किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। तो खास करके ऐसे लोगों के लिए, श्रोताओं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं या रिक्शा चालक हैं, उनके पास वृद्धावस्था के समय कोई ऐसा साधन नहीं होता जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। तो जब तक उनका शरीर साथ दे रहा होता है तब तक वो कमाते हैं, लेकिन बाद में उनके जीवन पर कहीं ना कहीं आर्थिक संकट, श्रोताओं, मंडराने लगता है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है, श्रोताओं, जिसका लाभ उठाकर हमारे देश के श्रमिक भी वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन योजना है। और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का अर्थ ये है कि जो अनौपचारिक व्यवसायों में काम करते हैं, जो सरकारी श्रम कानूनों के दायरे से बाहर होते हैं और ये दिहाड़ी, अनुबंध या स्वरोजगार पर, श्रोताओं, निर्भर होते हैं। ऐसे श्रमिकों के लिए पेंशन योजना हमारी सरकार द्वारा चलाई गई है और इस योजना के लिए पात्र वही श्रमिक होंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष होगी, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, श्रोताओं, और ये एक अंशदायी योजना है जिसमें उम्र के अनुसार 55 रुपए

0: से 200 रुपए तक का मासिक योगदान जमा करना होता है, यानी कि आपकी उम्र कम होगी तो आपको अंशदान कम देना होगा और उम्र ज्यादा होगी तो ज्यादा रुपए जमा करने होंगे, जो 55 रुपए से 200 रुपए के बीच होंगे। तो श्रोताओं, सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी राशि आप जमा करेंगे उतना ही सरकार भी आपकी पेंशन के लिए जमा करेगी और ये पेंशन 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। और अगर किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन का 50% दिया जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, मोबाइल नंबर, ई श्रम कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। तो श्रोताओं, इसके लिए आवेदन करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं और अपने आप भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए भी ये राष्ट्रीय पेंशन योजना उपलब्ध है। लेकिन बस इसमें ये अंतर है कि जिसका, अगर व्यापारी, छोटे दुकानदार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए सालाना से कम होना चाहिए। बाकी ये योजना सभी के लिए समान है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। और श्रोताओं, रेडियो के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रसार भारती के द्वारा सभी रेडियो स्टेशन पर जश्न मनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम आपसे साझा कर रहे हैं अपने श्रोताओं के अनुभव। तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की पार्वती देवी के रेडियो से जुड़े उनके अनुभव कि रेडियो ने किस तरह से जन जन तक जानकारियां, खबरें पहुंचाकर जन जागरूकता का काम किया, साथ ही एक सच्चा साथी, सच्चा प्रहरी बनकर श्रोताओं के दिल में अपनी मजबूत पहुंच बनाई है। तो श्रोताओं, सुनते हैं पार्वती देवी से ये बातचीत। आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम पार्वती है।
0: आपकी उम्र कितनी है?
1: मेरी उम्र 71।
0: अच्छा, 71 साल की हैं आप। तो कितने साल से जुड़ी हुई हैं आप रेडियो से?
1: मैं 12-13 साल की थी तब से मैं रेडियो से जुड़ी हुई हूँ। मेरे भाई फौज में थे और फौज में से वो घर आए थे, मैंने अपने भैया के लिए कहा कि हमारे पड़ोस में कोई रेडियो लाया है, भैया अगली बार जब तुम आओगे तो तुम लाना रेडियो। तब मेरे भैया रेडियो लाए, जैसे पहले छोटा टीवी होता था इतना बड़ा रेडियो लाए, 5 बैंड का रेडियो लाए। और उसके बाद में फिर जब हम सबके सब स्कूल से आते थे तो अपने अपने घर में बच्चे बस्ता वस्ता रख करके हमारे घर में आ जाते थे, पूरी दीवार भरी हुई रहती थी, बहू बेटियाँ गाना सुनने के लिए आती थी हमारे यहाँ। एक बार मैंने भी मेरे साथ के बच्चों ने क्या करा कि रेडियो के सेल निकाल दिया और हमने सोचा कि इसके अंदर कोई बैठा हुआ है और वही गा रहा है। तो इतने में मेरे भैया ने कहा कि रेडियो बंद कैसे हो गया, मैं डर के मारे ना तो मुझे रेडियो लगाना आया ना मैं कुछ बोल। भैया ने कहा सेल क्यों निकाल दिया तुमने? फिर एक लड़के ने कहा कि हमने ये सोचा कि इसके अंदर बैठा हुआ है कोई, मतलब इतनी जानकारी कुछ नहीं थी। और तब उसके बाद में जो छोटा रेडियो ट्रांजिस्टर लाए, एंटीना लगा हुआ रहता था, अपने खेतों में ले जाते थे और खेतों में ले जाते थे तो पूरे जितने भी गांव में खेत होते थे सब में आवाज आती थी गाने की, बहुत अच्छा टाइम पास होता था।
0: तो आपका मायके कहाँ का है, ये आप शादी से पहले की बात बता रहे हैं?
1: मेरा मायका है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल का, मेरी शादी पौड़ी से यही नजीबाद में हुई है।
0: तो आप अभी भी रेडियो से जुड़ी हुई हैं?
1: अब तो मुझे बहुत लगाव है, मैं सुबह 5:55 में जो धुन बजती है रेडियो की मैं उसे सुन करके और रात के 11 बजे तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं सारे प्रोग्राम सुनती हूँ मैं।
0: अच्छा, तो जैसे आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, है ना, मायका आपका उत्तराखंड है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, तो वहाँ पर रेडियो की क्या भूमिका रही है आपके लिए, किस तरह से साथ निभाया है रेडियो ने?
1: हाँ, पहले कोई सुविधा नहीं होती थी तो रेडियो में जो समाचार आते थे उन समाचारों में हम देश विदेश की इधर उधर लड़ाई वड़ाई होती थी उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती थी, क्योंकि रेडियो में कोई झूठिया फोन नहीं फैलाते, रेडियो में बिल्कुल सच्ची बातें बताते हैं। गांव में किसी चीज की सुविधा नहीं थी, मोटर गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी, पानी की कोई सुविधा नहीं थी, हर चीज की परेशानी रहती थी। हमें जो कुछ भी जानकारी मिलती थी पहले भी रेडियो के द्वारा मिलती थी, हर योजना का, हर बातों का पता रेडियो से चलता था हमें, परिवार नियोजन की, बीमारी की, बच्चों पे टीके वगैरह लगने हैं, सुविधा होती है, तो हर बात का पता मैं रेडियो के द्वारा चलता था।
0: कोई ऐसी याद है जो रेडियो से जुड़ी हुई है जिसने आपका विश्वास और भी बढ़ाया है?
1: हाँ, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो मेरे भाई, आसपास के चाचा ताऊ, मतलब बहुत जने फौज में थे, तो उनके बारे में जो कुछ भी जानकारी मिलती थी पूरी रेडियो से मिलती थी, तो हमें पूरे गाँव

0: में सहारा मिल जाता था, तो सारे के सारे फिर मतलब खुश हो जाते, मनोबल बढ़ जाता था सारे फौजियों के घर वालों का।
1: मनोरंजन के क्षेत्र में किस तरह से साथ निभाया रेडियो ने?
0: पहले उत्तरायण कार्यक्रम आता था लखनऊ से, उसे सुनते थे पूरे गांव वाले, शाम के टाइम पे आता था, जितने भी प्रोग्राम आते सारे प्रोग्राम ऐसे सुनते थे हम कि बिल्कुल दिल लगा करके। खाना होना तभी बनता था, पहले पूरे गांव के बहू बेटियां जिनके सास मना नहीं करती थी, तो सब सारे के सारे हमारे घर में आते थे रेडियो सुनने।
1: और अब कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हैं आप?
0: हाँ अब तो मैं सुबह से लेकर रात 11 बजे तक सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। पांच पद पन पे धुन शुरू हो जाती है, भक्त संगीत शुरू होता है, उसके बाद में फिर रुहेलखंडी लोकगीत आते हैं, सुहाना सफर आता है, और फिर बातें आसपास की आती है, तो फिर तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं रात के 11 बजे तक सारे प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं, अपने अपने कारोबार पे चले जाते हैं, बस मेरे तो रेडियो चलता रहता है।
1: क्या संदेश देना चाहती हैं आप और भी श्रोताओं को रेडियो को लेकर?
0: मैं रेडियो से जितनी भी जानकारी बात होती है सारी बातें सच्ची होती हैं, कोई झूठी अफवाह नहीं होती। मैं देश वालों को जितने भी रेडियो से जुड़े हुए, मैं सबको यही बोलूंगी कि रेडियो पे विश्वास रखना चाहिए, और रेडियो की हर जानकारी सच्ची होती है।
1: जी, आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्वती देवी से हमारी ये बातचीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। तो पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और शाम 7:30 पर कानून की बात लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। मुझे याद है जरा जरा, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सुरेंद्र कुमार की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें। प्रस्तुत करता है शोभित शर्मा और इसका समय रहेगा रात्रि 10:30 पर। हमारे श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। समय याद रखिएगा आज रात्रि 10 बजे। सुगम संगीत के अंतर्गत आनंद लीजिएगा आज शाम 7:45 पर कुलवंत सिंह के गाए कुछ शब्द का। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला का पाठ 44। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर यशपाल सिंह से जितेंद्र कुमार की बातचीत, विषय रहेगा औद्यानिक फसलों से फसल अवशेष प्रबंधक। और श्रोताओं, कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा मधुमक्खी पालन। अब से कुछ ही देर में यानी कि शाम 5:15 पर समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का। इसमें क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, लव स्टोरी और फिल्म संगीत का। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

एक ही संगीतकार कार्यक्रम का समय रहेगा कल दोपहर 2:30 पर। ये थी जानकारी कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हो रहे हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: आवाज का ये सफर बड़ा प्यारा लगता है, हर दिल यहाँ अपना सा लगता है। ना मिलने की चाह ना पहचान का गम, फिर भी ये रिश्ता सबसे न्यारा लगता है।
1: जी हाँ, इसी प्यारे रिश्ते को निभाने के लिए हम हर दिन जुड़ जाते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी लेकर। नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो साथी शैली।
0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम युववाणी में। और आज शैली और आप सभी के साथ प्रोग्राम में जुड़ गई हूँ मैं आपकी अपनी साथी शिवानी।
1: तो दोस्तों, आज आपके लिए प्रोग्राम में है ढेर सारी चीजें जिसमें हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं एक सवाल। जी हाँ, मुझे तो जाने सेगमेंट के अंतर्गत, और लाए हैं आपका डेली सेगमेंट कुछ खास है आज।
0: और साथ ही रहेगा आज वेनेसडे स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्ट, जिसमें हम स्टूडियो से बाहर जाकर करेंगे अपने दोस्तों से बातचीत और जानेंगे उनसे उनके व्यूज।
1: लेकिन शिवानी, सबसे पहले शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जो है बूझो तो जाने, जिसमें आज का सवाल हमारे दोस्तों से है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
0: तो दोस्तों, सवाल आप सभी ने सुन लिया है। तो दोस्तों, इसका सवाल का जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
1: तो दोस्तों, तब तक आप इस छोटा सा काम को कंप्लीट करते हैं, तब तक हम आपको लेकर चलते हैं म्यूजिक की तरफ और सुनवाते हैं आपको ये पहला प्यारा सा गीत।

0: दी
1: हाँ?
0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे भाई, इतना परेशान क्यों बैठा है आज तू? क्या हो गया? तेरे तो चेहरे की बिल्कुल रंगत ही उड़ी हुई है।
4: ओ भाई, क्या बताऊं?
3: नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा, तभी तो मैं कुछ बता सकता हूँ। तू बताएगा तभी तो बताऊंगा ना मैं कुछ।
4: यार, काम को लेके थोड़ी सी परेशानी है यार।
3: काम को लेके? क्यों, सही नहीं चल रहा क्या तेरा काम?
4: नहीं यार, यार तू बताना, कोई ऐसा कारोबार बता मुझे जिसमें कम लागत हो और ज्यादा मुनाफा हो।
3: तो एक काम कर, सर्दियों में बर्फ लेकर और गर्मियों में बेच दे।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: दोस्तों, आज के कुछ खास है। आज का टॉपिक शायद बहुत लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ होगा,
4: जो है टॉक्सिक लोगों से दूर रहना क्यों जरूरी है।
3: दोस्तों, हर इंसान जो हमारी लाइफ में आता है वो हमें खुशी दे, ये जरूरी तो नहीं है।
4: कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे हमारी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस एंड मेंटल पीस खत्म करने लगते हैं।
3: और

0: सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि टॉक्सिक लोग हमेशा गुस्से वाले या बुरे दिखने वाले नहीं होते।
1: कई बार वो लोग हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जैसे फ्रेंड्स, पार्टनर या रिलेटिव्स।
0: टॉक्सिक लोग हर बात में क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं।
1: हमें गिल्टी फील कराते हैं, हमारी सक्सेस को देखकर दुखी हो जाते हैं और हमेशा निगेटिविटी फैलाते हैं।
0: धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि इंसान खुद पर डाउट करने लगता है और उसे लगता है कि गलती उसी में है।
1: लेकिन सच क्या है, हर बार आपकी गलती नहीं होती।
0: दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहाँ रेस्पेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो और सपोर्ट हो, जहाँ आप खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सको।
1: लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में इंसान हमेशा मेंटली टायर्ड फील करते हैं, वो हंसता कम है, ओवरथिंकिंग ज्यादा कर देता है।
0: दोस्तों, अगर कोई रिश्ता आपकी पीस छीन रहा है या आपको हर दिन मेंटली हर्ट कर रहा है, तो बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करके कोई रिश्ता हेल्दी नहीं बन सकता।
0: और हाँ, डिस्टेंस बनाना मतलब हेट करना नहीं होता, कई बार बस खुद को टॉक्सिक लोगों से बचाना होता है।
1: अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपकी बात सुने, आपको निगेटिव आपको मोटिवेट करें, निगेटिविटी ना फैलाएं, जो आपकी सक्सेस में जनरली खुश हों।
0: क्योंकि सही लोग आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं और गलत लोग आपकी इनर पीस छीन लेते हैं।
1: याद रखिए, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, लेकिन खुद को बचाना बहुत जरूरी है।
0: तो ये थी बातें टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं ये सॉन्ग।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ अधूरी होकर भी जिंदगी भर दिल में जिंदा रहती हैं। दोस्तों, अब टाइम है हमारे सेगमेंट लव स्टोरीज का, जिसमें स्टोरी है गुनाहों का देवता, जिसका आज है एपिसोड नंबर 3, जिसे प्रेजेंट किया है शुमायला ने। और ये धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों के देवता का रूपांतरण है, तो आइए इसे सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।
2: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
3: दोस्तों, अभी तक आपने सुधा और चंद्र की स्टोरी में जाना कि कैसे वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी इजहार करने से डरते हैं। लेकिन किसी ने बहुत खूब कहा है कि मोहब्बत जो कभी इजहार नहीं की जा सकती, वो दर्द बनकर आंखों से बह जाती है। कुछ ऐसा ही सुधा और चंद्र के साथ भी हुआ। वक्त जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और कुछ रिश्ते चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, समाज की रस्मों के आगे धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। इलाहाबाद के उस घर में जहाँ कभी सुधा की हंसी गूंजती थी, अब शादी की तैयारियों की आवाजें थी। दीवारों पर रोशनियां सज रही थी, आंगन में मेहंदी की खुशबू थी। लोग खुश थे, लेकिन दो दिल चुपचाप टूट रहे थे। जब डॉक्टर शुक्ला ने सुधा की शादी की बात चंद्र से की, तो एक पल के लिए जैसे उसकी दुनिया रुक गई, मगर अगले ही पल उसने अपने दर्द को मुस्कान में छुपा लिया। क्योंकि चंद्र को हमेशा लगा था कि मोहब्बत पाने का नहीं, त्याग का नाम है। तो चंद्र, आपने हाँ कह दी? सुधा।

डॉक्टर शुक्ला तुम्हारे लिए जो सोच रहे हैं वो सही है। और आप क्या सोचते हैं? मैं वही सोचता हूँ जो तुम्हारी खुशी में है। खुशी? चंदर, अगर मैं ना कहना चाहूं तो? सुधा, हर रिश्ता पाने के लिए नहीं होता, तो फिर मोहब्बत क्यों होती है चंदर? उन दोनों के बीच की ये बातें बहुत अनकही थी। उस सवाल का जवाब चंदर के पास था, मगर उसकी हिम्मत नहीं थी। वो कह सकता था कि हाँ सुधा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर उसने अपने जज्बात को आदर्शों के पीछे छुपा दिया, और शायद यहीं से उनकी मोहब्बत बिछड़ने लगी। दिन गुजरते गए, घर में रिश्तेदार आने लगे, दीवारों पर सजावट होने लगी। सुधा सबके सामने मुस्कुराती, मगर अकेले में उसकी आंखें भर आती। और चंदर, वो हर तैयारियों में शामिल था, कभी मेहमानों का ध्यान रखता, कभी सामान, जैसे अपने ही दिल के टूटने का इंतजाम कर रहा हो। और बस धीरे धीरे सुधा की शादी की तैयारियों में मग्न होता रहा। चंदर, तुमसे एक बात पूछूं? क्या कभी तुम्हें मेरी याद आएगी? तुम कहीं जा रही हो क्या सुधा? हाँ, बहुत दूर। सुधा, तुम्हें पता है कुछ लोग दूर जाकर भी दिल के बहुत पास रहते हैं, और तुम्हें पता है चंदर, कुछ लोग पास रहकर भी बहुत दूर हो जाते हैं। उस रात सुधा बहुत रोई, और शायद पहली बार चंदर भी अंदर से पूरी तरह टूट गया, लेकिन दोनों ने अपने दर्द को खामोशी की चादर में छुपा लिया। बारात आई, शहनाई बजी, मंत्रों की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगी। सुधा दुल्हन बनी बैठी थी, लाल जोड़े में, आंखों में काजल, मगर उनमें चमक नहीं थी। और चंदर भीड़ के बीच खड़ा हर रस्म को चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें नम थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपने दर्द को त्याग का नाम दे दिया था। चंदर, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो वह मुझे यूं मत खोना, सुधा बहुत प्यार से कहती है। सुधा, मैंने तुम्हें कभी पाया ही कहां था जो तुम्हें खोऊं? और फिर एक गाड़ी उस घर से चली गई, अपने साथ सिर्फ एक दुल्हन नहीं बल्कि चंदर की पूरी दुनिया लेकर। उस रात इलाहाबाद की गलियां वैसी ही थी, मगर चंदर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
2: ओ भाई भाई, तू इतने शांत माहौल में कैसे बैठा है?
3: भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है।
2: अच्छा नहीं हो रहा है तो पूरा भी तो नहीं हो रहा तेरे साथ।
3: अरे मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, इससे बुरा हो सकता है कुछ?
2: क्यों निकाला था?
3: वो बोले कि अब कुछ बनकर ही घर वापस आना।
2: तो फिर बता क्या बना तू?
3: भाई मैं तो बेशरम बन के 2 घंटे में ही घर वापस चला गया।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
2: तो दोस्तों आप शुरू करते हैं अपना वेनसडे स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्ट।
4: अपनी साथी शिवानी और मेरे साथ है मेरी एक और प्यारी सी साथी शैली, और हम दोनों आए हैं स्टूडियो से बाहर अपने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत, जिसमें हमारे सब सेगमेंट होते हैं
5: समय की सैर, हूबहू गलत है तो सही है, और अरे दीवानो मुझे पहचानो।
4: जी हाँ, तो चलते हैं शैली अपने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए।
5: हाँ शिवानी, देखते हैं हमें 2 साथी नजर आ रहे हैं, अब इनसे पूछ लो आज के सेगमेंट का पहला सवाल।
4: तो चलते हैं उनकी तरफ। और हेलो दोस्त, आपका नाम?
6: मेरा नाम नशरा साबिर है।
4: तो दोस्त हम आपसे कनेक्ट हुए हैं अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत, जिसमें हमारा सब सेगमेंट होता है हूबहू। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर लाइफ में अगर आपको मौका मिले अपनी ज़िंदगी को एक्सचेंज करने का, तो आप किसके साथ करना चाहेंगी?
6: मैं मेरे भाई के साथ करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ना लाइफ में अब सब कुछ अचीव कर लिया है, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, मतलब सबकी हेल्प करते हैं, सबकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब।
4: अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी सी बात बताई आपने। आप अपने भाई के साथ अपनी ज़िंदगी को एक्सचेंज करना चाहती हैं, तो मैं आपसे दोस्त ये पूछना चाहूँगी कि भाई के साथ ही क्यों?
6: क्योंकि उन्होंने ना अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया है, और वो एक बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की जैसी बनूं।
4: बहुत अच्छी बात बताई दोस्त आपने। तो हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
6: थैंक यू।
4: तो शैली, हमें एक और प्यारी सी साथी हमें मिल गई है, तो चलते हैं उनकी तरफ और सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। हेलो दोस्त।
7: हाय।
4: आपका नाम?
7: मेरा नाम सलोनी है।
4: हाय सलोनी, तो कैसी हैं आप?
7: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
4: जी ठीक ही रहिएगा, हमारी यही विश है। तो सलोनी, हम आपसे कनेक्ट हुए हैं अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत,

0: हमारा आपसे सवाल है कि लाइफ में अगर आपको समय में पीछे जाने का मौका मिलता है,
1: मैं अपने स्कूल टाइम में जाना चाहूँगी।
0: स्कूल टाइम में? बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल टाइम में ही क्यों जाना चाहती हैं सलोनी आप?
1: क्योंकि मेरी लाइफ की जो सबसे बेस्ट मेमोरीज है ना, वो मेरे स्कूल टाइम की ही हैं। अगर मैं उनको, मतलब अगर मेरा जो बेस्ट मोमेंट्स हैं वो सारे स्कूल टाइम के ही हैं।
0: जी, ये तो अच्छी बात बताई। और वैसे सभी के रहते हैं कि भाई स्कूल टाइम सबकी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होता है ना।
2: हाँ शिवानी, तुमने बिल्कुल सही कहा कि जो भी ज़्यादा मोमेंट्स होते हैं या फिर जो लाइफ के ऐसे मोमेंट्स जिन्हें हमें री इन्जॉय करने का मन करता है, तो वो सारे हमारे स्कूल टाइमिंग वाले होते हैं। वो दोस्तों के साथ लंच इन्जॉय करना, उनके साथ खेलना कूदना, वो सब कुछ हमें याद आता है, क्यों सलोनी?
1: बिल्कुल।
2: तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू, नाइस टू मीट यू।
2: तो शिवानी, इट्स टाइम फॉर आर नेक्स्ट सब सेगमेंट, जो है गलत है तो सही है, तो क्यों ना उसमें देखे जाए हमारे दूसरे साथी।
0: बिल्कुल शैली, और हमें एक साथी नजर भी आ रही है, तो चलो चलते हैं उनके पास और करते हैं उनसे सवाल।
2: हाँ, तो आपका नाम?
3: यशानाज।
2: यशा, तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि कैसी हैं आप?
3: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: हम भी बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। तो हम आपसे मिले हैं अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत, जिसके अंदर हमारा सब सेगमेंट है गलत है तो सही है, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बहुत नॉर्मल से, और जिसका आपको गलत जवाब देना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप आउट हो जाएंगी, और अगर गलत दिया तो आप जीत जाएंगी।
3: हाँ जी, ठीक है।
2: तो आप रेडी है इसके लिए?
3: यस।
2: ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, मछली कहाँ रहती है?
3: अपनी मम्मी पापा के पास।
2: ऊँट की गर्दन कैसी होती है?
3: शायद छोटी होती है मेरे ख्याल से। तो
2: चाय कैसी होती है?
3: वाइट।
2: सूरज कब निकलता है?
3: निकलता ही नहीं है।
2: घोड़ा क्या करता है?
3: पता नहीं, सोता रहता है।
2: पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं?
3: पिंक।
2: बारिश कहाँ से आती है?
3: धरती से।
2: बर्फ कैसी होती है?
3: ब्लैक।
2: कबूतर क्या करता है?
3: सामान बेचता है।
2: आम कैसा होता है?
3: सेब की तरह।
2: नदी में क्या बहता है?
3: गेहूं।
2: दूध कैसा होता है?
3: मैंगो शेक की तरह।
2: हाथी बड़ा होता है छोटा?
3: छोटा बच्चों की तरह होता है।
2: चींटी बड़ी होती है छोटी?
3: हाथी की तरह।
2: शहद मीठा होता है तीखा?
3: खट्टा।
2: पंखा क्या करता है?
3: वो चलता है।
2: तोता क्या करता है?
3: खेती करता है।
2: वाओ, ओ माय गॉड, खेती करता है तोता। दैट्स सो फन विद यू यशा, आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए और सारे जवाब आपने गलत दिए, तो आप जीत गई हैं इस राउंड को। कांग्रेचुलेशंस।
3: थैंक यू मैम।
2: और हमें बहुत अच्छा लगा, आपने सभी सवालों के गलत जवाब दिए। वी रियली एंजॉयड इट। तो आपने एंजॉय किया इसको?
3: यस।
2: तो थैंक यू।
0: हमारे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, वो भी, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा।
2: हाँ बिल्कुल शिवानी, उन्होंने भी जरूर एंजॉय किया होगा। यशा ने जवाब ही ऐसे दिए हैं कि सच में बहुत ही ज्यादा मजा आया जवाब सुनने के बाद। तो थैंक यू सो मच यशानाज, आपने हमारे सवालों के जवाब।
3: थैंक यू मैम।
2: तो दोस्तों, हमारे एक और साथी हमें मिल चुके हैं अपने सब सेगमेंट गलत है तो सही है के लिए, तो इनसे पूछते हैं कुछ सवाल और देखते हैं ये जीतेंगी या फिर आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहले पूछते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
4: संजना।
2: तो संजना, हम आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके आपको गलत जवाब देने हैं। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप राउंड जीत जाएंगी, और अगर सही जवाब दिया तो आप हार जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करें?
4: हाँ जी।
2: तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गाय क्या पीती है?
4: दूध।
2: कछुआ कैसे चलता है?
4: पैरों से।
2: गुड, बात तो सही है आपकी, कछुआ पैरों से ही तो चलता है। वो कैसे चलता है? पैर ही तो होता है कछुए के। तो आप आउट हो गए, कोई बात नहीं है। चलिए, बढ़िया खेला आपने ये गेम। दैट सो स्वीट ऑफ यू संजना कि आपने जवाब दिए, थैंक यू सो मच।
4: थैंक यू।
2: तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अरे दीवानो मुझे पहचानो, जिसमें इन लोगों को बतानी होगी कोई अपनी एक क्वालिटी और एक डिसक्वालिटी। तो हम मिलते हैं अपने दोस्तों से और पूछते हैं उनसे सबसे पहले उनका नाम। आपका नाम?
5: तनीषा।
2: तो तनीषा, सबसे पहले पूछेंगे आपसे कि कैसी आप?
5: मैं तो ठीक हूँ।
2: बहुत बढ़िया है, तो ठीक ही रहना चाहिए। और हम आपसे सवाल पूछेंगे अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत, सेगमेंट अरे दीवानो मुझे पहचानो के बारे में, जिसमें आपको बतानी है अपनी एक क्वालिटी और एक डिसक्वालिटी। तो सबसे पहले बताइए, आपके अंदर है ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद हो, आपके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो?
5: मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि कोई मुझे कितना भी खड़ूस से खड़ूस इंसान मिल जाए, मैं उसे अपना दोस्त बहुत जल्दी बना सकती हूँ।
2: ये तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है कि खड़ूस इंसान को भी आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेती है, चलिए बढ़िया है। और डिसक्वालिटी क्या है आपकी?
5: डिस्क्वालिटी मेरी ये है कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और मैं किसी पे भी उतार सकती हूँ।
2: ओ माय गॉड, मतलब एंगर इश्यूज है आपको कि आप किसी पे भी गुस्सा उतार देते हो। चलिए, ये तो आपकी क्वालिटी डिस्क्वालिटी हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी क्वालिटी और डिस्क्वालिटी इतने खुलकर बताई, अच्छे से बताई। थैंक यू सो मच तनीषा, ये सारे हमारे सवालों के जवाब दे।
5: वेलकम।
0: तो शैली, हमें एक और साथी मिल गई है, अब उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले पूछते हैं उनका नाम। आपका नाम?
6: माय नेम इज मानसी।
0: हेलो मानसी, कैसी हैं आप?
6: ठीक हूँ।
0: अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, आप

0: ठीक है, तो मानसी हम आपसे जुड़े हैं अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत, जिसमें हमारा सब सेगमेंट है अरे दीवानों मुझे पहचानो। तो हम आपसे पूछेंगे आपकी क्वालिटी और एक आपकी डिसक्वालिटी। तो सबसे पहले आप अपनी क्वालिटी बताइए।
1: क्वालिटी मेरी यह है कि मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ, और जहाँ भी मुझे म्यूजिक सुनाई देता है बस रुका ही नहीं जाता।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि आप डांस करती हैं और म्यूजिक सुनने पर आप डांस कहीं भी कर लेती हैं। ये तो हो गई आपकी क्वालिटी, अब हमें बताइए कि आपकी डिसक्वालिटी क्या है।
1: डिसक्वालिटी मेरी यह है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है।
0: गुस्सा आ जाता है आपको?
2: तो मतलब है शिवानी कि इनको एंगर इश्यूज है, इसका मतलब गुस्सा। और गुस्से में मुझे ज़रूर पता है, क्योंकि मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से में ज़्यादातर हमारे जो काम है वो सब बिगड़ जाता है ना? मैंने सही कहा ना मानसी, गुस्से में ज़्यादातर हमारे काम बिगड़ जाते हैं।
1: हाँ
2: तो ये तो सबसे बड़ी डिसक्वालिटी हो जाती है। चलिए, हम चाहेंगे कि आपके एंगर इश्यूज़ जो है वो जल्दी से शांत हो जाए। थैंक यू सो मच मानसी हमारे सवालों के जवाब देने।
1: ओके
2: दोस्तों, ये तो था हमारा वेंसडे स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्ट, जिसमें हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने तो बहुत एंजॉय किया अपने यूथ लिसनर्स के साथ, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए, आपने सुने ही, और होपफुली कि आपने भी इस सेगमेंट को खूब एंजॉय किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, हमने आपसे पूछा था बूझो तो जाने का सवाल, और सवाल था हमारा आपसे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
1: जिसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों अब जान लेते हैं सही जवाब भेजने वालों के नाम। सही जवाब भेजने वालों के नाम है लाल मोहम्मद अंसारी, सुदर्शन शाह, विट्ठल सुरोशे, राम कुमार रेवार, राघव बघेल, रामशरण गजानन येले, एम अफजल ताज, राजकुमार डूडी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अभिजीत गवहनकर, धर्मेंद्र छीपा, मोहम्मद सईद अब्बासी, ताज अंसारी, नईम सिद्दीकी, बी कमल, मुकेश कश्यप, सुरेश गगनेजा, धीरज भाई रबारी, महेंद्र मोदी, दिनेश वर्मा, शाहरुख नूर अंसारी, शमसुल कुमार राही, बबलेश पवार, इरशाद अहमद, परवीन चौहान, शकील अहमद इदरीसी, शेख मूसा, नितेश कुमार देवांगन, देवशंकर तामुरिया, लाल बाबू दीवाना, आफताब अंसारी, वलीउल्लाह अंसारी, संजय ढिंगिया, रवि कुमार राहुल, दिग्दर्शन गौड़, मोहम्मद यासीन अनजान, खिल्लू परवेज, सत्येंद्र चंसौलिया, मोहम्मद अकरम अंसारी, भागवत चौबे, लाडला जी, जगमोहन सिंह, प्रजापति, उदय भानपाल, दुर्गाराम साहू, उत्तम कुमार भगत, राधेश्याम पांडे, मसरूर हसन, हीरामणि वर्मा, निसार सलमानी, राजेश वर्मा, महेश याग्निक, बी एल धाकड़, आकाश रस्तोगी, जाकिर मंसूरी, पी एस नहावकर, विजय सुरलकर, दोमेंद्र, भूषण खेरा, नंद कुमार ठाकुर, नानक खन्ना, सुरेश खुराना, तुलसी मस्कीन, आसिफ चौधरी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, दुल्हापुर मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, जगदीश धाकड़, जॉन डी कैस्ट्रो, मोहम्मद आमिर अंसारी, अनिल विनोचा, फागुराम यादव, मोहम्मद रफीक पवार, राजवीर सिंह यादव, आर आर राजपूत, ईशिका चंचल, रंजना राजपूत और मिसबा शमसी।
0: और अब दोस्तों आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं हमारे खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2427 246763। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 9457078288।
1: आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर आकाशवाणी नजीबाबाद पर जाकर आप सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कॉमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब अपने साथी शिवानी
0: और शैली को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स

0: क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भाइयों और बहनों को आपके भैया प्रमोद सिंह की राम राम। तो बताओ भैया, किसान भाइयों क्या हाल चाल है, और भैया इस समय आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही? अब तो भैया धान की फसल को बोने की तैयारी चल रही होगी। और देखो भाई, खेतों को सही तरीके से तैयार करने के बाद ही फसलों को हमें बोना चाहिए, और हम बो वही हैं भाई। देखो, हमारा कहने का मतलब तो यो है कि अपने खेतों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रबंधन अवश्य करना चाहिए, ठीक है भैया? और ऐसा तभी हो सके है जब हम खेतों की मिट्टी की जांच करावेंगे। तो किसान भाई, इस समय हमारे खेत जो खाली हो रहे हैं, आप इस समय खेतों की मिट्टी की जांच जरूर करा सकते हैं। और भैया, समय से मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करके खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के प्रयास आप कर सकते हैं। देखो भाई, इस बात का ध्यान भी हमें रखना है कि अच्छी प्रजाति हमें कहाँ से मिलेगी और बीज की कितनी मात्रा हमें रखनी। इसलिए सभी काम समय से पूरे करते रहें और भैया खेत तैयार करते रहेंगे। किसान भाइयों, समय बड़ा बलवान हो गया है। हम भी भैया देखो, समय से आपके बीच में आपके इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं, आपको सुनवाते हैं। और भाई, आज आप जानते ही हो कि आज तो भैया बुधवार है ना, और प्रत्येक बुधवार को आप फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला सुनते हैं, जिसको भैया आज भी हम लाए हैं। साथ ही आपका मनोरंजन भी करवाएंगे, आपसे बातचीत हम करते ही रहेंगे। पर भाई देखो, अभी सबसे पहले सुनते हैं यो प्रायोजित कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला का आज का पाठ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
0: कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा,
1: जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ द्वारा संचालित है।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
1: और भैया मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह।
0: तो भाई देखो, आज हम ये पाठशाला लेकर आ गए हैं। और भाई प्रत्येक बुधवार को हमारे किसान भाई फसल

0: प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं
1: बिल्कुल भैया।
0: और भैया वो इसका फायदा भी उठा रहे
1: अब
0: हैं।
1: भैया देखो, फायदा तो उठाना ही है, क्योंकि भाई देखो, हम इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि भाई अपनी फसलों के जो अवशेष हैं इनको नष्ट नहीं करना, इनका सदुपयोग करना है।
0: भाई देखो, जो हमारी फसल होती है
1: हाँ
0: तो भैया जो उसके मुख्य अवशेष होते हैं भैया, वैसे तो वे ज्यादातर हमारे पशुओं के चारे के काम आ जाए, लेकिन भाई कुछ हमारे अवशेष ऐसे हो जाए कि भैया जो वो पशुओं के चारे से भी बच जाए
1: जी जी
0: और भैया हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो भैया हम किसी भी दशा में किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी भूल गए भैया, हम अपने खेत में आग नहीं लगानी है।
1: और भैया देखो, इस पाठशाला का उद्देश्य यही है कि भाई हम अपनी फसलों के अवशेषों को अपने खेतों में ही गला सड़ा कर उनका सदुपयोग कर लें। और भाई अगर हम इसको जलाएंगे तो इसके नुकसान बहुत सारे होंगे।
0: बिल्कुल भाई देखो, मानव स्वास्थ्य का नुकसान है, हमारे पर्यावरण का नुकसान है,
1: जी
0: खेत की मट्टी का नुकसान है। तो भाई कहने का मतलब ये हो गया भैया, आग लगाने से तो फायदा बिल्कुल भी नहीं है, केवल हम नुकसान ही नुकसान है। और भैया वहीं अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और भैया काट फाट कर अपनी मट्टी में मिलाते हैं, तो भैया इससे हमारे खेत में, हमारे खेत की मट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल ठीक कही भैया तुमने यो बात। अब देखो, अपने खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए भला हम उसमें क्या काम नहीं करते, फिर रसायन का इस्तेमाल हम उसमें आंख बंद करके करें,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो चीज भी डालने की कोशिश करें। लेकिन भैया हम यो ना जानते कि इस चीज को डाल के खेतों पे इसका गलत प्रभाव भी पड़ सके है।
0: और भाई देखो, हम उसके प्रभाव से बचाना है और भैया जैविक खेती को अपनाना
1: हाँ, और भाई देखो, सबसे ज्यादा जरूरी बात तो खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने की यही है कि जो फसलों के ठूंठ रह जा हैं,
0: है।
1: जो भैया खोबे रह जा हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जो पत्तियां हो गए हैं, उनको खेतों में ही रखें, उन्हें गला कर और भैया उनसे खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा लें।
0: अब देखो भैया, हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने भैया उद्यान लगा रखे हैं,
1: हाँ
0: बाग लगा रखे हैं,
1: जी जी जी
0: और
1: जी
0: भैया हमारे बाग में भी देखो कई तरह घास फूस हो जाहा और खरपतवार हो जाहा। और भाई जैसे कि इस टाइम पर अगर हम आम के बाग की बात करते हैं
1: जी जी
0: तो भैया
1: जी
0: बहुत सारी आम की पत्तियां जो हमें नीचे दिखाई पड़ती हैं, तो भैया उसका भी हम सदुपयोग करना है।
1: बिल्कुल ठीक बात कही तुमने। देखो, हम अपने खेतों की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो भाई हमारे बाग बगीचे हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया ये जो बाग बगीचे हैं इनकी जो पत्तियां हैं ये भला हमारे लिए काम के नहीं है।
0: बहुत काम किए भैया, और आज की पाठशाला का भैया हमारा विषय यही है कि औद्यानिक फसलों में फसल अवशेष प्रबंधन।
1: और भाई देखो, विषय तो बहुत बढ़िया है, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए डॉक्टर यशपाल सिंह, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर से हमारे कार्यक्रम में आए हैं।
0: हाँ, और भाई देखो इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया जितेंद्र कुमार, तो भाई आपको तो सुन लेते हैं ये बातचीत।
1: ठीक है भैया।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, फसल अवशेष प्रबंधन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक हमारे किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे जो खेत की मिट्टी है वो दूषित हो रही है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे जो आज हमारी जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषित हमें मिल रही है, जिससे मानव स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो आज फसल अवशेषों के संबंध में ही हम बात करेंगे, जो हमारे किसान भाई सब्जियों का उत्पादन करते हैं, फलों की खेती करते हैं, वो किस प्रकार जो हम अवशेष होते हैं उन फसलों के, किस प्रकार उनका प्रबंधन करें सही से। तो आज इस संबंध में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर यशपाल सिंह, जो कि उद्यान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा में, और डॉक्टर साहब से जानकारी का विषय है उद्यानिकी फसलों में फसल अवशेष प्रबंधन। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद जी।
2: डॉक्टर साहब, जैसा कि फसल अवशेष प्रबंधन की कड़ी चल रही है, तो फसल अवशेष प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, हमारे किसान भाई इसको किस तरह से समझें?
1: देखिए किसान भाइयों, हम जब फसल उत्पादन करते हैं तो फसल में हम लोग दो हमारे मुख्य भाग होते हैं।
2: जी जी
1: एक तो हमारा जो व्यावसायिक भाग होता है, जिसको दाने के रूप में, फल के रूप में, सब्जी ना उसके रूप में
2: जी
1: मानते
2: जी
1: हैं, उसके अलावा जो पौधे का बचा हुआ भाग होता है उसको हम अवशेष या फसल का अवशेष कहते हैं ना।
2: जी जी
1: तो जो हमारा व्यापारिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण भाग है उसको तो हम लोग ले लेते हैं,
2: बिल्कुल सर।
1: बाकी जो बचा पौधे का अवशेष भाग उसको हम फसल अवशेष के नाम से जानते हैं ना।
2: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं उसको तो हम दाने के रूप में प्रयोग कर लिया, और जो

0: या अवशेष बच गया उसको अवशेष या फसल अवशेष कह देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फसल अवशेष होते हैं, इनकी आवश्यकता हमारे किसान भाइयों को क्यों है या ये क्यों जरूरी है?
1: देखिए किसान भाइयों, ये जो अभी फसल अवशेष प्रबंधन है, एक
0: जी जी
1: परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई, और विशेष रूप से जो आपका हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला एरिया
0: जी
1: है,
0: जी
1: जो हमारा धान का बेल्ट है, धान जहाँ पे मुख्य रूप से उगाया जाता है,
0: बिल्कुल सर।
1: और उस धान का जो फसल अवशेष है उसको किसान भाई काटने के बाद, अपना दाना निकालने के बाद आग लगा देते थे,
0: बिल्कुल
1: जिसके कारण दिल्ली तक में आपके स्कूल बंद करने पड़ते थे, है ना। हमारी जो वातावरण है पूरा प्रदूषित हो जाता
0: जी
1: था।
0: जी
1: जो सूचकांक है उसका
0: बिल्कुल
1: AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जाते हैं, बहुत ही
0: जी
1: पुअर कंडीशन में पहुंच जाता
0: जी
1: था।
0: जी
1: और ये विशेष रूप से उस समय होता है जब ना हमारा थोड़ा ठंड का आगमन होता है,
0: बिल्कुल सर।
1: सितंबर अक्टूबर की बात हम करते हैं उस समय ना, तो उस समय पूरा वातावरण जहरीला हो गया। इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार को ये परियोजना चलानी पड़ी।
0: बिल्कुल
1: तो इसका आवश्यकता है, पहली बात तो ये, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है
0: जी जी जी
1: वो जब भी प्रदूषित होगा
0: बिल्कुल
1: तो
0: सर
1: हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा।
0: बिल्कुल
1: दूसरी बात ये, क्योंकि एक तरफ तो पर्यावरण और दूसरी तरफ जहां से हम लोग, जिस जमीन से हम लोग पैदा लेते हैं
0: जी
1: ना, कोई भी फसल में उत्पादन होता है, तो मुख्य रूप से हमारी जो उत्पादन का मुख्य आधार होता है वो भूमि होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जब हम फसलों को, अवशेषों को जला देते हैं, तो उसमें पोषक तत्वों को नुकसान तो होता ही होता है,
0: जी जी
1: साथ में ही मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव, माइक्रोब जिन्हें हम कहते हैं, वो होते
0: बिल्कुल सर
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: तो वो आग लगाने से वो भी मर जाते हैं,
0: जी
1: उनका भी
0: जी
1: नुकसान होता है। तो हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल सर
1: तो
0: बिल्कुल
1: मुख्य रूप से यहाँ पे दो चीजें आई, एक तो पर्यावरण
0: जी
1: और दूसरा हमारी मिट्टी की उपजाऊपन या मिट्टी का स्वास्थ्य। इन दो कारणों की वजह से इस परियोजना की आवश्यकता पड़ी,
0: बिल्कुल
1: फसल अवशेष प्रबंधन की। अब ये फसल अवशेष प्रबंधन की हम बात करते हैं, चाहे वो धान्य फसलों में हो,
0: जी जी जी
1: जिसमें हम मुख्य रूप से हमारा धान,
0: बिल्कुल सर
1: गन्ना, मक्का, इनके फसल अवशेष हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो फिर जो हमारी उद्यानिकी फसलें हैं,
0: जी जी जी
1: क्योंकि उनमें भी कुछ ना कुछ फसल अवशेष होते हैं, तो उनका भी हमें प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है,
0: बिल्कुल
1: जिससे
0: सर
1: हम अपनी मिट्टी के उपजाऊपन को अच्छा बना के और हम अपने वातावरण को भी प्रदूषण रहित रखें,
0: बिल्कुल सर
1: स्वस्थ जीवन जिससे लोग जी सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि यदि हम फसल अवशेषों का सही से प्रबंधन कर लेते हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं और जो हमारी जीवनदायिनी गैस है वो भी हमें शुद्ध मिलेगी और हमारी जो खेत की या मिट्टी है उसको भी हम प्रदूषण रहित कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, हमारे जो नौजवान साथी खेती किसानी से जुड़ना चाहते हैं वो भी आपकी जानकारी का अपनी खेती किसानी में लाभ उठाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, फसल अवशेष प्रबंधन की जब आपने बात की प्रकार की, तो ये कितने प्रकार का होता है और किस तरह से हमारे किसान भाई फसल अवशेषों का प्रबंधन करें, किसी यंत्रीकरण के द्वारा या कोई ऐसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिनके द्वारा हमारे किसान भाई इनका जो है प्रबंधन सही से कर सके?
1: यदि हम बात करें फसल अवशेष प्रबंधन के प्रकार की,
0: जी जी जी
1: तो मुख्य रूप से हम दो भागों में इसको बांटते हैं। एक होता है इन सीटू मैनेजमेंट, मतलब खेत जो आपके फसल अवशेष हैं उनको उस खेत में ही प्रबंधन उसका करना,
0: बिल्कुल
1: और
0: सर
1: दूसरा होता है एक्सीटू। एक्सीटू मतलब जो फसल अवशेष हैं उनको आपने खेत से बाहर निकाल के, चाहे तो आपने कंपोस्ट बनाया,
0: जी जी जी
1: चाहे ने पशुओं के चारे में इस्तेमाल किया, चाहे दूसरा आपने इंडस्ट्री में यूज किया ना, जैसे सरसों की जो भूसी होती है
0: जी
1: उसको भट्टे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो फोकस होता है किसान भाइयों, इन सीटू मैनेजमेंट,
0: जी
1: क्योंकि यदि आप एक्सीटू मैनेजमेंट कर रहे हैं
0: जी
1: तो एक तो ठीक है आपका पर्यावरण तो प्रदूषित होने से बच रहा है, लेकिन मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन एक कंटेंट होता है।
0: जी
1: ऑर्गेनिक कार्बन मतलब जीवांश पदार्थ,
0: बिल्कुल
1: जीवांश पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा होगी मिट्टी में उतनी ही मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा,
0: बिल्कुल सर
1: उसमें होने वाली फसलें अच्छी होंगी। तो हमें अपनी मृदा का, अपनी मिट्टी का जीवांश कार्बन एक अच्छे स्टैंडर्ड रूप में रखने के
0: बिल्कुल
1: लिए जो भी फसल अवशेष होते हैं उनको उसी खेत में यदि हम प्रबंधन करते हैं, जिसको हम इन सीटू मैनेजमेंट कहते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: सर
1: तो हम किसान भाइयों से यही आग्रह करेंगे कि आपके जो भी फसल अवशेष प्रबंधन है
0: जी जी
1: उनको इन सीटू मैनेजमेंट मतलब खेत के अंदर ही उसका प्रबंधन करना है। अब बात आती है कि प्रबंधन करने के तरीके क्या क्या है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर
1: देखिए फसल प्रबंधन के तरीके में हम मशीनों के रूप
0: जी
1: में, कई सारी मशीनें हैं जिनके माध्यम से फसल अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं।
0: जी जी
1: उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र में चलने वाली जो मशीन है वो होती है आपका मल्चर है, दूसरा आपका हैप्पी सीडर है।
0: जी जी
1: हैप्पी सीडर तो क्या करता है कि फसल अवशेषों के साथ ही बिना खेत की जुताई के सीधी सीधी बुआई हम कर सकते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: धान की फसल के अवशेषों के साथ ही उनको उतना मैनेज कर देता है,
0: जी
1: उसी के साथ साथ में हम लोग बुआई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर
1: इसके अलावा और भी कई सारे मशीनें हैं, रोटावेटर भी किसान भाई कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना।

0: जी
1: मशीनों के अलावा जो हम बात कर रहे थे कि माइक्रोबल कंसोर्टिया
0: जी जी
1: या
0: जी
1: कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें फंगस है या बैक्टीरिया है, तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से किसान भाई जानते हैं आजकल
0: जी
1: ना
0: जी जी जी
1: उपलब्ध है। पहले तो केवल वो पेस्ट रूप में होता था, फिर लिक्विड रूप में ना, और आजकल पाउडर रूप में भी अवेलेबल है।
0: जी
1: वो उसमें 200 ग्राम का पैकेट आता है।
0: जी
1: पहले तो आपका जो राजकीय कृषि प्रबंध संस्थान है गाजियाबाद, वहां से बना था,
0: जी
1: लेकिन आजकल जो हमारा कृषि का संस्थान है पूसा दिल्ली IRI के नाम से, वहां से उत्पादित होता है, मिलता है किसान भाई। एक एकड़ के लिए 200 ग्राम का एक पैकेट होता है, जिसको
0: अच्छा
1: 200 लीटर पानी में घोल बना के आजकल वो रेडी टू सर्व है।
0: जी
1: पहले तो
0: जी
1: क्या होता था, पहले हम लोग उसको लेते थे, बेसन मिला के गुड़ मिला के उसको रखते थे, 7-8 दिन में बनता था।
0: जी जी
1: आजकल वो ऐसा बना दिया फॉर्मुलेशन, वो पाउडर के रूप में आता है, आपने सिंपल 200 लीटर पानी में उसको घोल दिया,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: एक एकड़ क्षेत्रफल के लिए आप उसका इस्तेमाल या तो छिड़काव करके या सिंचाई के साथ में, सिंचाई जल के साथ में मिला के
0: जी
1: उसको
0: जी
1: आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब इस फॉर्मुलेशन को अपने खेत में आप लगाते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी
0: जी
1: क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और जो फसल अवशेष है उसकी डिकम्पोजिशन या उसका अपघटन बहुत तेजी से होता है,
0: जी
1: जिससे वो सड़ गल के और हमारे खेत में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल, बड़ी अच्छी जानकारी आपने वेस्ट डिकम्पोजर के संबंध में हमारे किसान भाइयों को दी, और हमारे किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर खरीदेंगे भी, क्योंकि आपने बताया कि IRI से ये मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब वेस्ट डिकम्पोजर की बात हो ही रही है, तो इसको प्रयोग करने से कितने समय में हमारे जो फसल अवशेष हैं उनका विघटन हो जाता है?
1: देखिए, ये थोड़ा सा मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे
0: जी जी
1: गन्ने की पत्ते की हम बात करते हैं, यदि आपका हमने लगभग 15-20 दिन में, 15-20 दिन में काफी हद तक वो अपघटन उसका शुरू हो जाता है।
0: जी जी जी
1: उसके बाद वो फिर अपना उसमें यदि मल्चर चला देते हैं, तो वो उसमें तुरंत उसके बाद आप उसकी बुआई कर सकते हैं ना।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। विधि के संबंध में बताया किस तरह से हमारे किसान भाई जो है यंत्रों के संबंध में दिया, और विधि किस तरह से उनको प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे उद्यानिक फसलें होती हैं, तो सबसे पहले तो आप उद्यानिक फसलों में हमारे किसान भाई फसल अवशेष प्रबंधन किस तरह से करें?
1: यहाँ मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा,
0: जी जी
1: ये हमारे यहाँ पे ना उद्यानिक फसलों की जब हम बात करते हैं, तो उसमें बाग बगीचे, चाहे आम का हो, अमरूद का हो, या किसी भी फल का बगीचा है,
0: जी
1: या फिर सब्जी वाली फसलें हैं, मुख्य रूप से तो यही होती हैं। बाकी दूसरी फसलें भी आपकी फूलों वाली हैं
0: बिल्कुल
1: या मसाला वाली है ना, वो भी आती हैं। तो फल वाली फसलें हैं चाहे आपकी सब्जी वाली फसलें हैं, मुख्य रूप से यदि हम फल वाली बागवानों की बात करें, तो उसमें हमारा जो पत्तियां गिरती हैं बाग में,
0: जी जी
1: वो किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, उनको उठवा देते हैं ना, निकाल के उसको बाहर कर देते हैं, जो
0: जी
1: बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, या उसको निकाल के इसमें आग लगा देते हैं ना,
0: जी जी
1: उसको आप ना कोल्हू में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं,
0: जी
1: ऐसा किसान भाई बिल्कुल ना करें। वो
0: बिल्कुल
1: जो भी पत्तियां गिरती हैं बाग में, उन सबको आप ना, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाती है। आप उसको और तेजी से करना चाहते हैं, या तो उसमें आप ना जो मैंने आपका डिकम्पोजर बताया
0: जी
1: इसका आप घोल का छिड़काव कर दें, वो भी आपके पास नहीं तो आप यूरिया का थोड़ा सा उसमें इस्तेमाल कर लें,
0: जी
1: थोड़ा हल्का सा यूरिया लगा दें, तो बहुत तेजी से डिकम्पोज होके आपके जो पोषक तत्व हैं, जिसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के रूप में आप लोग देते हैं, उनकी
0: बिल्कुल
1: आपूर्ति को काफी कम कर देता है, और मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है, जिससे हमारी मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है।
0: बिल्कुल सर
1: तो किसान भाइयों, जो हमारी औद्यानिक की फसलें हैं, चाहे बाग बगीचे हैं, उनकी पत्तियों को बिल्कुल ना जलाएं।
0: जी
1: और सब्जियों का भी बात करते हैं ना, तो सब्जियों के जो फसल अवशेष बचते हैं
0: जी
1: उनको भी प्रयास करें कि खेत में ही रोटावेटर से काट के और
0: जी जी जी
1: डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर दे, तेजी से वो सड़ गल के और आपकी मिट्टी का जीवांश पदार्थ बढ़ाएंगे, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी उद्यानिक फसलों में फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में दी। अच्छा चलते चलते और क्या कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों को बताने से रह गई हो, या क्या संदेश आप फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों को संदेश यही है कि किसान भाई, आप स्वयं भी और आपके जो साथी लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, आपके रिश्तेदार लोग हैं,
0: जी जी
1: उन सबको इस बात के लिए जागरूक करें कि हम किसी भी फसल अवशेष को
0: जी
1: आग न लगाएं, अपने जो फसल अवशेष हैं उनको मैनेज करके, उनको प्रबंधन करके
0: जी
1: अपने खेत में ही मिलाएं, जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हमारी मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी,
0: जी जी
1: जो जीवांश पदार्थ है वो अच्छी मात्रा में बना रहेगा।
0: जी
1: तो किसान भाइयों को यही एक संदेश है कि वो अपने जो भी फसल अवशेष हैं उनको जलाए ना, उनका प्रबंधन खेत में ही करें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी फसल अवशेषों के संबंध में दी कि फसल अवशेषों को जलाना किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि भाई जलाने से तो कितनी ही हानियां हमारे किसान भाइयों के साथ साथ हमारे पर्यावरण को होती है, हमारे खेत की मिट्टी को होती है, जो हमारे मित्र कीट हैं, जीवाणु हैं, वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी उद्यानिक फसलों में फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: औद्यानिकी फसलों में फसल अवशेष प्रबंधन। झुमरू भैया, इस संबंध में डॉक्टर यशपाल सिंह से भैया जितेंद्र जी ने तो बड़ी अच्छी बातचीत करी।
1: और मैं देखो डॉक्टर साहब ने बताया कि भैया हम जो हमारी औद्यानिक वाली फसलें हैं, जैसे भैया बाग बगीचे हैं या भैया शाक भाजी की हमारी फसलें हैं,
0: जी
1: तो भाई
0: जी
1: किस तरीके से भैया जो उनकी पत्तियां हैं, भैया जो उनके डंठल हैं, उन्हों काट फाट को अपने खेत में मिलाना है और कैसे भैया अपने खेत की उपजाऊ शक्ति को
0: बिल्कुल।
1: बढ़ाना
0: देखो भैया, डॉक्टर साहब ने फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से अपनी फसलों के अवशेषों का प्रबंधन कर सके हैं, खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में ये कितने सहायक हुए हैं, ये सारी जानकारी हो गई और भाई हमारे सब भाई और बहनों को पसंद आई।
1: और मैं देखो अब जो हो अगर हम आम के बागों की बात करते हैं,
0: हाँ भैया,
1: अमरूद के बागों की बात करते हैं, और भैया जो हमारे खरपतवार हो जहाँ पर शायद, तो भैया उनकी हमें जुताई करनी है, साफ सफाई करनी है, जिससे कि भैया जो पत्तियां हैं वो गल सड़कर हमारे पेड़ पौधों को भैया उससे कार्बनिक मात्रा मिले।
0: भाई बात तो थारी एकदम ठीक है, क्योंकि भाई टाइम से करे गए प्रत्येक काम की बात अलग ही हुआ है। अगर हमने अपनी खेती बाड़ी के काम या भैया बाग बगीचों के काम समय पर पूरे कर लिए, तो यूं समझो कि फसलों से अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा और हम मालो माल हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, और भाई इस तरीके से होगा भैया हमारे बाग बगीचों का अभिनंदन।
0: और भाई देखो, फिर तो हम ये ही कहेंगे कि सही मायने में ये ही तो है
1: फसल
0: फसल अवशेष
1: अवशेष प्रबंधन।
0: प्रबंधन।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
1: कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा,
0: जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ द्वारा संचालित है।
1: तो भैया यो आपने सुना फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला का पाठ नंबर 44। और भैया देखो फसल अवशेष के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस पाठशाला का हमारा क्या उद्देश्य है आप जानो ही हो। उद्देश्य तो भैया साफ है कि हमें अपनी फसलों के जो अवशेष हैं उनको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें इन अवशेषों को खेत में ही भैया सड़ा गला कर खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का काम करना चाहिए। और ये काम भैया हम सभी फसलों के लिए कर सकते हैं, अपने बागों में भी कर सकते हैं। जानकारी आपको मिली गई है, डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि भैया जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। और भैया देखो आज के कार्यक्रम में हम आपसे बातचीत भी कर ही रहे हैं, आपका मनोरंजन भी कराया जाएगा। और भाई बातचीत करते करते देखो भाई ये कुछ संदेश हमारे पास में है, पहले इन्हें सुन ले हैं।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: तो किसान भाइयों, देखो ये संदेश हमने सुने, और भैया संदेशों के बाद आप थोड़ी सी बातचीत करो ले हैं। भाई देखो, किसान का काम तो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करना। भैया हम अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने खेतों में खूब लागत भी लगा हुए हैं, तब कहीं जाकर भैया चार पैसे हमारे हाथ में आ गए हैं। और भाई देखो, हम तो जो प्रयास अपनी आमदनी को बढ़ाने का कर रहे हैं, चाहे भैया वो किसी भी रूप में हो, भाई हम अपने खेतों में मेहनत करने के साथ साथ भाई अच्छा बीज भी डाल रही हैं, खेतों की अच्छी तरीके से तैयारी भी करें हैं और अच्छी देखभाल भी करें हैं, तब जाके भैया हमारी जो फसल है वो हमें अच्छा उत्पादन देवे है, और भैया फिर यूं समझो सब ठीक ठाक रहे। पर भैया देखो, हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ दूसरे काम भी कर रहे हैं, और करने भी चाहिए भैया, क्योंकि अगर हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना है, घर गृहस्थी को ठीक तरीके से चलाना है, तो भाई काम तो देखो हमें करने ही चाहिए, और हमारे किसान भाई कर रहे हैं। खेती बाड़ी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किसान भाई खेती करने के साथ साथ कर सके हैं, जैसे कि भैया कुछ ऐसे किसान भाई बहन हैं हमारे जो मछली भी पाल रहे हैं, मशरूम उत्पादन भी कर रहे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो मौन पालन मतलब कि मधुमक्खी पाल के भी अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाई काम चाहे कोई भी हो, काम हमें अगर करना है, कोई स्वरोजगार अगर हमें करना है, तो भैया उसका प्रशिक्षण पहले हमें ज़रूर लेना चाहिए। अब भाई मधुमक्खी पालन की ही बात कर लो, मधुमक्खी पालन भी बहुत बढ़िया माध्यम है अपनी आमदनी को बढ़ाने का। और भैया अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाह रहे हैं या शहद का उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो भाई सबसे पहले तो हम आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप मधुमक्खी पालने का जो प्रशिक्षण है वो ज़रूर लें, क्योंकि भैया कोई भी काम करने से पहले जब तक हम कोई ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो उस काम में फिर वो मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए। इसलिए भैया काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले आप ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग करने के बाद आप उस काम को करें जिसमें भैया आपको पता चल जाएगा कि हमें किस प्रकार से मधुमक्खियों को पालना है, बक्से कहाँ से लेकर आने हैं, मधुमक्खी कहाँ से लेकर आनी है, किस तरीके से उनकी हमें देखभाल करनी है। ये सारी जानकारी हमें तभी होगी जब हम इसके लिए एक प्रशिक्षण ले लेंगे। और भैया जहाँ तक इसके प्रशिक्षण की बात है, तो इसका प्रशिक्षण भी बहुत ज़्यादा दिनों तक का नहीं होता, बहुत ही कम दिनों का इसका प्रशिक्षण होता है। ये आप ले सकते हैं अपने कृषि के जो कार्यालय हैं हमारे नज़दीक के, वहाँ हम जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या भैया जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई इस काम को आप ज़रूर करें, क्योंकि मधुमक्खी पालने से जो है हमें बहुत अधिक लाभ होते हैं। अब भाई हमारे किसान

भाई मधुमक्खी पालन इसलिए करते हैं कि उनसे शहद मिलता है। भैया देखो, मधुमक्खियों से शहद ही नहीं बल्कि फसलों के परागण में मदद करके भी कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और इससे बढ़ता भी है। इनसे शहद के अलावा और जो उत्पाद हैं वो भी मिलते हैं, जैसे कि रॉयल जेली है और अन्य उत्पाद हम इनसे तैयार कर सकते हैं, जिनकी भैया बाजार में बहुत ज्यादा मांग है और एक अच्छी जो मूल्य है इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हमारी सरकार भी भैया काफी प्रयासरत है। और अगर आप सोच रहे हैं कि भैया काम करने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है, तो आप सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए भैया आप बैंकों से ऋण भी ले सकते हैं। ये कम लागत में, मतलब कि कम पूंजी में किया जाने वाला एक बहुत ही बढ़िया स्वरोजगार है जो हम अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ कर सके हैं। तो भाई अब आपकी समझ में ये बात जरूर आ गई होगी कि हमें मधुमक्खी पालन का काम अगर करना है तो इससे शहद ही नहीं और भी बहुत सारे फायदे हमें होने वाले हैं। भैया हम तो ये कहेंगे कि मधुमक्खी पालन केवल आय का साधन नहीं है बल्कि प्रकृति और कृषि के बीच में संतुलन बनाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम भी है। तो इस काम को जरूर करें, आत्मनिर्भर बने और भाई खुश रहने का प्रयास करें। अब भाई देखो, खुश रहने का प्रयास तो हम सभी करते ही हैं भैया, खेतों में काम करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, घर आते हैं अपने इस कार्यक्रम को, जैसे इस समय आप सुन रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतनी देर से हम बातचीत आपसे करे जा रहे हैं, आपका पता नहीं मनोरंजन भी कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल भैया, आपका मनोरंजन जरूर होगा। और भैया बस हम तो एक ही बात कहेंगे कि आप अपने इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, हम आपका करा रहे हैं मनोरंजन। सुनिए ये रागनी।

रूप बसंत रोबते चले। भैया आपने योरागनी सुनी सुभाष चंद्र और साथी की आवाज में, और भैया किस्सा था रूप बसंत का। उम्मीद है भैया रागनी आपको अच्छी लगी होगी, आपका मनोरंजन इस रागनी से जरूर होया होगा। और भाई अब आपको मौसम के संबंध में जानकारी दे देते हैं। मौसम की चिट्ठी हमारे पास में आई है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ से। और भाई इस चिट्ठी के अनुसार 15 से 21 मई तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और वर्षा भी सामान्य हो सकती है। और भैया इस अवधि में कोई मौसम संबंधी और चेतावनी नहीं दी गई है। हमारे किसान भाई मौसम के हिसाब से अपने खेतों में काम अवश्य करें। और भैया आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसमें आप क्या सुनना चाहते हैं, ये जानकारी भी आप चिट्ठी लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। चिट्ठी लिखने के लिए पता आप जानो ही हो, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2467। और भैया इसके अलावा अगर आप हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भैया, क्योंकि सबके पास में अपना एंड्रॉयड फ़ोन है। आप 94-570-78-288 नंबर पर हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो हमें आपकी चिट्ठियों का, आपके व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि आप चिट्ठी अवश्य लिखेंगे। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करते हैं। अपने भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

0: शाम के 6:45 हो रहे हैं। लीजिए विविधा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता खड़ी बोली उद्भव विकास और वैशिष्ट्य।
1: हिमालय और विंध्य पर्वत के मध्य की भूमि प्राचीन काल से आर्यव्रत के नाम से प्रसिद्ध रही है। इसी क्षेत्र को मध्य प्रदेश कहा जाता है, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। विभिन्न युगों में यहाँ की भाषा संस्कृत, पाली, शौर सैनी प्राकृत रही है। शौर सैनी प्राकृत के बाद इस क्षेत्र में शौर सैनी अपभ्रंश का विकास हुआ और कालांत में यही खड़ी बोली के रूप में प्रवर्तित हुई। बीम्स, ग्रियर्सन, चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा आदि अधिकांश भाषा शास्त्रियों के अनुसार मानक खड़ी बोली कौरवी अर्थात मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली है, जबकि यह सत्य नहीं है। वास्तव में खड़ी बोली एक मिश्रित बोली है, जिसमें प्रमुखता तो कौरवी की है, परंतु साथ ही उसमें पंजाबी, बांगरू और ब्रज के भी तत्व अपने मूल या परिवर्तित रूप में समाहित हैं। खड़ी बोली का उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जाता है। पहले इसे हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे खड़ी बोली के नाम से पुकारा गया। सर्वप्रथम लल्लूजी लाल और सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में इसे खड़ी बोली कहा। इसके विकास के 3 काल हैं, आदिकाल 1000 से 1500 तक, मध्यकाल 1500 से 1800 तक तथा आधुनिक काल 1800 से आज तक। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप गोरखनाथ, अमीर खुसरो, रामानंद, कबीर, रैदास, नामदेव और बंदानेवाज आदि में उपलब्ध है। ध्वनि की दृष्टि से प्रमुख उल्लेख बात यह है कि इस काल में अपभ्रंश की तुलना में 2 ध्वनियां नई आ गई, 2 स्वर ए ओ। रूप की दृष्टि से यह एक ओर तो अपभ्रंश के रूपों से आक्रांत थी, तो दूसरे इसके अपने सभी रूप विकसित नहीं हुए थे, ये बाद में विकसित होकर आधुनिक रूप बने। तत्कालीन खड़ी बोली पंजाबी के बहुत निकट थी, राजस्थानी और ब्रज से भी अनेक समानताएं थीं। साथ ही आदिकालीन खड़ी बोली का शब्द समूह मुख्यतः तद्भव एवं देशज था, उसमें पश्तो, तुर्की, अरबी, फारसी के कुछ शब्द भी आ गए थे। खड़ी बोली के मध्यकाल का स्वरूप हमें गंग की चंद वर्णन की महिमा नानक, दादू, मलूकदास, रज्जब आदि संतों, रहीम के मदनाष्टक, आलम के सुदामा चरित्र, जटमल की गोरा बादल की कथा, बली सौदा, इंशा, नजीर आदि दक्षिणी एवं उर्दू के कवियों कुतुब शतम 17वीं शती, भोगलू पुराण 18वीं सदी एवं संत प्राणनाथ के कुजवलम स्वरूप आदि में मिलता है। ध्वनियों की दृष्टि से इस काल में अक्षरांत ए कुछ अपवादों को छोड़कर समाप्त हो गया था, अर्थात राम का उच्चारण राम होने लगा था। सामान्य लोगों में तो नहीं, किंतु पढ़े लिखे लोगों भी खड़ी बोली में इस काल में अंत तक क, ख, ग, ज, फ, ये 5 नए व्यंजन फारसी से आ गए थे। रूपों की दृष्टि से खड़ी बोली अपभ्रंश आदि के रूपों से काफी मुक्त हो गई थी। संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अभी तक नहीं था। फारसी के प्रभाव के कारण की सहायता से वाक्य बनने लगे थे। शब्दों में इस काल के पूर्वार्ध में पश्तो, तुर्की, अरबी, फारसी के काफी शब्द आ चुके थे। कालांत तक कुछ पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी शब्द भी आ गए थे। उल्लेख है आदिकाल की तुलना में इस काल में धार्मिक जागरण के कारण तत्सम शब्द कुछ अधिक आ गए थे। आधुनिक काल का आरंभ खड़ी बोली की विशेष उन्नति से हुआ। प्रेस, समाचार पत्र, विज्ञान आदि के प्रचार प्रसार ने इसके प्रयोग विशेषतः गद्य को आशातीत रूप में बढ़ाया। ब्रज आदि बोलियां धीरे धीरे साहित्य के क्षेत्र से हटने लगी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक खड़ी बोली प्रमुखतः गद्य की भाषा बन चुकी थी, किंतु इसके बाद पद्य पर भी इसका एक अधिकार हो गया। इस काल में आकर खड़ी बोली की हिंदी उर्दू 2 स्पष्ट शैलियां हो गईं। लल्लू लाल ने अपनी रचनाएं मध्य एवं आधुनिक काल के संधि काल पर की थी। उनके साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली के रूप से उस काल की आरंभिक खड़ी

0: का स्पष्ट चित्र मिल सकता है। उसमें आज की प्राय सभी ध्वनियां हैं और सभी स्वरों के अनुनासिक रूप भी। उल्लेख है कि उस काल तक खड़ी बोली में एक रूपता नहीं आई थी। ब्रज कौरवी आदि के प्रभाव भी अवशेष थे जो बाद में निकल गए, किंतु आगे जैसे जैसे खड़ी बोली का गद्य में प्रयोग बढ़ता गया उसमें शुद्धता और एक रूपता आती गई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने काल में हिंदी खड़ी बोली को नियमित तथा परिश्चित रूप देने में अविस्मरणीय कार्य किया। वस्तुतः अब रूप की दृष्टि से खड़ी बोली पूर्णतः अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। बांगरू पंजाबी के प्रभाव स्वरूप मैंने जाना है जैसे प्रयोग बढ़ने लगे थे, तो अंग्रेजी के प्रभाव के कारण नई ध्वनि ऑफिस आ गई थी। आधुनिक काल में शब्द समूह में भी विशेष परिवर्तन हुए। अंग्रेजी भाषा शब्द बहुतायत में आए और खड़ी बोली के अंग बन गए। 1900 के बाद छायावादी धारा ने तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ा दिया था। इस कारण सांस्कृतिक उत्थान ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा बंगला प्रभाव आदि रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि खड़ी बोली गद्य का शब्द भंडार भी संस्कृत निष्ठ हो गया। प्रगतिवादी आंदोलन ने 1936 के बाद हमारी धारा को लोक जीवन की ओर मोड़ा, जिससे आंचलिक शब्द और मुहावरे साहित्यिक खड़ी बोली के अंग बनने लगे। इधर भारत की स्वतंत्रता के बाद पारिभाषिक शब्दों की विशेष आवश्यकता हुई, अतः अनेक अंतरराष्ट्रीय शब्द अपनाए गए, नए शब्द बनाए गए तथा भारत की अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण की प्रवृत्ति ने बल पकड़ा। इस प्रकार खड़ी बोली का शब्द समूह बहुत विकसित हो गया। अब तक खड़ी बोली पत्र व्यवहार, समाचार पत्र एवं साहित्य की ही भाषा थी, मगर अब उसे विज्ञान, वाणिज्य, विधि, चिकित्सा आदि का माध्यम भी बनना पड़ा। अतः आज उसकी अभिव्यंजना शक्ति में सर्वोन्मुखी विकास हो रहा है। वह प्रतिदिन सभी दृष्टियों से समर्थ और समृद्ध होती जा रही है। आजकल जिसे हिंदी भाषा कहा जाता है वह खड़ी बोली का ही विकसित मानक रूप है। स्मरणीय है कि खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने में जहां अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैत्रीषण गुप्त, प्रेमचंद आदि साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहां आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे भाषाविदों ने इसे व्याकरण सम्मत शुद्ध मानक रूप प्रदान किया। सौभाग्य से स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि महापुरुषों ने भी खड़ी बोली के माध्यम से स्वदेश जागरण का पावन कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन में यही हिंदी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली अग्रगणी रही। यही कारण है कि 1949 में भारतीय संविधान में इसे राजभाषा का गौरवशाली सम्मान प्राप्त हुआ। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। वर्तमान समय से खड़ी बोली विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का सफल निर्वहन कर रही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा के रूप में खड़ी बोली आधृत हिंदी का उपयोग सरकारी कार्यों में हो रहा है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में खड़ी बोली हिंदी सशक्त माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो रही है। मीडिया, समाचार पत्र, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आदि में खड़ी बोली का व्यापक उपयोग सुनिश्चित है। आधुनिक हिंदी साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि का सृजन खड़ी बोली में निर्वाध हो रहा है। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के मध्य संपर्क भाषा के रूप में कार्य करते हुए खड़ी बोली हिंदी राष्ट्रीय एकता में सक्रिय योगदान दे रही है। अनेक आंतरिक अवरोधों और चुनौतियों के मध्य भी खड़ी बोली हिंदी आज विश्व भाषा के अभिधान से गौरवान्वित हो रही है। अस्तु, खड़ी बोली के उद्भव, विकास और वैशिष्ट की इस वार्ता का सार है कि खड़ी बोली भारत की भाषा है जो विश्व में अपनी सार्थकता, उपयोगिता को दिनों दिन अभिवृद्ध एवं प्रमाणित कर रही है। आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र के स्वर में गुनगुनाएं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिए को सूल।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविधा के अंतर्गत डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता खड़ी बोली उद्भव विकास और वैशिष्ट्य। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, पेश है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं येसुदास और हेमलता की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है चितचोर। संगीत दिया है और गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र जैन ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म चितचोर से।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे यशुदास और हेमलता की आवाज में फिल्म चितचोर का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है आंखें। इस गीत की धुन तैयार की है रवि ने और गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आंखें में, और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है SD बर्मन ने, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है आराधना। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम छाया गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। आइए पहले नजर डालते हैं आज के शेष कार्यक्रमों पर। श्रोताओं आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और शाम 7:30 पर कानून की बात लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

मुझे याद है जरा जरा, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सुरेंद्र कुमार की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें। प्रस्तुत करता है शोभित शर्मा। समय रहेगा रात्रि 10:30 पर। समय याद रखिएगा श्रोताओं, रात्रि 10:30 पर। आप सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपीयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। सुगम संगीत के अंतर्गत आनंद लीजिएगा आज शाम 7:45 पर कुलवंत सिंह के गाए शब्द का। तो श्रोताओं, ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स और कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर श्रोता सुनेंगे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सुगम संगीत में आनंद लीजिएगा राशिद बदर साबरी और साथियों की गाई कव्वालियों का कल शाम 7:32 पर। विविधा के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे अनुपम देवी की पूर्व प्रसारित वार्ता वैदिक रचनाओं का वर्तमान संदर्भ। समय रहेगा कल शाम 6:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05 पर। कल चर्चा का विषय रहेगा कार्यक्रम में आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत। साथ ही आप सुनेंगे कृषि एवं समाज पर आधारित कार्यक्रम पगडंडी अध्यात्म से पर्यटन की ओर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.67 यानी 954 kHz पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार हैं स्टीफन हॉकिन के।

0: समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

0: रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगी MSP। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। CBSE के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:31 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, हमारे देश में आवश्यकता है ऊर्जा और ऊर्जा संवर्धन के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, तो अभी दिसंबर 2025 में एक शांति एक्ट बनाया गया है, तो ये क्या है, कैसे काम करेगा या क्या गाइडलाइंस है इसके पास, इस विषय पे अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है डॉक्टर राकेश चंद्रा को। आप पूर्व IAS भी हैं और PD से जुड़े हैं और इस पर उन्होंने डॉक्टरेट भी की है। डॉक्टर साहब का स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि ऊर्जा की क्या जरूरत है देश में और इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी?
3: सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा देश इस समय विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरा प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का और हमारे देश के नीति निर्माताओं का कि बहुत जल्दी हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं। पर इसके लिए जो आवश्यक है ये कि अगर हम अपने उद्योगों को जितना बढ़ा सकें, हमारे उद्योग जगत को इतनी ऊर्जा मिल सके, क्योंकि उद्योग चलते हैं ऊर्जा पर। और इसके अलावा अभी कंप्यूटर्स पे आजकल बहुत काम हो रहा है, कंप्यूटरों को चलाने के लिए हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए अभी जो डाटा इकट्ठा होता है डाटा सेंटर्स के लिए, उसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता। वर्तमान में जितनी ऊर्जा हमको मिल रही है वो बहुत कम है। प्रति वर्ष 3 गुना ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है मांग में, और अभी तक हम लोग जो हैं वो अपनी ऊर्जा का 70% केवल हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको हम दोबारा नवीकरण नहीं कर सकते या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसको। 70% ऊर्जा जो हमको मिल रही है, जो हम फॉसिल फ्यूल जैसे कहते हैं, जो जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा है, ये धीरे धीरे अब सब स्रोत इसके समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। साथ में जो तापीय ऊर्जा है जो कोयले से मिलती है, वो उससे पर्यावरण संकट बहुत तगड़ा आ रहा है। जो ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, जिससे ओजोन होल की समस्या आ रही है, और ये जो जलवायु संकट है ये बहुत तगड़ा और गहराता जा रहा है। कोयले को तो अब हम धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, पर इसका विकल्प क्या है? क्योंकि पानी जो बड़ा स्रोत है वो जल विद्युत है, जिसे हाइड्रल पावर कहते हैं। इसमें हर साल मौसम जो है वो बदलता रहता है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, नदियाँ भरती नहीं है ठीक से, तो ये भी इनमें भी दिक्कत है। और साथ में अनेक प्रकार के पर्यावरण संकट, जैसे आपने उत्तरकाशी में देखा और जगह देखा जहाँ ज़्यादा ये मनाए गए हैं, वहाँ पे भूस्खलन या और चीज़ें भी इससे होती हैं।
2: डॉक्टर साहब, सोलर एनर्जी भी तो हो सकता है इसका एक निदान?
3: जी हाँ, पिछले 2-3 सालों में ये भी हमारे प्रधानमंत्री की पहल थी, जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, और पिछले 3-4 वर्षों में सोलर एनर्जी पे बहुत काम हुआ है और बहुत उत्तर प्रदेश में तो खैर बहुत ही अच्छा काम हुआ है। लेकिन ये इसके संग कुछ अभी प्रारंभिक दिक्कतें हैं, जैसे कि इसको जो बनती है इस ऊर्जा को हम कहाँ स्टोर करें, इस पर भी बहुत दिक्कत है अभी। इसलिए अभी वो इतनी मात्रा में ना तो बन पा रही है और ना हम संचित कर पा रहे हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, हम आ जाते हैं शांति एक्ट के बारे में, क्या है ये?
3: तो इसीलिए ये तय किया गया कि अब हम नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी पे हम अपना फोकस लाएं, क्योंकि यही एक ऊर्जा है जो सबसे साफ सुथरी ऊर्जा है, और दूसरा कम ईंधन से बहुत बड़ी मात्रा में ये ऊर्जा हमको मिलती है, और तीसरा ये जो हमारा 2070 तक एक लक्ष्य है भारत सरकार का कि नेट जीरो एमिशन, यानी कि हम जो भी आसमान में हम कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ेंगे धुआं या विषाक्त पदार्थ जो हमारे क्लाइमेट को, हमारे उसको जलवायु को दूषित करे, ये तीनों चीजें इससे पूरी होती है।
2: क्या कारण है कि इसका नाम शांति एक्ट रखा गया?
3: शांति जो है वो एक संक्षिप्त नाम है, इसका पूरा नाम है द सस्टेनेबल, इससे एस लिया है, हार्नेसिंग इससे एच लिया है, एंड एडवांसमेंट ये ए लिया है, ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी NE, और फिर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। जी, तो ये शांति एक्ट बनाया है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम ऊर्जा

0: की जो कमी है, क्योंकि हर साल 3 गुना ऊर्जा की मांग बढ़ रही है और इसे पूरा करने के लिए हमारे पास अब केवल यही विकल्प बचा है, नाभिकीय ऊर्जा को हम अधिक से अधिक प्रमोट करें। तो ये 1 दिसंबर 2025 में हमारी संसद द्वारा पारित हुआ है और इसका उद्देश्य जो है वो पहली बार इसमें हमने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है कि वो भी इसमें अपनी हिस्सेदारी कर सके। दूसरा ये है कि एक बड़ी दिक्कत ये आती थी कि जैसे हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन विदेशों में, जैसे चेर्नोबिल रशिया में 1986 में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और अभी 2011 में जापान में हुई, फुकुशिमा में हुई, ऐसे 3 माइल्स आइलैंड 1979 अमेरिका पेंसिल्वेनिया में हुई। इसमें क्या हुआ, इससे जो विकिरण निकलता है उससे कई लोग मारे गए और वहां पर कई सालों तक बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें रही। तो इस विकिरण के डर से हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की ओर कम जाते थे, लेकिन अब आज के समय में भी अगर तुलना करें तो हमारे यहाँ 70% ऊर्जा वो जहाँ कोयले और तेल इन सबसे मिल रही है, वहीं फ्रांस में 70% ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा से इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें सेफ्टी का और उनकी सुरक्षा का मानदंड जो है उसको पालन करें तो ये बहुत अच्छी जो है हमको एक ऊर्जा मिल रही है जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण वातावरण का नहीं है।
1: जैसा भी उद्देश्य हमारे भारत सरकार का, तो हम इस दिशा में अभी तक किस स्तर तक पहुंचे?
0: सन 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना और महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा इसके जनक थे। तो उस समय 2-4 साल बाद एक बॉम्बे में, एक ट्रॉम्बे जगह, वहां पर पहला रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा वो स्थापित हुआ और तब से लेकर आज तक हमारे पास 30 एटॉमिक रिएक्टर हम बना चुके हैं, 22 तो हमारे काम कर रहे हैं और 8 निर्माणाधीन हैं। तो इस दिशा में इसमें काफी काम हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए जो मूल तत्व है वो है यूरेनियम, जो हमारे देश में नहीं होता है। ये हमको पूरा विदेशों से लेना पड़ता है और हमको कभी पूरी मात्रा में नहीं मिलता, बहुत कम कम मात्रा में मिलता है हमारे देश में। ऐसे ही एक तत्व है थोरियम। थोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। हमने एक तकनीक विकसित की है कि हम थोरियम को यूरेनियम की जगह रखकर एटॉमिक रिएक्टर्स को चला सकते हैं। तो अब उसके 3 स्टेप थे। जो पहला हमने रिएक्टर बनाए वो थे हैवी वाटर रिएक्टर जो यूरेनियम पे ही थे। उसके बाद हमने बनाया जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें यूरेनियम के साथ प्लूटोनियम मिलाया और अब हम जो तीसरी स्टेज पर आ रहे हैं जिसमें पूर्ण रूप से शुद्ध थोरियम। तो हम इसमें अगर ये बन जाएंगे 2033 तक हमको कुछ 5-6 रिएक्टर्स मिल जाएंगे तो हम इस दिशा में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
1: थोरियम में आत्मनिर्भर
0: हैं और हमको ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे और साथ में ऊर्जा की जो इतनी बड़ी कमी है वो तब हमको आसानी से पूरी हो सकेगी। हम शायद तीसरी क्या और आगे भी अर्थव्यवस्था बढ़ पाएंगे। इस संदर्भ में एक बात और आपको बतानी थी कि इस शांति एक्ट की खास बात थी, मैंने बताया कि प्राइवेट लोगों को भी इसमें इन्होंने अलाउ किया है कि आप भी अपना आइए बिजली बनाइए, लेकिन कंट्रोल जो है ना, जैसे सुरक्षा का कंट्रोल है या आपने जो मानदंड सही अपनाए कि नहीं अपनाए हैं, यहाँ तक कि एक एक ग्राम आपने जो थोरियम है यूरेनियम है उसको आप कैसे इस्तेमाल करें, इस पर पूरी नज़र भारत सरकार रखेगी। एटॉमिक एनर्जी जो कंट्रोलर्स हैं वो रखेंगे, रेगुलेटरी बोर्ड वो ARB देगी, आपको सेफ्टी का लाइसेंस देगी, यानी कि सुरक्षा का पूरा ध्यान जो है वो भारत सरकार रखेगी। हाँ, बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जब कभी दुर्घटना हो जाती थी तो लोगों को बड़ा कोशिश, कोर्ट भी जाते थे कि हमको मुआवजा मिले और भटकते थे। इसमें यह सीधा है कि अगर होगी तो पहली जिम्मेदारी जो चला रहा है ऑपरेटर उसकी होगी, उसे एक निश्चित तिथि तक सारा मुआवजा देना होगा और अगर एक मुआवजा की एक निर्धारित राशि से ऊपर और जा रहा है मुआवजा तो भारत सरकार उसका वो करेगी। इसमें किसी को भी परेशान होना नहीं पड़ेगा, ये इसकी बहुत बड़ी अच्छाई है।
1: जैसा कि भोपाल गैस कांड हुआ था,
0: भोपाल में हुआ ना, उसे तो
1: अब तक उसका केस चल रहा है।
0: अब तक चल रहे हैं उसके और वो भी जिनको मिला है वो भी अधूरा, आधा अधूरा मिला है।
1: जी डॉक्टर साहब ने बताए थे कि 3 बिंदु हैं, तो तीसरा बिंदु के बारे में बताएं।
0: तीसरा बिंदु ये है कि जैसे हमारा लक्ष्य ये है कि हमको थोरियम पे आधारित रिएक्टर बनाने हैं और उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो 2 स्टेजेस हमने पार कर ली है। पहला तो जो हमने हैवी वाटर यानी यूरेनियम के रिएक्टर्स बनाए, दूसरा हमने जो यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम उसमें भी पहला रिएक्टर अभी पिछले महीने फंक्शनल हो गया है, जैसे कहते हैं क्रिटिकलिटी उसने प्राप्त कर ली है, इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते थे। अब इसके बाद तीसरी स्टेज जो थोरियम बेस है ये भी कुछ 5-6 सालों में हो जाएगी, पर इसके साथ साथ हमने एक और वो चीज सोची है जो स्मॉल रिएक्टर्स। तो स्मॉल रिएक्टर्स क्या होंगे कि 220 मेगावाट के बिजली उनमें पैदा होगी। ये इसी प्रकार से होंगे कि जैसे आप किसी इंडस्ट्री के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जैसे कैप्टिव ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो इंडस्ट्री के लिए ही होता है, पूरी बिजली उसी इंडस्ट्री की सप्लाई होती है।
1: तो एक इंडिविजुअल यूनिट,
0: इंडिविजुअल यूनिट के लिए। तो 220 मेगावाट के जो ये स्मॉल ट्रांसफार्मर्स हैं, ये हम इसकी हम तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये बन जाएंगे तो हम

0: ऐसा कुछ क्रिएट करें कि जिससे कि नुकसान हो।
1: शांति एक्ट में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें 1 ग्राम यूरेनियम या 1 ग्राम प्लूटोनियम या 1 ग्राम थोरियम का भी दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सीधे सर्विलांस भारत सरकार कर रही है, किसी किस्म की संभावना नहीं है कि वो उसको दुरुपयोग कर सके। साथ में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, कोई दुरुपयोग अगर करना भी चाहेगा तो उसका जो विकिरण इतना तेज फैलेगा तो उसका तत्काल प्रभाव जो होगा आसपास के रहने वालों पे होगा।
0: अच्छा, वहीं उसी यूनिट पे हो जाएगा,
1: उसी यूनिट के आसपास जितने लोग रह रहे हैं, तो ये खतरा कोई भी ऑपरेटर मोल नहीं लेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, तो वो खतरा तो कभी नहीं होगा। हाँ, ये है कि वो जैसे जो उनका संयंत्र है उसकी समय समय पर उसकी देखरेख होती रहे, अच्छी देखभाल होती रहे, और जो मानदंड बने हैं भारत सरकार के उनका पालन होता रहे, सप्लाई की चेन डिस्टर्ब ना होने पाए, ये सब बस देखते रहना है। और इसके लिए बोर्ड है और साथ में कुछ अधिकारी और भी रहेंगे इसको देखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें किसी किस्म की दिक्कत है, क्योंकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है फ्रांस का, जहाँ 70% ऊर्जा जो है वो नाभिकीय ऊर्जा आज भी हो रही है।
2: डॉक्टर चंद्रा, आपने इतनी बातें हमें बताई, लेकिन अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है?
1: ये मैं सभी श्रोताओं को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 जगहों का चयन किया है प्रदेश भर में, जहाँ पे हम इसी प्रकार के संयंत्र लगाएंगे नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है कि ये हम इसको लाएंगे, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक कदम है कि ऊर्जा हमारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसके लिए 6 स्थानों का चयन कर लिया गया, जहाँ शीघ्र ही जो है शुरू हो जाएगा काम।
0: डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि हम ऊर्जा में अगर आत्मनिर्भर हो गए तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। और जो उद्देश्य है हमारे प्रधानमंत्री का कि हम विश्व की 3री आर्थिक शक्ति बने, आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेंगे। स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राकेश चंद्र से अतिश श्रीवास्तव की भेंटवार्ता, विषय था शांति एक्ट। और इसी के साथ ही आज का कानून की बात, ये कार्यक्रम आप यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत के अंतर्गत कुलवंत सिंह के गाए शब्द।

0: व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: अभी हमारे श्रोता

सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत कुलवंत सिंह के गाय शपथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, एक बार आपको याद दिला दें कि रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपीयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित है, तो इस पर हमारे श्रोताओं को करने होंगे मैसेजेस, तो जरूर सुनिएगा श्रोताओं ये कार्यक्रम रात्रि 10 बजे। और हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें हम सुनवा रहे हैं कुलवंत सिंह के गाए शब्द।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत कुलवंत सिंह की गाय शब्द। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत संध्या। गीत संध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।

हसीना मान जाएगी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने और गीत के बोल लिखे थे अख्तर रोमानी ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है सफर। संगीत कल्याण जी आनंद जी का और गीत लिखा है इंदिवर ने। श्रोताओं, अगर कोई हमें कह दे कि आज वही होगा जो तुमको पसंद है, यानी कि बातें भी वही होंगी, आप जो चाहते हैं काम भी वही होगा, तो फिर मन खुश हो जाएगा ना। अगर कोई आपको भी कह दे कि आपकी आप ही की पसंद का सब कुछ होने वाला है, तो आप कितना खुश होंगे श्रोताओं। तो कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सफर से, जिसमें कुछ ऐसी ही बात हो रही है।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: अभी हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत संध्या का, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाजार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजों में। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है इजाजत। संगीत है आरडी बर्मन का और गीत लिखा है गुलजार ने।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में इजाजत फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत है आनंद बख्शी का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए फिल्म प्यार झुकता नहीं के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत संध्या। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, पेश है एक और फिल्म संगीत का कार्यक्रम, एक ही फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म के कुछ गीत।

बताऊं, कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म के कुछ गीत। और इन गीतों को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। लीजिए, पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से के अंतर्गत दोस्ती फिल्म के कुछ गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तेल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है।

0: कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य

0: कार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने 5वीं बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
2: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the Kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during the season.
7: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया.
8: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप. द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर. विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 crore रुपीज. द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 lakh metric tons.
7: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 lakh metric tons.
6: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been

0: जैसे, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: मरकजी काबीना ने 37,500 करोड़ रुपए के अखराजात से जमीन की सतह के करीब पाए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने के प्रोजेक्टों को फरोग देने की एक स्कीम को मंजूरी दी है। साफियों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात नशियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि स्कीम भारत के कोयला और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: जनाब वैष्णव ने कहा कि स्कीम सिर्फ कानकरनी के शोबे से सालाना 6,300 करोड़ रुपए की आमदनी पैदा करेगी और मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी हालात के दौरान आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम को भी मजबूत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से कोयले की पैदावार वाले इलाकों में तकरीबन 50,000 रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है। मरकजी काबीना ने सरकारी व निजी शराकत दारी के तहत निजी शराकत दार के जरिए तवील मुद्दती लाइसेंस हासिल करके नागपुर बैन अक्वामी हवाई अड्डे की जदीदकारी और तजीमकारी की मंजूरी दी है। काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए इत्तलात नशियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम नागपुर हवाई अड्डे को इलाकाई हवाई हवाबाजी के मरकज में तब्दील करने की खातिर एक अहम संग मील है। इस काम को मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर MIHAN प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा। GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GNIL नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैन अक्वामी हवाई अड्डे को आलमी मेयार की सहूलतों में तब्दील करेगी। मरहलावार तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत मस्कूरा हवाई अड्डे की सालाना मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश 3 करोड़ तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है, जिससे ये वस्ती भारत का एक अहम हवाई अड्डा साबित होगा। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि मरकजी काबीना की जानिब से मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे का फैसला मुल्क के करोड़ों किसानों के लिए जरी पैदावार की मुनसिफाना और मुनाफे बख्श कीमत को यकीनी बनाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह फैसला मुल्क के किसानों की जिंदगी में मजीद खुशहाली लाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अहमदाबाद सरखेज धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक काबीना का फैसला मुल्क के रेलवे जदीदकारी के सफर में एक अहम संग मील है। वजीर आजम ने कहा कि काबीना से मंजूर शुदा जमीन की सतह के करीब के कोयले और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोजेक्टों को फरोग देने की स्कीम तवानाई की यकीनी फराहमी को मजीद मुस्तहकम करेगी, सरमायाकारी में इजाफा करेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। मरकजी तहकीकती ब्यूरो यानी CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक के मामले में 5 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मुलजिमों में से 3 का ताल्लुक जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 का ताल्लुक नासिक से है। फिलहाल मुतअद्दिद दिगर मुश्तबा अफराद की जाँच की जा रही है। एजेंसी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने मोबाइल फोन समेत मुतअद्दिद काबिले एतराज अशिया और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। एजेंसी राजस्थान के खुसूसी ऑपरेशंस ग्रुप के साथ भी मिलकर कार्रवाई कर रही है, जिसने मामले की शुरुआती जांच की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी जुमे को मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB George ने मुत्तला किया कि अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी जुमे के रोज UAE पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अक्वामी मामलात के साथ साथ खासतौर से तवानाई के सिलसिले में इश्तराक समेत बाहमी मामलात पर

0: को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटिक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटिक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुंचे हैं। कल शुरू होने वाली अपनी दो रोजा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तिजारत और मसनूई जहानत समेत अहम मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने दो तमगे जीते जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और केदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम ने मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़ीर आला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
3: थैंक्स आनंद।
1: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
3: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक आस्पेक्ट

0: है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में ना केवल एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं, और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है, और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
1: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
1: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी SPR की भी चर्चा होती है, और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
3: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है, और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल

0: टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन

0: जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: ये हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में अभी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका अभी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है,

0: सबका यूज करा जा रहा है, जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड एज इंडिया इज to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by a strong policy framework and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहां जाना है और 2070 तक कहां जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे

0: वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है. ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लड़ते यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए. और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें. तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ.
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है.
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं. अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध हैं और लॉन्ग टर्म संबंध हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है. लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है. लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है. लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में. एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं. तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है.

0: हमारे इतने अच्छे संबंध है तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में। और श्रोताओं, रातों की तन्हाई को गुलजार बनाने, आपके दिलों की बातें सुनने और आपको मस्त कर देने वाले फिल्मी नगमों से सजाने के लिए मैं हाजिर हूँ आपके कार्यक्रम की साथी रिमझिम बलूनी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपके मैसेजेस को शामिल करेंगे और साथ ही सुनेंगे प्यारे प्यारे से गीत। तो चलिए शुरू करते हैं ये हसीन सा सफर। तो श्रोताओं, जैसा कि कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया, और ऐसा कोई नहीं है श्रोताओं जिसके मन में अतीत की यादें नहीं होंगी। सही कह रहे हैं ना? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसे कभी याद ना आई हो। याद कुछ भी हो सकती है ना? वो यादें आपके बचपन से जुड़ी हो सकती हैं, स्कूल की हो सकती हैं, कॉलेजेस की हो सकती हैं, अपने परिवार के लोगों से जुड़ी हो सकती हैं, या दोस्तों से जुड़ी हो सकती हैं, है ना? यादें तो कुछ भी हो सकती हैं। तो श्रोताओं देखिए, वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां

भी आने वाली है, तो इन गर्मियों की छुट्टियों से आपकी क्या यादें जुड़ी हैं आपको कार्यक्रम में मैसेज करके हमको बताना है, और आपके ये मैसेजेस हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो श्रोताओं, जल्दी से नोट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से 9457078288। तो श्रोताओं, आपको अपने मैसेजेस में ये बताना है कि जब कभी आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो उससे जुड़ी कोई ना कोई यादें तो होंगी ही, है ना। बहुत सारी यादें होती हैं हमारे बचपन की, कि हम अपने बचपन की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाया करते थे, और ख़ास करके जिनकी नानी का घर एक ग्रामीण क्षेत्र में रहा हो, है ना, उन्होंने कच्चे आम भी तोड़े होंगे, वो कहीं पानी में, नदी में, नहर में नहाने भी गए होंगे, और अपनी छतों पर तारों की छाँव में भी सोए होंगे। बहुत सारी यादें होती हैं अपने दोस्तों को लेकर, और वो भी गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी हुई। तो श्रोताओं, आपके मैसेजेस का हमें बेसब्री से है इंतज़ार। तो आपको झट से करना है मैसेज और बताना है कि गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं। इसके लिए नंबर हमने आपको बता दिया है, एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं। नंबर है 9457078288।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोता, संदेश से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में लव स्टोरी फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, जैसे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, और आपसे हमने ये पूछा है कि आपकी गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी अगर कोई यादें हैं तो आप कार्यक्रम में हमें बता सकते हैं, हम आपके मैसेजेस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो ये मैसेज हमें मिला है पिंटू कुमार जी का, ये भेज रहे हैं भागलपुर बिहार से। इन्होंने लिखा है कि गर्मी का मौसम बताता है कि असली सुकून पेड़ की छांव और अपने लोगों में होता है। सूरज की तपिश से मत घबराओ, यही तपिश तुम्हें चमकना सिखाएगी। गर्मी में ठंडी हवा और सच्चे रिश्ते दोनों बड़ी किस्मत से मिलते हैं। पिंटू जी, आपने लिखा तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात लिखी है, लेकिन आपको कार्यक्रम में जो पूछा जा रहा है, कार्यक्रम से जुड़ी हुई बात, जुड़े हुए मैसेजेस ही भेजने हैं, और बहुत सारे श्रोताओं के मैसेजेस हमारे पास पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्होंने या तो फरमाइशी गीत के लिए मैसेजेस किए हैं या फिर अपने नाम हम तक लिखकर भेजे हैं। तो श्रोताओं, आपसे हम यही कहेंगे कि मैसेजेस भेजें लेकिन कार्यक्रम से जुड़े हुए, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो ये मैसेज हमें मिला है जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी का। संगमित्र श्रोता संघ पोफाली जिला यवतमाल से ये लिख रहे हैं बचपन

की यादें तो बहुत हैं। दादी कहानी सुनाती थी, अब तो दादी की कहानी भी कोई नहीं सुनता और वो दिन याद आते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी है। देखिए, अब आजकल का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं मोबाइल में गुम सा हो गया है। और अगर बात करें पहले, जब पुराने समय की, तो बच्चे बाहर खेला करते थे और उन्हें छुट्टियों का भी बेसब्री से इंतजार रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो सिमट गए हैं कुछ कमरों के भीतर ही। उन्हें यही सब ज्यादा पसंद आ रहा है जो कहीं ना कहीं बचपन पर असर डाल रहा है। तो श्रोताओं, हमने आपसे ये पूछा है कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, अगर उनसे जुड़े हुए आपके कोई यादें हैं, कोई मैसेजेस हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हम आपको नंबर बता देते हैं। नंबर है 9457078288। और मैसेजेस बहुत सारे हमें मिल रहे हैं, लेकिन श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि कार्यक्रम से जुड़े हुए मैसेजेस हमें भेजें। अपने बचपन में आप गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताते थे? तो बहुत सारे मैसेजेस हमें मिले हैं। ये मैसेज हमें भेज रहे हैं आदर्श नगर नजीबाबाद से सुधा पसबोला जी, और ये लिखते हैं कि बचपन की यादों को ताजा कर दिया आपने, जब गर्मी की छुट्टी में हम रात को लाइट ना रहने पर भी छत पर सोते और अंताक्षरी खेलते थे। बहुत ही मजा आता था और बहुत सारे लोग होते थे, भाई बहन और बहुत सारे कजिन्स साथ में होते थे, और आसपास के लोग भी, पड़ोस के लोग भी आ जाया करते थे। बहुत अच्छा लगता था। जी हाँ, बिल्कुल, सुधा जी का ये मैसेज हमें मिला है आदर्श नगर नजीबाबाद से, और बहुत सुंदर बात इन्होंने लिखी है। पहले ऐसे ही हुआ करता था कि लाइट नहीं भी होती थी तो कोई परेशानी नहीं होती थी, परिवार के सभी लोग छतों पर सोने चले जाया करते थे। और गर्मियों की छुट्टियों में तो कोई झंझट ही नहीं होता था बच्चों का स्कूल जाने का, तो आराम से उठना और छतों पर खूब गपशप लगाना। तो और ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से। भेजने वाले हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन और रोजी परवीन। इन्होंने भी मैसेज भेजा है। सबसे पहले ये सलाम लिखते हैं। गर्मी मुझे पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, बरसात भी पसंद है। रिमझिम बारिश की बूंदें जब बरसती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। गर्मियों में नैनीताल, शिमला, कश्मीर, सभी जगह का मौसम सुहाना होता है। और हमें भी इन्होंने कहा है कि अच्छा लगता है वो समय, गर्मियों का समय अच्छा लगता है। लेकिन आपने गर्मियों से जुड़ी हुई कोई भी यादें हम तक नहीं पहुंचाई हैं, तो श्रोताओं हम यही कहेंगे कि बहुत सारी यादें होंगी आपकी अपने बचपन से जुड़ी हुई, गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी हुई। गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ना कुछ मस्तियां तो की ही होंगी आपने अपने दोस्तों के साथ, है ना? तो साझा कीजिए हमसे। और इसके लिए नंबर हम आपको बार बार बता रहे हैं, नंबर है 9457078288।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की आवाज में प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं से हमने ये पूछा है कि अगर उनकी भी कोई यादें हैं गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी हुई, तो वो हम तक अपने मैसेजेस के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये मैसेज हमें मिला है राहुल सैनी, प्रतिभा सैनी, शैली शिल्पी का, लक्सर उत्तराखंड से। और ये लिख रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों की अगर हम जितनी भी बातें बताएं कम ही कम है। उन्होंने ये लिखा है कि गर्मियों की छुट्टियों का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता था और आज के इस कार्यक्रम को सुनकर उन्हें अपने बचपन की याद आ गई, उन्हें गर्मियों की छुट्टियों की याद आ गई। वो ये लिख रही हैं कि जब वो नानी के घर जाया करती थी तो उनकी नानी के घर के पीछे एक बाग था, तो उसमें वो सभी भाई बहन मिलकर आम उठाकर लाते थे, कभी कभी तो चुरा कर भी लाते थे और उन पर नमक मिर्च बुरक कर खाते थे। तो आपका जो ये मैसेज मिला है ना राहुल सैनी, प्रतिभा शैली, शिल्पी, आपका ये मैसेजेस, आपका मैसेज पढ़कर हमारे मुंह में पानी आ गया और हमारे श्रोताओं के मुंह में भी कहीं ना कहीं पानी आ गया होगा। आपने इतनी सुंदर याद हमसे साझा की है और बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी यादें होती हैं। और नानी के घर घूमने का अलग ही मज़ा है, सभी को इंतज़ार रहता है और गर्मियों की छुट्टियों

का इंतजार सिर्फ बच्चों को ही नहीं रहता बल्कि उनकी मम्मियों को भी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी तो जाना होता है ना घूमने, और यही वो समय होता है जब उन्हें घर के कामकाज से थोड़ी सी फुर्सत निकाल कर घूमने का मौका मिलता है। तो गर्मियों की छुट्टियों से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें आपकी भी होंगी, आप भी साझा कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। मैसेज के लिए नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं, नंबर है 9457078288। तो अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, बहुत सारे मैसेजेस हमारे श्रोताओं के लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम से जुड़े हुए मैसेजेस हैं वही भेजें। तो आप मैसेजेस भेज सकते हैं, तब तक सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं दिल ने फिर याद किया। तो ये मैसेज हमें मिला है नितिन चौहान और रिया चौहान का, ये मैसेज हमें भेज रहे हैं शेरकोट से। इन्होंने लिखा है कि गर्मियों की छुट्टियों में हम अपने दोस्तों के साथ खूब खेला करते थे, और आगे लिखते हैं कि हमने तो गर्मियों की छुट्टियों में साइकिल चलानी भी सीखी है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हमने गर्मियों की छुट्टियों का उपयोग

अच्छे से किया है और हमें इन छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इन्हीं छुट्टियों में हमारे परिवार के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात नितिन चौहान और रिया चौहान ने भेजी है हम तक मैसेजेस के माध्यम से, और भी बहुत सारे मैसेजेस हम तक आ रहे हैं। और ये मैसेज हमें मिला है सत्यम आचार्य सत्यदेव जी और अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत, कनिष्का चौहान और भव्य चौहान का। ये लिखते हैं कि मैं स्कूल में थी आज तो बच्चों ने कहा कि हमारी दावत है, छुट्टी कर दीजिए। मैंने कहा छुट्टी अभी नहीं होगी, उसके बाद। आगे लिखते हैं कि इन बच्चों के साथ जो इनकी बातचीत हुई है वो इन्होंने हम तक साझा की है, तो आपसे हम यही कहेंगे कि आपने बात तो बहुत सुंदर साझा की है, लेकिन कार्यक्रम से जुड़ी हुई बातें अगर आप हमें लिखकर भेजें तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये मैसेज हमें भेज रही हैं ऋचा शर्मा और नजीबाबाद से ये मैसेज उन्होंने भेजा है। उन्होंने भी गर्मियों से जुड़ी हुई यादें हम तक साझा की है। उन्हें गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो यादें हैं गर्मियों से जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं उनके मन में वो टीस पहुंचाती हैं। उन्हें वो याद आता है वो समय जब कभी वो अपनी नानी के घर जाया करती थी और गर्मियों की छुट्टियों में छतों में वो सोया करती थी। अब वो देख रही हैं आजकल लाइट भी है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है, वो अपने लोग नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे, वो अपनापन नहीं है। जी ऋचा शर्मा जी, आपने बहुत सुंदर बात लिखी है कि आजकल हमारे पास सुविधाएं तो सारी हैं, लेकिन वो प्यार, वो अपनापन अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो यादें हमारे मन को कसौटती रहती हैं, है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि अपनों के साथ मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए और जो आपकी यादें हैं उन्हें मन में संजो कर रखिए। और देखिए जो हमारी ये यादें हैं हम उन्हें अपने अगर आने वाली पीढ़ी से शेयर करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है और वो भी कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अब कार्यक्रम का समय धीरे धीरे संपन्न हो रहा है, तो आज का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया यहीं पर संपन्न करने की अपनी साथी रिमझिम बलूनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए मुझे याद है जरा जरा के अंतर्गत सुरेंद्र कुमार की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें, एपिसोड संख्या 31 और प्रस्तुत करता है शोभित शर्मा।

मुझे याद है जरा जरा। श्रोताओं, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी यादें ताज़ा कराते हैं और उन यादों को ताज़ा कराने के लिए हम आपके समक्ष लेकर आते हैं ऐसी शख्सियतों को जिनकी रेडियो से जुड़ी तमाम यादें हैं। इस फेहरिस्त में बहुत सारे लोगों से आपकी हमने बातचीत कराई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात कराई रेडियो के माध्यम से। आज जिस शख्स को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं उनका नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र जी बहुत स्पेशल हैं। वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद के ना केवल बल्कि आकाशवाणी के बहुत सारे अन्य केंद्रों को भी सुनते हैं, लेकिन आज हम जो उनसे बात करने वाले हैं वो आकाशवाणी नजीबाबाद से उनकी जो यादें हैं जुड़ी हुई उनके बारे में

0: बात करने वाले हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: सुरेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी सबसे पहली याद कौन सी है आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ में, क्योंकि हम आपसे हो रही इस बातचीत के माध्यम से अपने जो लिसनर्स हैं उनकी भी यादें ताजा कराना चाहते हैं। सबसे पहली याद के बारे में बताइए।
1: सबसे पहली याद तो मेरी ये है कि जब मतलब आकाशवाणी केंद्रीय शुरू भी नहीं हुआ था, इसमें कभी कभी दो चार गाने, आधे घंटे गाने, एक घंटे गाने बजा कर रहे थे और बंद हो जाया कर रहा था। वो ये नहीं बताऊं कि आकाशवाणी नजीबाबाद है या क्या है, जब से सुनता आ रहा हूँ।
0: अच्छा, तो ये जो बात है सुरेंद्र जी, इसका मतलब ये 1978 1978 से पहले की बातें हैं, क्योंकि उस समय ट्रायल रन पे ट्रांसमीटर्स रहते हैं,
1: वो चेक करते हैं
0: जी। इनफैक्ट इससे जुड़ी हुई एक याद मेरे साथ भी है। मेरे फादर बताते थे कि जब आकाशवाणी नजीबाबाद शुरू होने वाला था तो उस वक्त ना नई फिल्मों के गाने नॉन स्टॉप बजते थे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने नजीबाबाद को ट्यून करना शुरू कर दिया था उस वक्त। तो यही याद आपकी है। तो सुरेंद्र जी, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, इस वक्त आपकी जो उम्र है तकरीबन 72 वर्ष है, आकाशवाणी के साथ जो आपका साथ शुरू हुआ वो कब से हुआ?
1: आकाशवाणी के साथ मेरे साथ 50 साल से आएगा। आकाशवाणी जो आवाज से पहले विविध भारती है, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, आकाशवाणी रामपुर है, ये दुनिया भर के स्टेशन है, ये तो पहले पुराने हुए हैं
0: जी। अगर हम रामपुर की बात करें तो सन 1965 का स्टेशन है रामपुर, विविध भारती भी पहले से है, नजीबाबाद 1978 में, तो बिल्कुल निसंदेह वो पहले से आप सुनते। तो जब नजीबाबाद अस्तित्व में आया उसके बाद में आपने नजीबाबाद को सुनना शुरू किया, क्योंकि आप किरतपुर के रहने वाले हैं, नजीबाबाद के बहुत नजदीक रहते हैं आप। हाँ। तो कोई नजीबाबाद को लेकर, जैसे अभी एक याद आपने हमसे साझा की कि जब नए नए गाने उस वक्त आते थे और नॉन स्टॉप बजते थे, उस समय बताया भी नहीं जाता था कि ये नजीबाबाद केंद्र है, तो उसके बाद में जब केंद्र शुरू हुआ तो क्या आपके जहन में उस वक्त कुछ ऐसा आया कि नहीं चल के देखा जाए कि भाई ये मेरे इतना नजदीक है, और आपके मन में आया और आप आए, कभी ऐसा हुआ?
1: उस टाइम तो इतना वो नहीं था देखना का स्टूडियो को, मतलब मैं तो गाना का शौकीन था, आना का इतनी था। अब भाई साहब ने मतलब पिछले कई साल हो गए जब मैंने कहा कि वहां चलना है आकाशवाणी पर
0: जी,
1: तो अपना बस में आ गया बस।
0: चल, आप गानों के शौकीन है?
1: गाने बस।
0: तो मुख्यतः जो आकाशवाणी के कार्यक्रम आप सुनते हैं वो मुख्यतः गानों के होते हैं।
1: हाँ।
0: आपके पसंदीदा गायक कौन है?
1: मेरा पसंदीदा गायक तो ज्यादातर पुराने ही हैंगे,
0: जैसे
1: मतलब मुकेश जी हैं, मोहम्मद रफी हैं, हेमंत कुमार हैं
0: जी,
1: मन्ना डे साहब हैं
0: जी।

नामों को आपने लिया, मन्नाडे साहब, रफी साहब और मुकेश साहब, हेमंत कुमार जी, ये सब उस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस दौर में वास्तव में भारत का जो बॉलीवुड का स्पेशली जो हिंदी म्यूजिक का जो संगीत था वो चरम पर था।

0: आगे की बात करते हैं सुरेंद्र जी कि फिल्म म्यूजिक के अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम आपको याद आते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के?
1: बस ज्यादातर मैं तो ये फिल्मों का शौकीन हूँ, जहाँ गाने खत्म हो जाते हैं बस मैं अपना हटा दूं तो और के लगा लेता।
0: अच्छा जी, तो ज्यादातर फिल्म म्यूजिक का। तो कभी कॉल्स वगैरह भी शामिल होती हैं आपके कार्यक्रम में हमारे, जैसे हेलो नजीबाबाद या फरमाइश हेलो फरमाइश?
1: ना, मैं कॉल नहीं करता।
0: अच्छा, कॉल नहीं करते हैं। तो जो इतना बड़ा हमारा श्रोता समूह है, बहुत सारे ऐसे श्रोता है जो कॉल्स भी करते हैं और यहाँ आते भी हैं तमाम अवसर पर, तो कभी क्या किसी श्रोता से मुलाकात हुई?
1: ना,
0: कभी किसी श्रोता से मुलाकात नहीं।
1: नहीं,
0: तो हम ये कह सकते हैं श्रोताओं, सुरेंद्र जी हमारे उन साइलेंट लिसनर्स में से हैं जिनकी हम अक्सर बातचीत करते हैं। हम अपने पत्रमिला कार्यक्रम में भी कहते हैं कि हमारे बहुत सारे असंख्य साइलेंट लिसनर्स हैं जो खामोशी के साथ हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, और आज आप हमारे साथ यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुरेंद्र जी। रेडियो ने जरूर, हम ये मानते हैं, आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाए होंगे, आपके जीवन में कुछ ना कुछ तब्दीली आई होगी। क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन में रेडियो की वजह से परिवर्तित हुई हो या रेडियो की वजह से कोई परिवर्तन आया हो?
1: बस ऐसा तो कुछ ना आएगा, बस मेरा तो पाबंदी हूँ मैं तो समय का, मतलब उस जमाने में घड़ी पड़ी ये चीजें नारा में थी तो रेडियो था मेरे पास, उसी से अपना टाइम तो अपना कर लू था। कभी क्या टाइम हो गया दुकान पर जाना है सवेरा, मैं तो मेहनत का ही पाबंद हूँ, मैं तो अपना कर्म करने का ही अपना।
0: जी, क्योंकि आप वक्त के पाबंद रहे हैं, कर्म के पाबंद हैं, तो और आकाशवाणी आज भी वक्त की पाबंदी हम सबको सिखाती है। और एक चीज, चूंकि आपका जो काम है वो मिठाई बनाने का काम है, आपने हमें बताया,
1: हाँ।
0: तो क्या कभी जैसे आपकी दुकान पर रेडियो चलता रहता है, क्या आपके जो कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, कभी किसी ने कुछ ऐसा कहा हो कि भाई आप रेडियो क्यों सुनते हैं? आपके घर में कभी किसी ने कहा हो, आपकी पत्नी ने कहा हो, बच्चों ने कहा हो कि पापा इतना रेडियो क्यों सुनते हैं, ऐसा कभी हुआ?
1: मैं तो दुकान पे सुनता हूँ, मेरे पास रेडियो दुकान पे रहेगा। एक मैंने चीज नोट करी है कि दुकान पर कस्टमर आते हैं
0: जी,
1: तो वो मतलब कोई बच्चों के साथ में आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहे हैं, कारीगर रेडियो सुन रहा हूँ, देख देख बंटी इसका नाम देख रेडियो बजा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: आज भी रेडियो बज रहा है।
0: अच्छा,
1: रेडियो तो बहुत लुप्त हो गया ना अब सब बुजुर्गों के हिसाब से।
0: हाँ,
1: मोबाइल ने जो है मतलब हल्का कर दिया रेडियो को।
0: देखिए, इसके बारे में ये कहा जाएगा कि जो आकाशवाणी है आज भी बदस्तूर सुना जाता है, आज भी आकाशवाणी को सुनते हैं, लेकिन उसको सुनने का माध्यम थोड़ा सा बदला है। आज रेडियो सेट्स कम है जैसे आपने कहा, लेकिन होता क्या है कि न्यूज ऑन एयर ऐप है हमारा, उसके माध्यम से सुन लेते हैं, और फिर जो नया दौर है उसमें सोशल मीडिया भी आ चुका है, यूट्यूब के माध्यम से सुन लेते हैं, फेसबुक के माध्यम से सुन लेते हैं,
1: जो मर्जी वो सुन।
0: जी जी जी।

0: तो आगे की अगर हम बात करें, अभी आपने बताया कि आपके यहाँ कई बार कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो आज भी रेडियो सुन रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको?
1: बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: बड़ी खुशी होती है कि भाई आज भी मतलब रेडियो के जो है मतलब कोई जानकार या चाहने वाले हैं
0: जी
1: जिनका ध्यान रेडियो की तरफ है। पुराने दौर आज के दौर में भाई ये है।

0: कि अपना आजकल के गाने भी मतलब कुछ बढ़िया ना रहेंगे, जो पुराने गाने हैं वो अच्छे सुने जावे। आजकल का तो मतलब ऐसा है कि गाने वाने कुछ बढ़िया ना आते हैं, ये बदलाव है।
1: अच्छा, अभी का जो संगीत है वो आपको उतना पसंद नहीं है। सुरेंद्र जी, चूंकि 50 वर्षों से आपका साथ है आकाशवाणी के साथ में, और अब जो अगली जनरेशन है आपकी, यानी आपके जो आगे बच्चे होंगे या बच्चों के बच्चे होंगे, उन लोगों में रेडियो के प्रति कैसा रुझान, या आपका जो ये शौक है इसके प्रति कैसा का रुझान है, ये बताइए।
0: बच्चे मेरे ख्याल से तो रेडियो पर ध्यान ना देने का, आने वाले पीढ़ी जाएगी।
1: अच्छा,
0: रेडियो पर ध्यान ना देने, रेडियो सचाते ना सुनना, मतलब मोबाइल पूरा कर दे रेडियो का काम। तो आजकल मोबाइल जेब में आ जाएगा, रेडियो हाथ में लटका कर ले घूमना लेना पड़ेगा, तो अब रेडियो कौन ना खरीद।
1: भले ही रेडियो सेट से ना सुने, लेकिन आकाशवाणी को तो आज भी मोबाइल से भी सुनते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे अभी आपने मोबाइल का जिक्र किया, आपने क्या ये चीज महसूस नहीं की कभी कि जब आज का जो दौर है, जब आज लोग मोबाइल लेते हैं तो वो मोबाइल को देखते हैं, उसमें रील्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन रेडियो में क्या होता था, रेडियो आपका खामोश पार्टनर होता था। आप अपना मिठाई बना रहे हैं, आप अपना मावा निकाल रहे हैं, रेडियो चल रहा है, आपके काम की जो गति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसा आपको कभी लगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं लगा
1: कि आपके काम की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
0: बिल्कुल नहीं।
1: आपको रेडियो, बल्कि कहा जाए तो रेडियो ने हमेशा आपका साथ दिया इस तरीके से।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
1: अच्छा सुरेंद्र जी, इस बातचीत के अंत में हम आपसे आपकी जो आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़ी हुई यादें, कुछ ऐसे कोई उद्घोषक रहे हों या ऐसे कोई आर्टिस्ट रहे हों जो आपको याद आते हों आज भी?
0: हाँ हाँ, याद है। एक रजनीश गुप्ता थे पहले, प्रेम कुमार सराहना थे यहाँ पे, रजनीश गुप्ता जी जो है वहाँ पे आकाशवाणी दिल्ली पे सुना मैंने
1: जी। हाँ, कुछ समय के लिए वो आकाशवाणी दिल्ली।
0: हाँ, तो वो बने रेडियो पे, मतलब उनका भी सुना है। हाँ, आकाशवाणी जो है दिल्ली है, मगर वे तो वहाँ के थे, निजामाबाद के, दिल्ली कैसे पहुँच गए।
1: और रजनीश गुप्ता जी अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और इसके साथ में एक और जो चीज रही, रजनीश गुप्ता जी और आपने अभी प्रेम कुमार सडाना जी का नाम लिया, तो प्रेम कुमार सडाना जी का एक बड़ा पेटेंट डायलॉग था, वो उनका एक स्टाइल था, बहुत प्रचलित था वो। आज भी जो हमारे श्रोता है, हमें संदेश भेजते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनका वो हाय गजब वाला जो उनका एक डायलॉग था, उसको बहुत आज भी लोग याद करते हैं। तो आपको उनकी और कोई याद है प्रेम कुमार सडाना?
0: बोलचाल बहुत बढ़िया थी उनकी, बोलने का स्टाइल बहुत बढ़िया था, इतना याद है।
2: जाने वो कैसे

0: अभी आप सुन रहे थे मुझे याद है जरा जरा में सुरेंद्र कुमार की रेडियो प्रसारण से जुड़ी यादें। प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल

0: लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry into the case.